100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

कण में राम क्षण क्षण में श्याम हो, मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, सुमंगलम सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:01 हो रहे हैं और आपकी मित्र तरुश्री आप सभी के समक्ष उपस्थित है भक्ति भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम पुष्पांजलि लेकर। भगवान श्री गणेश विघ्न हरने वाले, वर देने वाले, देवताओं के प्रिय लंबोदर, सभी कलाओं के जानकार हैं। संसार का भला करने वाले, जिनका मुख गज के समान है, जो वेद और यज्ञ से सजे हैं, देवी पार्वती के पुत्र हैं, उन्हें नमस्कार है। हे गणनाथ, आपको हम नमस्कार करते हैं और अर्पित करते हैं भक्ति में पुष्पांजलि।

ओम नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं है, एक पंथ है। इसमें एक आत्मा मौजूद है। ये मंत्र आत्मा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करता है। ओम नमः शिवाय सिर्फ आवाज नहीं, तरंग है, जीवन की तरंग। आप इसे एक औषधीय गीत भी कह सकते हैं, आप इसे आत्मा का गीत भी नाम दे सकते हैं। इसे नाम दे, लेकिन नमः शिवाय से निकलने वाली ये मधुर आवाज किसी भी विशेषण के संबोधित नहीं होती। ये एक ऐसी पुकार है जो सीधे आत्मा से परमात्मा तो पहचानती है।

श्रोताओं, समय हो रहा है 6:21 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। ईश्वर को पाने के लिए आकाश को छूने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा झुकने की जरूरत है। जितना हम अहंकार से झुकते हैं उतना ही हम परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। इसलिए अहंकार को त्यागना है और प्रभु भजन में अपना मन लीन करना है। तो आइए सुने ये एक मधुर भजन, भगवान श्री राम को याद करें, उनके चरित्र को याद करें।

श्रोताओं, दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, महत्व उसके लौ की है। वैसे ही प्रार्थना किसी भी भाषा में हो, महत्व उसके पीछे छुपी हुई श्रद्धा का है। आइए सुनते हैं एक और मधुर भजन प्रभु के चरणों में अर्पित।

श्रोताओं, भक्ति हमें भागना नहीं बल्कि जागना सिखाती है। अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करने की सबसे बड़ी पूजा है। और इसी सकारात्मक सोच के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के भजन में लीन होते हैं, तो हमारी प्रार्थना सफल होती है। आइए एक और मधुर सुंदर भजन की प्रस्तुति में खो जाएं और एक बार राधे राधे का स्मरण करें।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में 2, 3 व 4 जुलाई को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी जुड़े रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को आवागमन, प्रवास, सुरक्षा अथवा अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेवारत शिक्षकों के हितों के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को देखते हुए कार्यरत शिक्षकों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सेवारत शिक्षकों के लिए पृथक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें अधिक अवसर मिल सके और केवल अवसर के अभाव में किसी शिक्षक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि बीवीजी राम जी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,652 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित ना रहे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर समेत प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला किया है। शासन की ओर से बेसिक परीक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: सात हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: सुबह मुस्कुराती हुई गुनगुनाती हुई
6: हौले से जिंदगी को छूती हुई जगाती हुई जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
5: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

वेलकम बैक दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 7:05 का वक्त और ये खूबसूरत सा प्रोग्राम सदाबहार गीत लेकर मैं आ गई हूँ तरुश्री आपके साथ। और जैसा कि आज जो है ना बड़ी खूबसूरत सा मौसम बार है और जब आप आते हैं तो ऐसा लगता है बाहर आती है और ये जो खुशी मिलती है ना आपका और मेरा साथ बना रहे यूं ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जमीन पे बिखरी है खुशबू, जमीन पे बिखरी है खुशबू, आसमां भी दीवाना है, आज हर धड़कन गा रही है कोई ऐसा तराना है। महफिल सजी है यादों की, महफिल सजी है यादों की, और दिल ने माना है कि फिर आज फिर से आया ये मौसम मस्ताना है।

दोस्तों, मोहब्बत में अक्सर ऐसा होता है, शुरुआत एक छोटे से मजाक से होती है, एक छोटी सी शरारत से होती है, और कब वो जिंदगी बन जाती है पता ही नहीं चलता। किसी ने सच कहा है, शुरुआत तो बस एक ख्याल से हुई थी, अब हाल ये है कि हर सांस में तुम हो। तो कुछ ऐसा ही जादू बिखेरने के लिए ये गाना आपके लिए।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

दोस्तों, समय हो रहा है 7:28 और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं क्या सदाबहार गीत मेरे यानी तरुशी के साथ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बहुत सारे मेल्स का इंतजार है। जी हाँ, आप अपने मेल्स भेजिए मुझे fmakashwanilakhnow@gmail.com पर और बताइए कि क्या है आज का एहसास, क्या आपको महसूस हो रहा है आज के गानों को सुनकर, और कैसा है मौसम आपके यहाँ मुझे बताइए। बढ़िया मौसम है या फिर वैसे आज जो मौसम है ना वो कुछ बेईमान सा है ही। तो आज मौसम को लेकर

अच्छा, इस तरह के गाने जब आप सुनते हैं तो एक अलग ही जोश सा आ जाता है ना, ऐसा लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है दिन की, ये बड़ी ही जानदार है ना, जोरदार शुरुआत हुई है। और यही तो जादू है इन गानों का, इन सदाबहार गीतों का। कुछ मेल्स हम तक पहुंच गए हैं, मैं कुछ शामिल करना चाहूंगी। सुधांशु जी का मेल आया है, सवेरे से ही ये हमसे जुड़े हुए हैं, पुष्पांजलि कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और लिखते हैं कि पुष्पांजलि बहुत अच्छी लग रही है, भजन बहुत अच्छे बजाए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इन्होंने तब लिखा था जब सदाबहार गीत नहीं शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सदाबहार गीत का इंतज़ार रहेगा तो गाने अच्छे सुनने को मिलेंगे। आई होप कि आपको अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं। रामराज जी का भी मेल आया है और इन्होंने भी बहुत प्यार भरा मेल भेजा है और खूब आशीर्वाद भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए, और सबका नाम ये ज़रूर लिख के भेजते हैं। रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से ये मेल कर रहे हैं रामराज, राजभानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, रामचरण, बजरंगी काका, सब की तरफ से बड़ा ही प्यार भरा नमस्कार, और मेरी तरफ से आपको बहुत ढेर सारा प्यार। तो अगला गाना भी आप इन्जॉय करेंगे आई होप। वारिस अली जी मेल कर रहे हैं और हमेशा की तरह अपने अंदाज में उन्होंने दो लाइनें लिख के भेजी हैं। ना घमंड में रहिए ना गुरूर में रहिए, जिससे दिल ना मिलता हो उससे बस दूर रहिए। ये मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल का। और ब्रजेश सिंह जी जुड़े हैं, इन्होंने लिखा है हमारे यहाँ धूप निकली है, बारिश हमारे यहाँ भी भेज दीजिए। अब मैं क्या भेजूं, हमारे गाने हैं ना, आप इन्हें इन्जॉय कीजिए। आज तो मैंने मौसम के ही गाने कुछ बजाए हैं। आज मैं सुबह जब घर से निकली तो मुझे ऐसा लगा कि आज जो मौसम है ना, ये बड़ा ही खुशगवार होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बताया गया था कि अब मानसून की दस्तक है, तो शायद कुछ बेहतर महसूस करने को मिले। और वैसे भी जुलाई का महीना शुरू हो गया है, आज पहली तारीख है भाई, और जुलाई के महीने को कहते हैं जुलाई इज़ द चाइल्ड ऑफ गॉड। जी हाँ, फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि इसमें बारिश, इसमें धूप, इसमें मस्ती, बस यही तो है जुलाई का महीना। तो मॉनसून दस्तक दे चुका है, इसका बस लाभ उठाना है। हमारे पास बारिश पहुंच गई है, हम आप तक पहुंचा देंगे। आगे बबिता राव जी ने मेल भेजा है और बबिता राव जी लिखती हैं, मैम जी हमेशा की तरह पुष्पांजलि और सदाबहार गीत अच्छा लग रहा है। लिखती हैं, जैसे एक माली अलग अलग पेड़ से खूबसूरत फूल चुन चुन कर लेकर आता है, ठीक उसी तरह से प्रोग्राम में गाने लेकर आती हैं आप। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है आपको, तो मुझे अच्छा लगता है ये सुनकर, ये पढ़कर कि आपको ये गाने, ये जो मैं चुन के लाती हूँ आपके लिए प्रेजेंटेशंस, या फिर जो खूबसूरत से गाने गीत मैं चुनती हूँ, आपको अच्छे लगते हैं। और लिखते हैं, बीच बीच में जो प्यारी सी बातें शायरी करती हूँ, हो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया आपके इस अंदाज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा खूबसूरत सा मेल भेजा है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बस पिक्चराइज करवा सकती हूँ आपको कि जो इन्होंने फूलों का गुलदस्ता भेजा है और उसके बाद उन्होंने रंग बिरंगी लाइंस भेजी हैं, बहुत बहुत सुंदर। और ये हमें गोसाईगंज लखनऊ से मेल कर रही हैं। और भी बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी देर बाद हम और मेल शामिल करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो अगला गीत है ना, वो ऐसी थिरकन के साथ है, जो मुझे बड़ा पसंद है ये गाना, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए। वो कंपन होती है ना आवाज़ में, बस उस गाने से ही पता चलती है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए किस गाने की बात हो रही है।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: जी हाँ बिल्कुल, इसी कंपन की मैं बात कर रही थी, इसी जो आवाज़ की बात कर रही थी। और मेरे हिसाब से आशा जी में वो जादू था, वो हर एक गाने को ऐसा खूबसूरत बना देती थी कि कहने ही क्या है। एक सिंपल गाना, अभी आपने सुना था मौसम मस्ताना, है ना वो गाना, उसमें जो उन्होंने जब वो उस आवाज़ को उठाती हैं तो उसमें वो जो लहर है, वो ऐसा लग रहा था वो उस मौसम की लहर है, वो फील होती है अंदर तक, है ना। चलिए कुछ और मेल शामिल कर लेते हैं क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है और मेल्स तो बढ़ती चली जा रही है। अचानक से ऐसा लगा कि सब अचानक से जाग गए और सबने ठान लिया कि आज ही हम मेल भेजेंगे और विद इन 10 मिनट्स मेल भेजेंगे। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, सबके मेल शामिल करना है मुझे। आहिल खान जी मेल कर रहे हैं और लिखते हैं, पूछे जो कोई मुझसे बाहर कैसी होती।

है लाजवाब मौसम हो रहा है, क्या बात है। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। राम मोहन गुप्ता जी ने लिखा है और मैं सोच ये रही हूँ कि इन्होंने अभी के हिसाब से लिखा है या फिर आपका मेल मैं शामिल करूँ गुड मॉर्निंग लखनऊ में। गुड मॉर्निंग लखनऊ में शामिल कर लेती हूँ क्योंकि आज का जो मेल है वो आपने उसी हिसाब से भेजा है। चले कोई नहीं, आपका भी मेल शामिल करेंगे। फिलहाल ये मुझे मेल भेजा है मयंक धानी, गौरव गोमती, जौहर सिंह, पैकरा साबर, कसडोल ज़िला, बलौदा बाज़ार, छत्तीसगढ़ से, और ये हमें महाराष्ट्र से सुन रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मेल के लिए। गुलफ़ा सिद्दीकी जी का मेल, और लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा है और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज जी का मेल आया है और लिखते हैं कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम ठंडा हो रहा है, सॉन्ग्स अच्छे प्ले हो रहे हैं। और जब ये साथ, ये जो कॉम्बिनेशन आपने बताया ना, जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो फिर क्या कहने, बस सोने पे सुहागा है ये सदाबहार गीत, है ना। तो आपको और भी अच्छे अच्छे गाने सुनाती हूँ मैं। और सतेंद्र जी का मेल आया है मेरे पास, ग्राम पजैनिया जला जलौन से, सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, लौकिक चंसौलिया। तो ये सब हमारे साथ इसमें इस प्रोग्राम में शामिल है, ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं और मेरे हिसाब से सबको पसंद आ रहा है सदाबहार गीत। तो ये जो अगला गाना वो आपके लिए है।

जी हाँ, इस खूबसूरत से गीत के साथ अब ये सफ़र को हम वाइंड अप करते हैं। जी हाँ, हम 7:55 का वक्त हो चुका है और सदाबहार गीत को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8:15 पर मैं लौटूंगी गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर एक और दोस्त के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के तरवर इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
4: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण

0: एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 4

0: पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
0: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
2: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से

0: वेरी गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग टीचर.
2: गुड मॉर्निंग बेटा.
3: गुड मॉर्निंग बॉस.
4: गुड मॉर्निंग मम्मा.
5: गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग.
7: गुड मॉर्निंग.
8: गुड मॉर्निंग.
9: गुड मॉर्निंग.
10: Current affairs, history, birthdays, traffic, weather, music or entertainment. Sab kuch milega Morning Breakfast Show, Good Morning Lucknow mein. Har subah 8:15 se, only on Rainbow, Dhadkan Lucknow ki.
11: मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां हंसी नजर आता है. मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां हंसी नजर आता है. होठों की ये लाली देखकर हर गम भी कहीं ठहर जाता है. दुआ है रब से कि ये रौनक कभी कम ना हो तुम्हारी. दुआ है ये रब से कि ये रौनक कभी ना कम हो तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान से ही इस दिल को सुकून आता है.
12: वाकई में दोस्तों, मुझे लगता है कि हम मुस्कुराते हुए स्टूडियो में एंटर हुए तो तरुश्री ने हमारी मुस्कान पर और जितने भी हमारे सुनने वाले लिसनर्स हैं, गुड मॉर्निंग लखनऊ सुनने वाले जितने भी लिसनर्स हैं, सभी के मुस्कुराते चेहरों को एक ऐसा गेस करके ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें आप तक पहुंचाएंगे. आप सभी लोगों का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है.
11: जी बिल्कुल. और रत्ना हमसे जुड़ चुकी हैं और मैं आपको बताऊं कि ये इनकी मुस्कुराहट के लिए ही है.
12: हाँ.
11: और ये जो लाइनें मैंने अभी फरमाई वो बस हाँ. इन्हीं को ही, इन्हीं की मुस्कुराहट को दरकार करते हुए करी हैं और इसलिए ये मुस्कुराहट ऐसे बनी रहे और यही आपकी मुस्कुराहट भी ऐसे बनी रहे. और कहते हैं जब अच्छी लाइंस जब कानों में पड़ती है ना हाँ. तो ये जो चेहरे पे ऐसे ऐसे जो टिल्ट हो जाता है ना, ये जो होंठ ऐसे खिल जाते हैं.
12: तो देखिए ना, जितने लिसनर्स हैं जो सो के उठ चुके हैं और जिनको जाने की तैयारी करनी है और गुड मॉर्निंग लखनऊ यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है. उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अपडेट करने के लिए आपको, तो आप भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं इन सब बातों का. तो वो सब बातें आप तक पहुंचाएंगे. इसके साथ साथ कहेंगे सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए धड़कन लखनऊ की के साथ.

0: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: इतनी चहचहाट जो शुरुआत हुई है ना, बस चिड़ियों की चहचहाट, वो हाँ, जो खूबसूरत सी वादियां और साथ ही साथ ये
2: पक्षियों
1: जो
2: का कलरव,
1: हाँ, और ये जो ठंडी हवाएं जब ये पेड़ों से होके गुजरती हैं, तो वो जो एक अलग सा एहसास होता है, वो कुछ अजीब ही कुछ कर जाता है ना हमारे मन के साथ। ऐसा लगता है कुछ छेड़ के चला गया और हम उसी में रमते रहते हैं, और यही शायद ब्यूटी है, यही शायद खूबसूरती है हमारी नेचर की।
2: बिल्कुल, उसमें हम अगर पूरी तरह से रम जाते हैं, खासतौर से अगर जो लोग इस वक्त आज मॉर्निंग वॉक के लिए निकले होंगे, तो उनको लौटने का मन नहीं कर रहा होगा अभी।
1: अरे मैं खुद जब घर से निकली थी तो मुझे लगता है ये मैं सवेरे रोज क्यों नहीं उठती, फिर मुझे ध्यान आया मैं रोज तो नहीं उठती। फिर मैं सोच रही थी कि सच में जिनका भी टाइम बहुत ही जो अर्ली मॉर्निंग अपना स्टार्ट कर देते हैं दिन, उनका सच में वो 24 घंटे का कितना भरपूर इस्तेमाल करते हैं, है ना।
2: वाकई में वो जो मॉर्निंग में जो एनर्जी आती है और जो मूड मिजाज बनता है, वो फिर कहीं और मिल ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही। और हम लोग वापस नेचर पे आते हैं, और आज का जो मॉर्निंग मंत्र है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो आज का मॉर्निंग मंत्र क्या कहता है?
2: वो कहता है कि कर के श्रृंगार धरा का, कर के श्रृंगार धरा का, उसे सुंदर बना दे हम, पौधों को रोप करके

0: हरी चादर उड़ा दे हम, पल पल प्रकृति बचाएं हम, वन महोत्सव मनाएं हम।
1: क्या बात है। तो आज ये वन महोत्सव की बात जो हमने करी है वो इसलिए आज के मॉर्निंग मंत्रा में भी इतने खूबसूरत से शब्दों को पिरो के जो रत्ना जी ने हम तक पहुंचाया है आज का मॉर्निंग मंत्रा, वो यही कहता है कि इस तरह को अगर सुंदर बनाना है और हर मौसम इंजॉय करना है और अपनी प्रकृति को ऐसी ही खूबसूरत बनाए रखना है तो हमें ये महोत्सव बड़े मन से मनाना है।
0: बिल्कुल, बड़े दिल के साथ, बड़े अपनत्व के साथ इस महोत्सव को मनाना है जो कि 1 जुलाई से शुरू होकर 7 जुलाई तक वन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
1: जी हाँ, तो हम और आप मिलकर इस प्रयास को सफल बनाएंगे। तब तक ये खूबसूरत सा गाना जो हमारी प्रकृति से भी हमको कहीं ना कहीं जोड़ता है।

0: मुद्दा आज का।
1: दोस्तों 8:30 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। दो दोस्त आपके साथ हैं, मैं हूं तरुश्री, मेरे साथ है रत्ना। और आज जो दिन है 1 जुलाई, और 1 जुलाई अपने आप में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन ही रहता है। आप अगर शुरुआत देखें तो समर वेकेशन खत्म हो जाते हैं,
2: अभी बहुत तो टेंशन शुरू हो जाती है।
1: अभी तो ऐसा होने लगा है कि जून से ही बच्चों के क्लासेस शुरू हो गए। लेकिन पहले हम अपने टाइम की बात करें तो जैसे ही जून खत्म होता तो ऐसा लगता था भैया पहली तारीख आई नहीं, कि हम लोग का दिल बैठने लगता था ओ माय गॉड 1 जुलाई आ गई, क्लासेस शुरू होने वाले,
2: पूरा सिलेबस लगाना और फिर उसके बाद क्या क्या टिफिन लेके जाना और पूरी ड्रेस वगैरह। हाँ। बहुत कुछ एक माइंड में चलता रहता था, साथ में पेरेंट्स की तो खैर
1: बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि वो जो 30 जून की रात है यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल से फिर से वही सब शुरू हो गए एक बारी बारी। तो वो जो एक
2: तरु की बात सुन के जितने लोग इस वक्त सुन रहे होंगे ना, उनका टेंशन थोड़ा सा रिलीज हुआ होगा कि हाँ सिर्फ हमको रहता है, इन लोगों को भी टेंशन रहता था।
1: बिल्कुल सभी को रहता है, जितने भी पेरेंट्स हैं स्पेशली माएं। हाँ, सुबह से उनका जो कार्यक्रम शुरू हो जाता है ना, सुबह दिनचर्या उनकी स्टार्ट हो जाती है स्कूल। हाँ, वाली एक एक्स्ट्रा, वैसे तो रोज का रोज होता ही है दिनचर्या उनकी वैसे, लेकिन जो स्कूल वाला एड ऑन हो जाता है, बच्चों का टिफिन भी तैयार करना है, बच्चों ने होमवर्क किया कि नहीं, और ये सारी जो शेड्यूलिंग रहती है ना वो हर एक चीज की नजर रहती है, माओं की हर चीज पर नजर रहती है। और साथ ही साथ अगर हम जितना भी हम अगर पूरे समाज की बात करते हैं, हाँ, तो आज जो हम 1 जुलाई की बात कर रहे हैं, एक अपने आप में खास दिवस इसलिए भी है क्योंकि आज हम मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे।
2: जी, और नेशनल डॉक्टर्स डे बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि हमारी लाइफ में हमको कहीं ना कहीं तरू देखा जाए तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर डॉक्टर्स की सेवा की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो निस्वार्थ सेवा करते हैं और पूरा अपना समर्पण के साथ जो सहयोग देते हैं और एक नया जीवन देते हैं, साथ में एक उत्साह एक किरण देते हैं किसी भी इंसान को, उस तो उसकी इम्पोर्टेंस ही अलग है।
1: बिल्कुल सही, और कहते हैं कि डॉक्टर एक ऐसा शख्स होता है जिससे हम कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोल के आपका खुद का नुकसान होने वाला है। और सच में हम उनको एक एक पड़ाव ऐसा आता है लाइफ में कि हम उस डॉक्टर को डॉक्टर की तरह नहीं देखते, इंसान की तरह नहीं देखते, हम उसे भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि हमारी सारी आशाएं उनसे बंधी होती हैं। तो जब सबसे नोबल पेशे की बात करें तो चिकित्सकों का नाम सबसे पहले आता है, डॉक्टर्स का नाम सबसे पहले आता है।
2: बिल्कुल, और इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं और किन की वजह से मनाते हैं वो भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, तो वो हम बताते हैं आपको।
1: जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन है वो समर्पित है उस महान चिकित्सक को जिन्होंने चिकित्सा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक सेवा का माध्यम बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय। और वो एक उत्कृष्ट डॉक्टर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षाविद थे और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और सबसे अद्भुत बात इनकी कहें तो उनका जन्म भी 1 जुलाई को हुआ और उनका निधन भी 1 जुलाई को ही हुआ। ये कितना अद्भुत संयोग है ना।
2: बिल्कुल, और इसके साथ साथ जितना अद्भुत ये जो संयोग है ना, मानो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। आज उन सभी डॉक्टर्स को सलाम, जो दिन हो या रात हो, त्यौहार हो या छुट्टी हो, हर स्थिति में हमारे जीवन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। अगर आपके परिवार में कोई डॉक्टर है तो आज उन्हें धन्यवाद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में परिवार के साथ साथ जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या जितने भी डॉक्टर से आपका संपर्क है, तो आप ज़रूर उनको आज के दिन

0: धन्यवाद और शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा।
1: और साथ ही हम मुद्दे की अगर बात करें तो आज का मुद्दा भी कुछ इसी से ही जुड़ा हुआ है कि जब महामारी आई थी कोरोना काल की, आपको भी याद होगा और हम सब भी, दिल दहलाने वाला मोड़ था वो, एक कह सकते हैं हर कोई अपने घर में डरा डरा सा रहता था, लेकिन इन्हीं डॉक्टर्स ने कितनी ज़्यादा परिश्रम की, मेहनत की और सच में कितने लोगों की जानें बचाई हैं। तो आज का जो दिन है, इसीलिए हमने मुद्दा आज का यही रखा है कि अगर आपके जान में या आप जिन्हें जानते हों, जिनको आप पहचानते हों एज अ डॉक्टर, उनको आप आज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ ही साथ कोई इंसिडेंट आप अपना शेयर कीजिए उस डॉक्टर के बारे में, हमें बताइए जिसने आपको सच में एक नया जीवन दान दिया हो,
2: कोई भी ऐसा जो किस्सा हो जो आपके लाइफ से जुड़ा हो और डॉक्टर्स के सहयोग से कुछ आप पनपे हो, यानी कि जान जोखिम में डालकर जो डॉक्टर्स हमारी ज़िंदगी बचाते हैं, फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी से जुड़ते हैं, उनसे रिलेटेड आपका कोई भी किस्सा हो तो आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं, और शेयर आपको अपने इसी
1: ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com।
2: बस तो चलिए आप इसी मुद्दे पे अपने थॉट्स हमसे शेयर करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी हाँ, ये डॉक्टर्स हैं जो इस तरह से लगे रहते हैं सच में लोगों की जान बचाने में. और इस बार जैसे हर वर्ष एक थीम रखी जाती है, तो इस बार 2026 की थीम भी यही रखी गई है कि बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, यानी कि मास्क के पीछे ये जो चिकित्सक हैं उनका इलाज कौन करता है.
1: ये बहुत ही अहम सी बात है और बहुत ही अलग सी बात है, जो कि इस तरफ हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं और यहाँ तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता, बस हमारा इलाज हो जाता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं. लेकिन जो हमारे हीलर हैं उनका इलाज कौन करता है, बहुत ही अहम सी बात है.
0: जी हाँ, और ज़्यादातर वैसे तो ये थीम जो है वो इस पर जोर देती है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं ना, इनकी भी मानसिक जो हेल्थ है, यानी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, और स्पेशली इमोशनल हेल्थ, वो किस तरह से फैक्टर करती है इनके रोज़ की लाइफस्टाइल में. अगर आप देखें तो दिन भर कितने सारे रोगियों से घिरे रहते हैं हमारे डॉक्टर्स. हाँ. और कितने सारे लोगों का इलाज भी करते हैं, उन्हें स्वस्थ करते हैं.
1: और पता है तरु, जब अपने पेशेंट को डील करते हैं तो उनके साथ मुस्कुरा कर हर उनकी बात को जानना या उनकी पुरानी हिस्ट्री को पूछना, उसके बाद मुस्कुरा करके उनको एक अच्छी से मोड़ की तरफ ले जाना, एक नई दिशा, एक उजालों की रोशनी की तरफ लेकर आना, ये बहुत ही अलग सा काम है. चूँकि अगर आप खुद कई चीज़ों से घिरे हैं तो आप अगले को ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स हैं जो स्पेशली अपने पेशेंट के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी किस तरह से अपडेट रखते हैं और खुद भी मुस्कुराते हुए दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का एक बहुत ही मेन पिलर होते हैं.
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा. अच्छा रता जी, आपके साथ कोई ऐसी याद है जो डॉक्टर्स के लिए एक अलग ही जज्बा पैदा करता है? मतलब सच में ऐसे बहुत सारी लाइफ में किस्से होते हैं और हम सभी किसी ना किसी डॉक्टर से बड़ा इम्प्रेस रहते हैं.
1: बिल्कुल
0: है ना.
1: हमारी भी एक फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं. और साथ में जब कभी भी कुछ भी, अगर घर में कहीं भी किसी को भी कुछ भी है तो एक मिनट को फ़ोन मिलाते हैं
0: बस. हाँ ऐसा लगता है कि हम जो वैसे कहना नहीं चाहिए. हाँ. क्योंकि हम किसी को सिंबलाइज नहीं कर रहे, बट जैसे हम लोग ऐसा होता है ना कि हमारे पास एक सुपरमैन है.
1: बिल्कुल, वो पावर होती है और आउट ऑफ स्टेशन भी होते हैं. तभी सर हम यहाँ पर है और ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये थोड़ा सा पेन कर रहा है, ये थोड़ा सा गले में खराश आ गई, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप ऐसा करिए ये बस उनकी तरफ से एक अच्छी सी किरण आ जाती है और फिर बस राह उसी वापस मोड़ पर आ जाती है, उसी ट्रैक पर मुस्कुराते हंसते अपनी लाइफ को हम लोग जीने लगते हैं. तो ये एक बहुत ही हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है और इसको आप लोग भी बहुत, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ किस्से होंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो इसीलिए हम आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें मेल भेज सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर और कीजिए वो किस्सा जिससे आप हमसे शेयर करना चाहते हैं और उस डॉक्टर के बारे में बताना चाहते हैं जिसने आपकी लाइफ बदल दी, या बदल क्या दी, बचा ली कह सकते हैं, और या किसी अपने की जान उसने बचाई, और या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि किसी डॉक्टर से आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं. जैसे सच में स्पेशली डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि वो इतने ज़्यादा, कुछ डॉक्टर्स इतने कूल रहते हैं ना कि इतने सारे रोगियों से घिरे होने के बावजूद उनका एक अलग ही ऑरा होता है.
1: बिल्कुल
0: है ना. तो उस ऑरा जो है उसको हम लोग हमेशा एक तरह से, उस ऑरा में जब भी हम आते हैं तो अपने आप को खुद हील कर लेते हैं.
1: हाँ, हम सेफ हैं. हाँ, हम सेफ हैं, हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे.
0: जी तो बिल्कुल उस डॉक्टर के बारे में आप हमें बता सकते हैं. तो प्रोग्राम में बने रहिए, 8:43 का वक्त, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ जारी है और एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए.

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
2: वक्त के साथ चलते चलते 8:48 हो गए और वक्त धीमे धीमे हमारी मुट्ठी से रेत जो है ये धीमे धीमे फिसल रहा है, लेकिन हम वक्त को जितना भी हो सके अब वक्त के साथ साथ आपको अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए आज हमारे शहर में क्या क्या गतिविधियां उनके बारे में आप तक बातें पहुँचाते हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में वन महोत्सव सप्ताह के तहत पौधारोपण आर्ट्स क्वाड्रिल परिसर में आज सुबह 10 से होगा। तो वैसे तो पौधारोपण के लिए कोई समय नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशल ओकेजन है, तो आप इसमें सम्मिलित अगर होना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपनी शिरकत।

0: इसके साथ ही जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा की ओर से मानव श्रृंखला जल निगम मुख्यालय से सिकंदरबाग चौराहे तक 1:30 से ये होने को है, तो आप अगर इससे इत्तेफाक रखते हैं तो आप ज़रूर उसमें शामिल हो सकते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, तो ये शहर की गतिविधियां, और साथ ही साथ वन महोत्सव आज से शुरू हो चुका है। और कहते हैं कि ये जो बहाने हैं पर्यावरण को बचाने के, तो ये बहाने ढूंढा करते हैं हम लोग, और आप और हम मिलकर अगर ये बहाने नहीं ढूंढेंगे तो हम कब निकालेंगे समय, है ना। कोई ओकेजन ही ऐसा होता है तभी हम सोचते हैं कि थोड़ा सा मेहनत कर ले, वरना तो इस चीज़ का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। और एक पौधारोपण लगाने की बात है या एक पेड़ लगाने की बात है, तो वो आपको एक तरह से खुशी ही देगा। अभी हाल ही में ना हमारे घर में, आपको मैं बताऊँ, ये एक बड़ी स्पेशल सा किस्सा है। मेरे एक फ्रेंड है, वो अभी शिफ्ट हो रहे थे यहाँ से गाज़ियाबाद, तो उनके यहाँ जब शिफ्टिंग हुई तो उनके यहाँ बहुत ढेर सारे पौधे हैं, बहुत ढेर सारे। वो टेरेस गार्डनिंग में बड़ा शौक रखते थे, दोनों ही हस्बैंड वाइफ। और जब वो गए शिफ्ट हो रहे थे तो उनको सबसे ज्यादा दुख जो हो रहा था वो इसी चीज का हो रहा था कि ये मेरे बच्चों का क्या होगा।
0: हंसते मुस्कुराते और फलते फूलते जो पौधे वो छोड़ कर गए, तो उसका जी हाँ।
1: है ना, तो कुछ तो उन्होंने पौधे अपने पड़ोसियों को दान दिए कि उनको मतलब बचाया जाए या उनको उनका देखभाल किया जाए उनको, कुछ तो अपने साथ ले गए। और एक जो बेचारा बड़ा ही प्यारा सा मुरझाया हुआ पौधा था, वो मेरे हिस्से आया। और सच बताऊं, जब से वो मेरे घर आया, हमने उसको नाम दिया, और उस नाम के साथ रोज उसको पानी, और उसमें जो भी हम मेहनत करते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके, और आज वो पेड़ सच में इतना खूबसूरत फूल दे रहा है। मैं सच बता रही हूँ, ये इसलिए मेरे दिल के करीब है क्योंकि ये हाल ही में घटना हुई मेरे साथ।
0: और वाकई में वो जो फूल दे रहा है, वो फोटो मैंने अभी मोबाइल में देखी तरु के, और बहुत ही वाकई में खूबसूरत सा पौधा है, और उतने ही खूबसूरत उसमें फूल भी उठ चुके हैं।
1: जी, तो इस तरह से अगर हम अपनी प्रकृति को एक थोड़ा से बहाने से ही अगर हम उसको थोड़ा सा समय दे दें।
0: बिल्कुल, और आज जो ये वन महोत्सव जो शुरू हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। वैसे तो हम साल में कभी भी पेड़ लगा सकते हैं जैसे कि दर्शी ने कहा आपसे, लेकिन ये जो समय है ना, ये मॉनसून के आने का समय है और कई जगह मॉनसून आ भी चुका है, तो इसमें जो हरियाली वाले जो पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, ये इसकी और इसकी रोशनी को, इसकी चमक को और ज़्यादा उजालों से परिपूर्ण कर देते हैं। और बस वनों की कटाई वगैरह को रोकने के लिए, साथ में जलवायु परिवर्तन के मुकाबले मतलब जो कुछ भी हमारे लिए हानिकारक है उन सबको दूर करने के लिए ये खास तौर से वन सप्ताह मनाया जा रहा है।
1: जी हाँ दोस्तों, और वन सप्ताह में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जो भी आप वृक्ष लगाते हैं या पेड़, छोटे से पेड़ लगाते हैं, तो वो इसीलिए इसकी शुरुआत ये जुलाई में करी गई थी, जैसे कि मैंने बताया मॉनसून का आगमन होता है ना, तो वो आपके वो झुलसती धूप में अगर आप पेड़ लगाएंगे भी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा इतनी झुलसती गर्मी थी कि मेरे घर के जो बाहर दो तीन छोटे जो मीठी नीम के पेड़ लगे थे, वो बेचारे अपने आप, हम उसको रोज पानी दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन बेचारे वो झुलस गए। तो वो एक देख के बड़ा ही दर्द सा फील होता है कि क्या हो गया उनको, आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। लेकिन अभी जो है ये मॉनसून है, ये तो आप एक छोटा सा प्रयास करेंगे बाकी प्रकृति खुद संभाल लेगी,
0: खुद संभाल लेगी। लेकिन अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी दर्शी कि अगर हम कहीं पौधारोपण करते हैं, अक्सर दिखने में आया पौधा लगाया और फोटो वोटो खिंचाए ग्रुप के साथ और बढ़िया फोटो इधर उधर सब जगह अपलोड कर दी, लेकिन उसके बाद फिर वो पौधा किसने देखा कुछ, तो यानी कि पौधा अगर आप लगाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं बड़ा करने की थोड़ी सी जिम्मेदारी अगर आप उसके साथ निभा दें, तो फिर क्या कहते हैं ना, जंगल सुरक्षित तो मंगल सुरक्षित।
1: वाह क्या बात है, ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी।
0: तो इन बातों के साथ आप भी अपने आसपास, अपने घर में, अपने पार्क में, आसपास ना जहाँ भी हो सके जरूर कोई ना कोई वृक्ष लगाइए।
1: बिल्कुल, और आपको बता दें 8:53 का वक्त, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, और अब एक खूबसूरत सा गाना आप तक पहुँचा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके बाद फिर हम लोग 9 से फिर से जुड़ेंगे।

नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, प्रदेश में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी और मानसून की दस्तक होने की खबरें आज अखबारों की सुर्खियों में हैं। अमर उजाला ने अगले 2-3 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून के पहुंचने की खबर को हेडलाइन बनाया है। अखबार लिखता है कि चिलचिलाती गर्मी से राहत देते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व लद्दाख में दस्तक दे दी। बारिश के कारण यूपी के कई जिलों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट से लोगों को राहत मिली। हालांकि मानसून के 2-3 दिन में पूरे प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। वहीं नवभारत टाइम्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने के किए जाने के निर्देश दिए जाने को पहली खबर बनाया है। अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को 2 से 4 जुलाई तक प्रस्तावित टीईटी की तैयारियों की समीक्षा बैठक में विशेष टीईटी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अधिक अवसर मिलना चाहिए जिससे उन्हें किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही सरकार ने 2 जुलाई से शुरू हो रही यूपी टीईटी में शामिल होने वाले कार्यरत सरकारी शिक्षकों को विशेष अवकाश देने का निर्णय भी लिया है। टीईटी में करीब 1,85,000 शिक्षक भी शामिल होंगे। राम मंदिर चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में कल 12 गणना कर्मियों से घंटों पूछताछ किए जाने की खबर को हिंदुस्तान ने अपनी हेडलाइन बनाया है। अखबार ने लिखा कि पुलिस ने संबंधित विभागों से आरोपियों और करीबियों के वाहनों का ब्यौरा भी तलब किया है। वहीं दैनिक जागरण ने बताया कि चढ़ावा चोरी मामले के 8 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इनकी संपत्तियां अटैच करने जा रही है जो आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। पुलिस ने आरोपित अविनाश शुक्ल से जेल में 4 घंटे पूछताछ भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे की खबर को अमृत विचार ने अपनी पहली खबर बनाया है। अखबार ने लिखा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी अपनी विरासत की अवमानना करता है वे स्वयं अपनी दुर्गति का रास्ता तय करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमा का अनावरण कर उनकी कोठी को संग्रहालय बनाने की घोषणा की। जनरल धीरज सेठ द्वारा मंगलवार को नए सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभाले जाने की खबर आज अखबारों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण ने लिखा कि आर्मर्ड कोर के अफसर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1997 में जनरल शंकर रॉय चौधरी के बाद कॉम्बैट ब्रांच से सेना की कमान संभालने वाले पहले अफसर हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह की हत्या के मामले में 3 आरोपितों को दोष सिद्ध करते हुए जेल भेजे जाने की खबर को हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अखबारों ने लिखा कि हत्या के करीब 24 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को हत्या और साजिश में दोषी करार दिया। इसके साथ ही वीबीजी रामजी आज से पूरे देश में लागू होने स्मार्ट मीटर के एवज में ज्यादा वसूली गई रकम आज से बिल में समायोजित किए जाने और ग्राम सचिवालय में आज से लेखपाल के बैठने की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती है। अगला बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 9:05 हो गए। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ यानी बोले तो आप सभी का एक बार दोबारा वेलकम बैक है। और 100.7 FM रेनबो पर ये जो प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ, उसमें तरुषि और रत्ना शुक्ला है आपके साथ, आप बने हैं ना हमारे साथ।
1: जी बिल्कुल, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे गीतों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और साथ ही साथ एक बार फिर से याद दिला देते हैं जो हमसे अभी जुड़े हैं कि आज का मुद्दा क्या था, ताकि आप हमसे जुड़ सकें मेल द्वारा। तो आज का मुद्दा ये है कि आज हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप उस डॉक्टर के बारे में आप हमें बताइए जिसने आपकी ज़िंदगी में सच में ज़िंदगी के मायने बदल दिए हों, और उस डॉक्टर को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, या फिर उस डॉक्टर के बारे में आप हमें बताइए जिसके ऑरा से आप ज़्यादा इम्प्रेस हुए हों। तो आज डॉक्टर्स डे पर हम अपने जो अपना दिन जो है ना वो डॉक्टर्स के नाम करते हैं।
0: तो
1: बिल्कुल मेल्स बहुत सारी हैं, शामिल करेंगे मगर इस खूबसूरत से गाने के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आप मुझे बरसात बनाइए, आप मुझे अपनी लंबी रात बनाइए, हम तो आपके साथ हमेशा बने ही रहते हैं।
1: और वाकई में अगर हम बात करते हैं एफएम रेनबो की ही खूबी है कि सुबह 6 से लेकर रात 12 तक आपके साथ बना होता है, हर घंटे अलग अलग फ्लेवर के प्रोग्राम्स आप तक हम लेकर आते हैं और उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी को जरूर पसंद आता है ये, चूंकि आपके मेल और आपके जो फोन है वो सब हम तक ये बातें पहुंचाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम आप तक कुछ पहुंचाने जा रहे हैं, वो ये पहुंचाने जा रहे हैं कि बीटेक में जो प्रवेश के लिए पंजीकरण हुए उनकी संख्या कितनी पहुंच गई है।
0: हाँ, उनकी संख्या 106,667 अब तक पहुंच चुकी है।
1: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एकेटीयू की बात कर रहे हैं, इससे संबंध इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को 30 जून को समाप्त चुकी हो चुकी है और बीटेक में प्रवेश के लिए कुल
0: वही जो मैंने अभी आपको पंजीकरण संख्या बताई है ये पंजीकरण हो चुके हैं। तो वही 5 और 2 चरणों में होने वाली काउंसलिंग के पहले की चरण की जो चॉइस है उसकी फिलिंग और लॉकिंग 4 से 7 जुलाई तक होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अगर आपने पंजीकरण, वैसे तो इसकी ड्यू डेट चली गई है यानी 30 जून तक थी, और अगर आपने इसमें पंजीकरण कराया है तो आप कृपया ध्यान दें कि इसकी जो चॉइस फिलिंग है और ब्लॉकिंग है वो 4 से 7 जुलाई तक होगी। तो उसमें आप ज़रूर ध्यान रखें इस बात का। और साथ ही साथ आपको जैसे कि पता ही है कि यूपी में TET परीक्षा जो अभी शुरू हुई है उसके लिए स्पेशल ट्रेन वगैरह की तैयारियाँ की गई हैं, इसके बारे में भी आप विस्तृत जानकारी IRCTC के प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आप बने रहिए तो आपको ये अपडेट्स आपको लगातार हर घंटे न्यूज़ के माध्यम से मिलती रहती है।
1: बिल्कुल। और अब हम सिलसिला शुरू करते हैं जो हमारे बीच में बहुत सारे मेल्स फ्लैश कर रहे हैं, और सुधांशु जी का मेल आया है और इनका राधे राधे हम तक पहुंच गया है। ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब से इन्होंने मेल किया है। प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से ही, और सुविचार आज का बहुत अच्छा लगा और दोनों की आवाज़ अच्छी लग रही है, और इन्होंने कुछ सवाल क्रिकेट से रिलेटेड पूछे हैं तरुषि, और पूछा है कि ये कब हम शुरू हुआ और कब तक हम सुन पाएंगे। तो ऐसी बातों का जवाब हमें जब पता चलेगा तो हम ज़रूर आपको अब तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आपका मेल हमने शामिल कर लिया और मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी।
0: जी, और रिंकी पिंकी जी का मेल आया है जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से, प्रोग्राम अच्छा है, ये भी अच्छी है, चकाचक, थैंक यू सो मच। योगेंद्र कुमार जी ने भी मेल भेजा है और डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं भेजी है। मुजफ्फरनगर से इन्होंने हमें मेल भेजा है और बड़ा ही खूबसूरत सा चित्र बना के भेजा है, और ये विशेष धन्यवाद उन्होंने दिया है हमारे सभी जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेवा समर्पण और संवेदना के लिए, और आपकी इस खूबसूरत से मेल और ये जो एफर्ट आपने बनाया ना इस खूबसूरत से पोस्ट को बनाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जगदीश जी का भी मेल आया है हमारे पास, उन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जगदीश जी, थैंक यू सो मच।
0: और सुनील कुमार जी का यानी सुनील प्रांजल जी का विकास नगर लखनऊ से मेल आया है, गुड मॉर्निंग भेजा है सबसे पहले तो, और डॉक्टर्स दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। लिखते हैं कि अपने जाने वाले सभी डॉक्टरों को शुभकामनाएं उन्होंने भेज दी हैं। डॉक्टर भगवान तो नहीं लेकिन पृथ्वी का भगवान जरूर है। बिल्कुल सही। फिलहाल हमें कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ती नहीं है, हमारे जीवन शैली इस प्रकार है कि हमें बुखार भी नहीं आता, सब राम जी की कृपा है। तो आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहिए, हमारी शुभकामनाएं जरूर आप तक पहुंचेंगी। और सच में अच्छा लगा ये जानकर कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको बुखार नहीं आता। मैं तो सच में ये मैं सुन के मैं हैरान हूं, क्योंकि मैं सच बताऊं तो कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, अगर साल में एक बार बुखार आपके आता है तो ये भी एक आपके अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है।
1: जी जी,
0: है ना। तो अगर नहीं आता बुखार तो भी आप एक बार चेक करा लीजिए, शायद बुखार आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। और तालिब अंसारी जी ने बाराबंकी से गुड मॉर्निंग लिखकर भेजा, आपको भी शुभ सुप्रभात हम कहना चाहेंगे। वारिस अली खान जी का भी मिला है, लिखते हैं तरुषि और रत्ना जी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम, आपको भी बहुत बहुत सलाम पूरे परिवार को। अर्ज है, न जाने कौन सी दौलत है हमारे आरजे के शब्दों में, न जाने कौन सी दौलत है हमारे आरजे के शब्दों में, जब वो बात करते हैं तो दिल ही खरीद लेते हैं।
0: ओ, क्या बात है,
1: आपके दिल तक बात पहुंची तरुषि?
0: बस पहुंच गई, खरीद लिया दिल हमने।
1: और लिखा है, आप दोनों जी

0: बहुत अच्छा कर रही हैं तनुश्री जी, आपका शायराना अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों की बातचीत मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मुद्दा एक बार रिपीट कर दीजिए, एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। तो मुद्दा हमारा एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, जो आप एक बार फिर से सुनिए, जितने लोगों ने अभी भी रेडियो सेट ऑन किया वो लोग भी सुन सकते हैं हमारा आज का मुद्दा।
1: जी हाँ, मुद्दे पर तो हमने आज डॉक्टर्स को ही संबोधित किया है, और साथ ही साथ ये पूछा है आपसे कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसने आपकी ज़िंदगी बचाई हो या किसी अपने की ज़िंदगी बचाई हो, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कौन सा ऐसा डॉक्टर है आपकी लाइफ में जिसके ऑरा से, यानी कि जिससे आप बड़े इंप्रेस हों। और सच में हमारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिनसे हम अपनी लाइफ में बड़ा इंप्रेस रहते हैं, उस डॉक्टर से तो पर्टिकुलर इंप्रेस रहते हैं कि वो क्या जादू है उनके हाथों में या उनके डायग्नोसिस में, ऐसा क्या कैसे कर लेते हैं और तुरंत जो भी दवा देते हैं वो हमें तुरंत सूट करती है।
0: बिल्कुल, तो यही हमारा आज का मुद्दा है, और आपके ज़िंदगी में भी ऐसा कोई ना कोई किस्सा होगा तो ज़रूर हमसे शेयर करिए। और मेल अगर शामिल करते हैं तो
1: मेल अभी शामिल करते हैं, लेकिन एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद है ना।

0: दोस्तों 9:21 है हो चुके हैं और अब चलिए जान लेते हैं कि आज शहर में ट्रैफिक का क्या हाल होने वाला है और उसके लिए हमसे जुड़ चुके हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह सर। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। कुछ प्रमुख मार्ग जहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है, पीक आवर्स का समय है, तो ऐसे में हमारा जो लखनऊ अयोध्या मार्ग है वहां पर आप कमता से पॉलीटेक्निक की तरफ, ये पूरा जो पॉलीटेक्निक और कमता वाला मार्ग है ये यातायात से बाधित है, थोड़ा सा यातायात यहाँ दबाव ज्यादा है
0: जी।
1: तो अगर आप अभी इधर पॉलीटेक्निक से कमता वाला रास्ता प्रयोग करना चाह रहे थे तो कृपया आप वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं, या अथवा अगर आपके पास समय है तो थोड़ा समय निकाल करके उसके बाद निकले घर से तो उचित रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर लखनऊ रायबरेली मार्ग की बात करें तो उतरेठिया और PGI के पास में हल्का सा यातायात दबाव है। लखनऊ कानपुर मार्ग की बात करें तो हमारा अवध चौराहा पीक आवर्स में थोड़ा ट्रैफिक रहता है, और लखनऊ हरदोई की बात करें तो दुबग्गा के पास में थोड़ा सा प्रेशर है। तो ऐसे में लेकिन हमारी लखनऊ पुलिस मौजूद रहकर प्रतिबद्ध होकर सुगम यातायात संचालन करा रही है। कोई यदि विशेष आवश्यकता है, इमरजेंसी है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9454401555 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम अविलंब सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज कोई विशेष डायवर्जन नहीं है मैम, यदि कोई डायवर्जन होता है तो आपके माध्यम से श्रोताओं तक अवश्य अपडेट पहुंचाएंगे।
0: जी, और सर जैसे कि मॉनसून दस्तक दे रहा है, धीरे धीरे मौसम भी बढ़िया होने लगा है, ऐसे में सर कुछ आप हिदायत देना चाहेंगे हमारे स्पेशली यंगस्टर्स को, जो जब बारिश होती है तो कुछ अलग ही रफ्तार दिखती है गाड़ियों की
2: ट्रैफिक को लेकर क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत जरूरी बात यह है कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि ज्यादातर निकल लेते हैं और स्पीड भी बढ़ाते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि आगे जो बारिश में, बारिश के भराव से, जल भराव से जो है रास्ते ढके हुए हैं, हो सकता है वहां पर गड्ढे हो, उससे एक्सीडेंट का खतरा रहता है। दूसरा, जब आप बारिश में स्पीड लेते हैं तो उससे जो बारिश की बूंदें होती हैं वो आपको डिस्टर्ब करती हैं, साथ में आपका ध्यान जो है भटकता है और इसमें सबसे ज्यादा दुर्घटना होने की संभावना रहती है। रास्ते फिसलन भरे होते हैं, रास्ते में इधर उधर गड्ढे भी हो सकते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे खतरनाक वो होता है। इसलिए इस मौसम का तो आप इंजॉय करें, परंतु रास्ते में इस तरह से ऐसा अनियंत्रित गति से, अनियंत्रित तरीके से अपने वाहन को कतई ना चलाएं। आप सुरक्षित रहें, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें, इसका विशेष ध्यान दें, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और इंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो 3।

0: लगता हूँ कि
1: बहुत
0: थैंक यू
1: बहुत
0: जी,
1: धन्यवाद सर। और
0: धन्यवाद।
1: जैसे जैसा कि सर ने बताया, तो हमने कल ही देखा एक कुछ ऐसा नजारा था कि कल कई जगहों पर बारिश हुई थी, तो जिगजैग रेसिंग चल रही थी सड़क पर बाइक से।
2: बाप रे बाप,
1: हाँ
2: डर भी नहीं लगता, मैं तो ये सोचती हूँ डर नहीं लगता।
1: तो ये जो जिगजैग रेसिंग चल रही थी, और जैसा कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस सर ने बताए, जो सुविधाएं हम अपने लिए सोचते हैं, वो सुविधाएं हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके अगले तक भी पहुंचाएं, बस यही है एक पालन करना ट्रैफिक रूल्स को।
2: तो इसलिए अपना ध्यान रखने के साथ साथ दूसरों का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी गलती से किसी दूसरे की भी जान खतरे में पड़ सकती है। तो ये सब तो ध्यान रखने की बात है ही है,
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमारे साथ बने रहिए, अभी और भी बहुत सारी अपडेट्स आप तक पहुँचा रही हैं।

0: और एक बार फिर से सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम आपको वेदर रिपोर्ट देने जा रहे हैं और जिसका आप इंतजार करते हैं बराबर। और हमारे साथ इस बार फोन लाइन पर बिल्कुल कनेक्टेड हैं सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिशी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आज क्या मौसम का हालचाल रहने वाला है या आगे वाले एक आध दिनों में क्या कैसा मौसम रहेगा?
1: मौसम की बात करें तो जैसा कि कल उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में मानसून का आगमन हो गया है और कहीं ना कहीं यहाँ से आने वाले कल तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून आने की संभावना है। इस वजह से अपने प्रदेश में हवाएं चलेंगी और प्रदेश में और लखनऊ के साथ हवाएं भी चलेंगी और साथ ही में बारिश की संभावना रहेगी। तो आज और कल लखनऊ में अच्छी वर्षा की संभावना है। बीच बीच में कुछ स्थल बारिश के आएंगे और साथ ही में हवा भी चलेगा गरज चमक के साथ। और जब में मानसून आता है तो उस वक्त बिजली गिरना ये सब चीजें काफी कॉमन होती है, तो थोड़ा लोगों को बचाव रखने की भी आवश्यकता है।
0: जी जी। तो सर

0: क्या हम सोचे कि पूरा वीक ऐसा वेदर रह सकता है या सर बीच में थोड़ा सा धूप और
1: अगर हम कहें तो 4-5 दिन तक इसी तरीके से रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी, हवा चलेगा। हाँ, थोड़ा जैसे कि उमस बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अगर जहाँ बारिश नहीं होती तो थोड़ा उमस वाली गर्मी का एहसास हो सकता है।
0: जी जी ठीक है सर, बहुत अच्छी सी बात आपने बता दी, लोग सुन के खुश हो गए होंगे और हमें इतना वक्त निकाल के इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।
1: ओके, धन्यवाद।
0: नमस्कार सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, मोहम्मद दानिश जी हमारे साथ थे और उन्होंने मौसम का जो बताया है हाल, वो अब ये कि खुशनुमा होने वाला है, मौसम ने, मॉनसून ने दस्तक दे दी है और ये जो बारिश वाला मौसम होता है ना, ये बड़ा ही प्यारा सा मौसम है। बस इसमें एक ही चीज़ थोड़ी सी लगता है कि थोड़ा किचकिच ज़्यादा हो गया लेकिन फिलहाल अपनी हर एक मौसम की अपनी एक खूबसूरती होती है और इसी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए, आप इस खूबसूरत से गाने के साथ जो है ना वो हम और भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब बारिश की बात हो गई है तो थोड़ा सा बनता है ना

जी हाँ दोस्तों, 9:34 का वक्त और आज डॉक्टर्स को तो समर्पित है दिन, लेकिन अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करी

0: जाए तो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। जी हाँ, आज है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, और साथ ही साथ आज है जीएसटी डे।
1: जी, साल 2017 1 जुलाई आज के ही दिन जीएसटी लागू किया गया था, इसलिए आज का दिन बड़ा ही खास है। और आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है वो वर्ष 1949 में आज ही के दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हुई। और देश की आर्थिक व्यवस्था, व्यापार, उद्योग और ये जो कर प्रणाली है यानी कि जो इनकम टैक्स और ये सारी चीज़ों की है, वित्तीय अनुशासन और इन सब के पीछे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनको इस दिन के खास बधाई, क्योंकि ये दिन उन्हीं को समर्पित है।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ जीएसटी डे के मैंने बारे में आपको बता दिया कि जिसने एक अनेक प्रत्यक्ष करों को एक व्यवस्था में जोड़कर एक राष्ट्र एक कर की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम की शुरुआत हुई आज के दिन से।
1: बिल्कुल। और उसके साथ एक और खास दिवस होता है आज के दिन, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर डे।
0: जी।
1: तो हमारे अपनों के पैगाम और हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हम तक पहुंचाते हैं डाक कर्मचारी। डाक सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारी और उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं करने के लिए आज का ये दिन दिवस मनाया जाता है, और जिसका नाम है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। आज ही के दिन ये दिन मनाया जा रहा है, तो सभी जितने भी पोस्टल वर्कर हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इसके साथ आज भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस यानी कि SBI फाउंडेशन डे भी है, और देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ICICI इसी उपलक्ष्य में आज SBI फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है।
0: जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का जो था वो इतिहास से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट और रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाई हमने। और साथ ही साथ आपको अभी बता दें कि ये जो आज दिन है ये डॉक्टर्स को तो समर्पित है, तो साथ ही साथ हमारे CAs जो हैं उनको भी समर्पित है, और साथ ही साथ जो हमारे इतने बड़े बड़े या बड़े कारोबारों या छोटे कारोबारों जो अकाउंट संभालते हैं ना, जो हमारे GST भरते हैं, उन सभी को समर्पित है। तो उनके लिए भी आज थोड़ा सा समय निकाल के उनको भी एक थैंक यू बोल दीजिएगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1: और एक इससे हटके भी एक दिवस आज है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस, वो भी आज ही के दिन मनाया जाता है।
0: हाँ, इंटरनेशनल जोक डे है, तो हंसी जो है ना वो सबसे ज्यादा, कहते हैं, सबसे सस्ती और असरदार दवा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: खुशी का कोई मोल नहीं होता है, और खुशी जो है वो चुटकुले से तो अक्सर मिल जाया करती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ये जो हंसी है उसको बरकरार रखिए और हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: और दोस्तों वक्त हो गया है 9:40 और ये वक्त है जब हम आपसे एक आज के खास दिन से जुड़ी आप तक बात पहुंचाने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं
1: जी हाँ दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की लखनऊ की कुलपति हैं तो वो हमसे जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ आज है नेशनल डॉक्टर्स डे तो इसी उपलक्ष्य में हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। स्वागत है मैम हमारा आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो स्वागत है मैम।
2: नमस्कार जी। नमस्ते
1: तो मैम जी बताइए मैम
2: आप बोलिए।
1: हाँ मैम मैं बस ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि आप भी आपने भी अपना जो पूरी लाइफ है वो एक तरह से लोगों के हेल्थ केयर में लगा दी तो आज जो नेशनल डॉक्टर्स डे हम मना रहे हैं इस उपलक्ष्य में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे मैम कि जैसे एक डॉक्टर है वो सभी की सेहत का ध्यान रखते हैं तो उनकी सेहत का वो कैसे ध्यान रखते हैं इस पर थोड़ा सा आप हमें ज़रूर बताइए हमारे श्रोताओं को इस बारे में अवगत कराइए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बुलाया है और एक अपॉर्चुनिटी दी है सबको हैप्पी डॉक्टर डे कहने की और आज वो दिन है जब हमें एक बारी रुक के अपना थैंक्स ग्रैटिट्यूड डॉक्टर्स के समक्ष प्रकट करना है।
1: जी
2: हम लोग कहते हैं कि एक एंजल्स होते हैं जिन्हें पर होते हैं आप लोगों ने फोटोज देखी होंगी
1: बिल्कुल जी
2: वो मैं मानती हूँ डॉक्टर्स हैं जिनमें पर के बदले स्टेथोस्कोप होते हैं
1: जी
2: तो मेरी नजर में डॉक्टर्स एंजल्स होते हैं। डॉक्टर्स गॉड के भगवान के हाथ होते हैं
1: जी
2: और एक डॉक्टर 1,000 जिंदगी को बदलता है एटलीस्ट 1,000 जिंदगी को बदलता है
1: जी
2: और केवल डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं ठीक करते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक होप देते हैं
1: जी
2: और आप जानते हैं कि होप सबसे बड़ी चीज है जो हम लोग को जीवित रखती है तो ये अनमोल रूल है डॉक्टर्स का
1: जी
2: नो डाउट ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत डेडिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम देना पड़ता है और अक्सर अपना टाइम अपनी फैमिली का टाइम कई बार छोड़ना पड़ता है जब आपके सामने ऐसी स्थिति होती है कि दूसरे बनने की ज्यादा जरूरत होती है आप
1: जी, जी
2: पर इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर्स अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करें। डॉक्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है क्योंकि उनको जानकारी है प्रिवेंटिव हेल्थ बीमारी हो ही क्यों अगर हम उसे प्रिवेंट कर लें डॉक्टर्स ज्यादा कौन ने क्यों समझता है तो डॉक्टर्स के लिए हेल्थ मींस प्रिवेंटिव हेल्थ उनका लाइफ स्टाइल उनका खाने पीने का स्टाइल एक्सरसाइज का स्टाइल स्लीप पैटर्न ऐसे होने चाहिए हैं कि स्पेशली खाने पीने का और एक्सरसाइज का कि वो बीमारी को होने ना दे
1: जी
2: ये मेरा आज पूरा मैसेज है डॉक्टर्स को अपनी हेल्थ स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ देखना है और मैं अंत में ये कहना चाहूंगी विलियम ऑस्लर की बहुत अच्छी एक स्टेन है कि एक अच्छा डॉक्टर बीमारी को ट्रीट करता है
1: जी
2: पर जो एक ग्रेट डॉक्टर है वो पेशेंट को ट्रीट करता है जिसमें बीमारी है
1: जी
2: मतलब पूरे पेशेंट को देखते हुए वो ट्रीटमेंट देता है केवल बीमारी को नहीं ट्रीटमेंट देता है
1: जी
2: उसमें होप जब आता है उसको लव देता है उसको केयर देता है को फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड देता है दैट इज व्हाट इज अ ग्रेट डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने ये मूल्यवान समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मैम।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की कुलपति, और जैसा कि इन्होंने बताया कि एक डॉक्टर जो है, एक अच्छा डॉक्टर बीमारी ट्रीट करता है, लेकिन एक बहुत अच्छा डॉक्टर यानी ग्रेट डॉक्टर वो बीमारी नहीं, वो मरीज को ठीक करता है। बीमारी के साथ साथ उसको केयर, उसको उतना ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ट्रीट करता है, तो सच में लाइफ तो बदलनी है।
2: बिल्कुल,
0: है ना,
2: होप के साथ जोड़ देता है। ये बहुत ही अच्छी बात मैम ने बताई और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और यही कहना चाहेंगे कि खुदा का दूसरा रूप है डॉक्टर, दर्द में मरहम और सुकून है डॉक्टर, जान बचाते हैं जो हंस कर रोज़, उन फरिश्तों को सलाम है रोज़। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
4: दोस्तों,

0: के 50 मिनट हो चुके हैं और अब बारी है कुछ मेल शामिल कर लें क्योंकि अब समय बहुत कम है और मेल्स बहुत ज़्यादा है
1: और मेल्स का सिलसिला अगर देखा जाए तो बहुत सारे नाम हैं, तो शुरुआत जल्दी से कर देते हैं
0: जी। सुधांशु जी ने हमें अब इस मुद्दे पर कुछ लिख के भेजा है। लिखते हैं कि मेरा इलाज डॉक्टर सिद्धार्थ सर ने किया था जो नेत्र विभाग मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर थे, तो आँखों में मोतियाबिंद था। उन्होंने पहले बचपन में मेरी आँखों का ऑपरेशन किया था और मोतियाबिंद निकाला था, उसके बाद उन्होंने उसमें लेंस डाला था। हालांकि पूरी कोशिश करी उन्होंने कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनके डाले हुए लेंस आज भी मुझे रास्ता दिखाते हैं। तो ये कहते हैं ना कि एक डॉक्टर ने जिंदगी बदल दी, वो जी हिफाजत करते हैं
1: हमेशा, उनके लिए सम्मान रहता है दिल में। और इसी के साथ गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आ गया है, लिखती हैं गुड मॉर्निंग, हम दोनों को गुड मॉर्निंग लिखा है इन्होंने। संडीला से इनका मेल आया है, प्रोग्राम और गाने दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे फैमिली डॉक्टर हैं जिनका नाम है सुमित कुमार जी, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और जब भी आप मेरी हमारी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो बस हम लोग एक फ़ोन मिलाते हैं और उनसे सजेशन ले लेते हैं और उनके पास तुरंत पहुँच भी जाते हैं। तो डॉक्टर को थैंक यू कहना चाहेंगे जो उनके डॉक्टर हैं सुमित कुमार जी। तो गुलफशा जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना अपनी बात हमसे शेयर करने के लिए।
0: प्रवीण खत्री जी ने सभी को सादर प्रणाम भेजा है, आपको भी धन्यवाद। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर सभी सम्मानीय चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और लिखते हैं कि आज के दिन वो कहना चाहते हैं कि धरती पर यदि ईश्वर का दूसरा कोई रूप है तो वो डॉक्टर है, जो हर धड़कन में उम्मीद और हर इलाज में जीवन का नया विश्वास जगाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने प्रवीण जी, क्योंकि यही अभी हमारी मैम से जो बात हुई थी उन्होंने भी यही बोला कि जो डॉक्टर है ना वो एंजल की तरह होता है, वो हमें जिंदगी में सबसे ज़्यादा क्या है आशा, उसको जिंदा रखता है, और सबसे बड़ी बात यही है।
1: बिल्कुल। इसके साथ वारिस अली खान जी का भी मेल आ गया, लिखते हैं रत्ना और तरुषी मैम नमस्कार, आज का मुद्दा बहुत प्यारा है। मेरा भाई भी डॉक्टर है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हंसमुख स्वभाव के हैं, पेशेंट से बड़े प्यार से और मुस्कुराहट के साथ बात करते हैं और उनकी आधी बीमारी तो बिना मेडिसिन के ही ठीक हो जाती है।
0: बिल्कुल सही
1: जी। और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई उन्हें रात को भी बुलाता है तो तुरंत उसके घर जाकर उसका इलाज करते हैं। उनका मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है और उन्होंने आज तक कभी भी पैसे को महत्व नहीं दिया। उनका कहना है कि मेरा पेशा बीमार का इलाज करना है, इसलिए मैं पैसे को प्राथमिकता नहीं देता हूँ। और उनका नाम है डॉक्टर एस ए खान। मैं आपके माध्यम से सभी डॉक्टर्स को आज बधाई देता हूँ। संजय नगर ऐशबाग से एडवोकेट वारिस अली खान जी ने अपना ये दिल की बात हम तक पहुँचाई और आज के खास दिन पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: वकील अहमद जी ने मेल लिखा है, लिखते हैं 2 साल पहले बीमार हो गए थे ये, लखीमपुर हसीब डॉक्टर के यहाँ गए थे और ठीक हो गए थे, तो वो बहुत अच्छे थे। अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से इन्होंने मेल किया है।
1: और जावेद पटेल जी का भी मेल आ गया है, ये लिखते हैं विलेज खुशबगंज से नहीं और तहसील मंगल वेधा डिस्ट्रिक्ट सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने मेल किया है। गुड मॉर्निंग लिखते हैं और सभी डॉक्टर्स को इन्होंने हैप्पी डॉक्टर्स डे लिखा है।

0: कि मेरा पेशा बीमार का इलाज करना है, इसलिए मैं पैसे को प्राथमिकता नहीं देता हूं। और उनका नाम है डॉक्टर एस ए खान। मैं आपके माध्यम से सभी डॉक्टर्स को आज बधाई देता हूं। संजय नगर ऐशबाग से एडवोकेट वारिस अली खान जी, इन्हें अपना ये दिल की बात हम तक पहुंचाई और आज के खास दिन पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: वकील अहमद जी ने मेल लिखा है, लिखते हैं 2 साल पहले बीमार हो गए थे, ये लखीमपुर हसीब डॉक्टर के यहाँ गए थे और ठीक हो गए थे, तो वो बहुत अच्छे थे। अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से इन्होंने मेल किया है।
0: और जावेद पटेल जी का भी मेल आ गया है, ये लिखते हैं विलेज खुशगंज से नहीं और तहसील मंगल वेधा डिस्ट्रिक्ट सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने मेल किया। गुड मॉर्निंग लिखते हैं और सभी डॉक्टर्स को इन्होंने हैप्पी डॉक्टर्स डे लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जसप्रीत विश्वकर्मा जी ने मेल भेजा है, लिखते हैं कि मेरे फैमिली डॉक्टर का यही कहना है कि आप केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते बल्कि टूटते हुए परिवारों को एक नई उम्मीद और नई जिंदगी देते हैं। रातों की नींद और आपका त्याग दुनिया को सुरक्षित रखता है, मानवता आपकी हमेशा ऋणी रहेगी। हैप्पी डॉक्टर्स डे, बहुत खूबसूरत लाइन, थैंक यू सो मच।
0: और तेज बहादुर यादव जी ने भी लिखा है, तरुश्री दीदी और रत्न

0: यहाँ गए थे और ठीक हो गए थे, तो वो बहुत अच्छे थे। अहमद मंसूरी कटका हथूरी ज़िला सीतापुर से इन्होंने मेल किया है।
1: और जावेद पटेल जी का भी मेल आ गया है, ये लिखते हैं विलेज खुशबगंज से, नहीं और तहसील मंगल वेधा डिस्ट्रिक्ट सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने मेल किया है। गुड मॉर्निंग लिखते हैं और सभी डॉक्टर्स को इन्होंने हैप्पी डॉक्टर्स डे लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जसप्रीत विश्वकर्मा जी ने मेल भेजा है, लिखते हैं कि मेरे फैमिली डॉक्टर का यही कहना है कि आप केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते बल्कि टूटते हुए परिवारों को एक नई उम्मीद और नई जिंदगी देते हैं। रातों की नींद और आपका त्याग दुनिया को सुरक्षित रखता है, मानवता आपकी हमेशा ऋणी रहेगी। हैप्पी डॉक्टर्स डे, बहुत खूबसूरत लाइन, थैंक यू सो मच।
1: और तेज बहादुर यादव जी ने भी लिखा है, तरुषी दीदी और रत्न शुक्ला जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, हम दोनों बहुत अच्छे हैं। सुबह पुष्पांजलि और सदाबहार गीत में तरुषी जी ने बहुत सुंदर गीत सुनवाए, बहुत अच्छे लगे। तो तरुषी जी आपको बहुत बधाई,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और GML भी बहुत बेहतरीन चल रहा है आप दोनों के जरिए। और मुद्दा जो आज का उस पर इन्होंने लिखा है कि दीदी हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर साहब हैं जो ज़्यादा हाई फाई तो नहीं लेकिन कहीं पर दवाई बहुत अच्छी देते हैं और फीस भी उचित

0: गांव भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से, और दोनों को इन्होंने प्रणाम कहा है हम दोनों को, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है। लिखा है भगवान नहीं, भगवान से बढ़कर है वो, और कोई नहीं जिंदगी देने वाले डॉक्टर हैं वो। आज के मुद्दे पर मेरा कहना है कि बहुत ही बचपन से हमारी जिंदगी को नई जिंदगी देने वाले वैद्य जी अब इस दुनिया में नहीं, भगवान उन्हें खुश रखे, उनको शत शत नमन, और डॉक्टर्स दिवस पर उनके साथ साथ सभी डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद। वो भगवान का स्वरूप होते हैं, बिना रुके मरीजों की सेवा करते हैं। और इसके साथ वक्त चूंकि नहीं रह गया है तो
1: हम लोग कुछ नाम, हम सबके नाम जरूर शामिल कर लेते हैं जिनके जिनके भी मेल्स रह गए हैं उनके। अगर आपको मौका मिले संदेश आपके गीत हमारे में प्रोग्राम में, तो आप जरूर शामिल करिएगा,
0: बिल्कुल,
1: ताकि ये जो कहना चाहते हैं, जिन डॉक्टरों को अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो जरूर उन तक पहुंचे। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मेल भेजे और उन डॉक्टर्स के बारे में हमें बताया जिन्होंने सच में अपनी डेडिकेशन के साथ लोगों की ज़िंदगी और बेहतर करी है। तो आज डॉक्टर्स डे की ढेर सारी बधाई उन सभी डॉक्टर्स को। और साथ ही साथ 9:56 का वक्त, अब गुड मॉर्निंग लखनऊ को वाइंड अप करते हैं। मैं आपसे आज के लिए बोलती हूँ टाटा बाय बाय, लेकिन रत्ना जी अभी आपके साथ रहेंगी, अगले प्रोग्राम लेकर आ रही हैं सुगंध माटी की। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज तड़के करीब 4:30 बजे स्लीपर बस और कार की जोरदार टक्कर में कार सवार 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बस हरियाणा से बिहार जबकि कार आगरा से लखनऊ आ रही थी। दोनों गाड़ियां एक ही लेन में थी। तेज रफ्तार बस कार को टक्कर मारते हुए एक्सप्रेसवे से नीचे गिरकर पलट गई। वहीं कार करीब 20 फीट तक घिसटती चली गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और CHC बांगरमऊ भेजा। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार भी बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। प्रवेश के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। उन्होंने बताया कि 30 जून को मॉनसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया है। आने वाले 3 दिनों में पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों खासकर विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब 1 दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और

तो सुना पंचव कि कौन कौन बतकही बताएं ये कि सावन मास में का हुआ था आषाढ़ मास में का हुआ था कौन कौन खूबी है कौन कौन मास की और यह तो है हमरे माटी की ताकत बाजी बाजी जौन सुकून ये लोकगीतन में मिलत है ना वो और कतहूँ ना ही मिलत है जैसे कि हमारे जीवरा कहते तो का तुम्हारो जीवरा ऐसे ही कहते तो चलो ये वो गीत में देखो का सुनावा थी

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सपने बड़े हैं,
5: स्टाइल अलग है,
4: तो ये शो है आपके लिए।
5: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
4: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
5: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
4: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: श्रोता पंचर, आप सभी को बता दें कार्यक्रम चलत है सुगंध माटी की 100.7 FM रेनबो पर। जय का कहते हैं धड़कन लखनऊ की। आई मैं हम यानी बोले तो रत्ना शुक्ला आपके साथ हैं, आप हो ना हमारे साथ। और का कही कि देखो अम्मा का बतावत रही कि जोने आषाढ़ शुरू हुई गवा है तो कहत रही कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़ जो चूक गया बाजार। 13 कार्तिक 3 आषाढ़ जो चूक गया बाजार। आषाढ़ के शुरुआती दिन बिजाई बुवाई खातिर विशेष होवत हैं। मक्का बाजरा सोयाबीन अरहर उड़द मूंग की बुवाई कर सकत हो आप और ख्यातन में सब्जी तमाम बोए सकत हो। अरे यू सब हमरी अम्मा तो हमते बतावत रही और तुम लोगों का भी हम याद दिला दी हैं। तो बस का करे के कई लोगों तो हमारे जितने संगे साथी हैं, कई किसान हैं, कते बहन है, कितनी बहनी है, यू सब हो सकत है कि ख्यातन में जुटे हुए अपन अपन काम कर रहे थे, बुआई रुपाई कर रहे थे, है कि नहीं। और अब हमका एक गवने याद आ रही है जो जिंदगी से जुड़ी कई चीजन का ये गीतन में हम सुन सकते हैं। तो चलो यू गीत हम तुम तक पहुंचावत हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की और तुम्हारे लोगों की बात कही भी हम सुना काहे से मेल के जरिए वही के बारे में बाद में बताइए, लेकिन पहले यू गीत सुन ले।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: साउथ 107 FM रेनबो पर कर चलत है कार्यक्रम सुगंध माटी की। नाम कत्ता नहीं है ना, तुमका लागत है कि नहीं, सुगंध माटी की। हमारे संस्कृति में पारंपरिक गीत कत्ते कत्ते सुंदर सुंदर हैं। प्रकृति की गोद में अपन हरी हरियाली की बात अगर करें तो हर गीत की मधुरता, शब्द रचना अत्ता नीक नीक सुशोभित हो कि होत है कि का कहें। और सुशोभित होने के जहाँ तक हम बात करी थे ना, तो यू जो पहाड़ की जो नीक नीक पगडंडियाँ होते हैं, उमा बहुत शुद्ध वायु जलवायु सब होते हैं उसमें, पहाड़ी बहुत ही नीक नीक गीत अगर हम आपका सुबाए दे तो का हुई मन का नीक लागी ना, चंगा लागी ना। तो चलो यू गीत हम आप तक पहुँचाए रही ने।

और अब तनिक हम कहे के चाह रही का कहे के चाह रही जा बताई दी आषाढ़ महीनवा मा हम हमार लोगन के संस्कृति मा कुछ बरत त्योहार है ये सब पड़त है उन्हों के नाम हम जियो हमार चाह रहे कि तोरे लोग संग हम बताई दे तुम सबका बताए के चाहे थे हम देखा आषाढ़ सोमवती अमावस्या पड़त है 13 जुलाई को होवे वाली है वो के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा आवे वाली है वही के बाद आषाढ़ी एकादशी भी आवे वाली है 25 जुलाई का यू मनावा जाइए और ओकरे बाद गुरु पूर्णिमा या कही कि व्यास पूजा भी आवे वाली है ये हुई जुलाई महीना में तो इन सब चीज़ों के मतलब आषाढ़ में जौन जौन व्रत और त्यौहार पड़े वाले हैं उनके हम नाम आप सब लोगों का बता दिए लेकिन आप लोगों का भी बताया कि है कि यू कार्यक्रम सुगंध माटी के आप सब लोगों का कैसन लग रहा है आप सब भाई जाना तो कि आप कहाँ कौन पते पे हमको बता सके तो कहाँ चिट्ठी पाती अपन भेज सकते हो अरे वही पता मेल आईडी जेका कहते हैं कि fmakashwani@gmail.com पर आप आहू बता सकते हो कि सुगंध माटी की कार्यक्रम में जौन कछु तुम बत कही कही के चाह रहे हो यू कार्यक्रम में मेल भेज के हमको बता दो तो आपके रेडियो साथी रत्ना शुक्ला कहते हैं कि उनके पहले यू बहुत ही धमाकेदार गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं यू आवगावा

जितने श्रोता पंचन सुनत हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की, और एक बता दें कि वक्त हुई चला है 10:42, और यू वक्त हम आप लोगों के, जैसे हम देखा कंप्यूटर डब्बा में बहुत सारे मेल आए गए हैं, यानी कि अपन चिट्ठी पातिया भेज दिए हो तो वही का हम शामिल करब, लेकिन उनके पहले हम एक सरोता वाला गाना जो हमारी दादी गावत रही वो हमका याद आ गवा, तो हम सोचे कि वो गाना गवने तुम तक पहुँचा दे, उसके बाद हम मेल शामिल करब। ठीक है, तो बने रहो, सुनत रहो कार्यक्रम सुगंध माटी की।

और भाई मौसम के मजा सबको जो है कोई लेवत रहो और इसके साथ साथ बहुत सारी मेल आई गई हमें लगे चिट्ठी पाती आ गई तो चलो सबका शामिल करा जाए और कौन कौन लिखे ने नागरकोहा जिला छत्तीसगढ़ से कौन लिखे ने झग्गर राम साहू जी ये तो गीत के फरमाइश कर रहे हैं तो यूँ कार्यक्रम में तो गीत के फरमाइश से पूरी हो ही नहीं सकते है प्रवीण हरगोने जी भी गीत के फरमाइश कर दी ने वही के भी कार्यक्रम में कोनो काम नहीं है यू कार्यक्रम में रामराज जी का लिखे ने ये लिखे ने श्री गणेशाय नमो सुगंध माटी की जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु राम शंकर रामचरण शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु बजरंगी काका सबसे पहले हमारी तरफ से रत्ना शुक्ला बिटिया को प्यार भरा नमस्कार आप हूँ के बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत प्रणाम और हमका देखो आशीर्वाद मिल गवा है कि इनका रामराज भाई के और का लिखे ने आप जो गाना सुनवावत तो बहुत ही सुपर हिट है सुगंध माटी की कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा थे आज बहिनी नीना सोनकर जी की याद आ गई और उनके हमार नमस्कार पहुंचा दियो तो बहुत बहुत नमस्कार उनका हम बोला नीना बहिनी के तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पाती भेजो मेल करे हो हमका ये कार्यक्रम में और उसके बाद हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी का लिखिन है बड़ी बहन जी का सादर प्रणाम पिंकू सोनी मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ सुगंध माटी के कार्यक्रम में हमें अपनी जमीन से जुड़ाव का एहसास हो जाता है और गाने तो लाजवाब ही हैं जो किसी भी प्रोग्राम में सुनने को नहीं मिलते सो धन्यवाद लिखा है इन्होंने और लिखा है कि हमारे कुछ रेडियो दोस्त हैं कुलदीप नारायण आकाश बहन गुलफशा सिद्दीकी और सभी लिसनर्स को बहुत बहुत इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं ब्रह्मेश सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील अहमद लिखिन है कि आवाज़ अच्छी लागत है सुगंध माटी के कार्यक्रम हूँ अच्छा लागत रहा है और लोकगीत बज रहे हैं बारिश होने से मौसम अच्छा हुई गवा है वकील अहमद मंसूरी कटका हतूरी जिला सीतापुर साहिबा अंसारी शाजी अंसारी शमा परवीन और रिंकी परवीन पिंकी महक अंसारी गुलफशा सिद्दीकी इन सब के नाम लिखिन हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेल करे खातिन वकील अहमद जी और किन किन का मेल हम शामिल करी गुलफशाह लिख दीन है कि गुड मॉर्निंग रत्ना मैम और संडीला से लिखे ना यो कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और शाजिया अंसारी शमा अंसारी सबके नाम मिली ही हैं तो हम सब मिलके सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलफशाह जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सुनत रहो जुड़त रहो 100.7 FM रेनबो से अरुण कुमार कुशवाहा जी लिखे ने घमोइया हरदोई से रत्ना जी आपको पार भरा नमस्कार प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है हमारे मकान की चुनाई होवत है अच्छा चुनाई हो रही है और आपका गाना सुन के हमारे मिस्त्री राधेश्याम जी झूम उठे हैं तो राधेश्याम भैया और जितने लोग सुना थे सबके बहुत बहुत धन्यवाद है कार्यक्रम सुगंध माटी के है ही ऐसे कार्यक्रम जो केवल केवल लेके आवत है 100.7 FM रेनबो पर यू कार्यक्रम आवत है बुधवार और शनिवार का तो ऐसे झूमत रहो सुनत रहो और का कहे के है बस ऐसी जो जितनी चिट्ठी पाती भेज दी हो ना आप सब लोग मेल भेजिए उसे आपका हम शामिल करें कि कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं काहे से कि बखत बहुत कम है लेकिन जो मौसम की दरकार है ना हमका ये जो मौसम आप सभी लोगों को बहुत नीक लागत हुई जो मौसम में यूँ बदलाव आए यानी कि ये जो मानसून की जो आमद हुई गई है उमा का मन करा था यही झूला है झूमने का खावे पिए का मन करा था लेकिन बारिश के मौसम में तनिक बहुत अगर अधिक बारिश होते तो तनी तकलीफ होता है लेकिन वही के साथ साथ बारिश के मौसम का जो आनंद होवत है ना वही के नहीं खोवे के चाहिए तनिक भी नहीं चूके के चाहिए तो हम सोचे थे कि यू गम नहीं आप लोग को सुनवा दे झलुआ उसके बाद का हुई थे बनवारी जी से का कहा जाते तो चलो वो सब

इतना कम वक्त बचा है कि कहाँ कहिए, 10:56 हो गए हैं और मोहम्मद आसिफ जी लिखे ने कार्यक्रम बहुत अच्छा लिख रहा है और रत्ना मैम आप थोड़ा जल्दी जल्दी आवा करो। तो मोहम्मद आसिफ अंसारी जी यू बात कहे के खातिर बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आई पे। और उसके बाद का लिखे है हाउस दीक्षित जी कौन नाम से लिखी है, गुड मॉर्निंग लिखे ने, और सवेरे 6 बजे से कार्यक्रम सुन रहा हूँ सभी, बहुत अच्छे सुगंध माटी की कार्यक्रम हमेशा इंतजार रहता है और समस्त डॉक्टर्स को भी आज बधाई देने का दिन है, उनको भी शुभकामनाएं। और मैडम लॉन्ग लिव रिगार्ड्स अनिल कुमार दीक्षित एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ से, थैंक यू सो मच। अंग्रेजी हम बोल दें तो हाथों हर चक्कर में दीक्षित सर। वही के बाद राजकमल जी भी मेल करे हैं, वही के बाद बहुत इंतजार रहते यू प्रोग्राम का और हैदर अली का कोई अच्छा कोनो गीत के नाम यू लिखे ने राजकमल यादव जी। वही के बाद तेज बहादुर यादव जी को भी मेल आ गवा है, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करे के बखत है, काहे से कि बेला है चलेगी। तो अगला कार्यक्रम बहुत जो आवे वाला बहुत नीक और बहुत रोचक होवे वाला है, काहे से कि आप सब बने रहो, जुड़े रहो कौन से 100.7 FM रेनबो से, रत्ना शुक्ला रही है तो हर संगे और देखो आगे का होवत है। तो चलो ये गीत सुनो, वही के बाद हम लौट के आवत ही।

नमस्कार, 11 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दामों में 183.50 रुपये की कमी की है। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर लखनऊ में 3,052.50 रुपये का मिलेगा, जो अभी तक 3,236 रुपये का पड़ रहा था। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके लिए इस माह भी लखनऊ के उपभोक्ताओं को 979.50 रुपये चुकाने होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। नई व्यवस्था के तहत हर जिले में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल को अपने कार्यक्षेत्र के पंचायत भवन या ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहना होगा। इससे ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से तहसील या अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक, स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। शाहजहांपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, FSDA, पुलिस और जिला प्रशासन के संयुक्त टीम ने राजधानी बेसन के नाम पर नकली बेसन और दाल तैयार करने वाली इकाई का भंडाफोड़ किया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के जियाखेल स्थित आरव उद्योग में छापेमारी के दौरान करीब 32,87,000 कीमत का माल, मशीन और बड़ी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री बरामद हुई। माल और मशीन को सीज कर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस पर जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: वाकई में दोस्तों हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, साथ में आपको भी इनवाइट करना चाहते हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में, जो कि 100.7 एफएम रेनबो पर शुरू हो चुका है। और शुक्रिया अदा यूं ही कैसे कर सकते हैं भाई, इतने दिनों के बाद ये मौका, ये मुद्दतों के बाद ये दिन आया है, चूँकि मसरूफियाँ थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो हम कहना चाहेंगे तरसती आँखों को जब उनका दीदार हुआ, इंतज़ार का हर लम्हा खुशी में शुमार हुआ, लगा जिंदगी का ख्वाब साकार हुआ, हमारे सभी लिसनर का इंतज़ार आज फिर से साकार हो रहा है, बहुत दिनों के बाद है। हमारे लिसनर्स बहुत इंतज़ार करते हैं और उनकी बातें हम तक आती हैं, लेकिन उनको एक अच्छा सा आकार या रूप नहीं मिल पाता है, तो हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया के साथ स्वागत करते हैं अपनी कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी कार्यक्रम प्रमुख सुमोना पांडे मैम का।
1: रत्ना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वाकई में श्रोताओं से मिलने का मौका मैं गंवाना कभी नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी मसरूफियत हो जाती है और मैं श्रोताओं के बीच में बिल्कुल आना चाहती हूँ, और आज भी मैं इसी वजह से आई हूँ। देखिए आज एक तो नेशनल डॉक्टर्स डे है, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो हमारा तो जीवन उनके बगैर अधूरा ही है, चाहे वो कोई भी पद्धति हो, अगर चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो या यूनानी हो या कोई भी पद्धति है,
0: जी
1: होम्योपैथी हो, मतलब कोई भी अगर हम पद्धति अपनाते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए, तो उन सभी चिकित्सकों को हमारा सलाम है, और वाकई में वो जिस तरह से हमारे लिए कार्यरत रहते हैं, यानी कि हम लोगों की जितनी भी परेशानियां, छोटी से छोटी बात हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, और वो पूरे कहना चाहिए कि डेडिकेशन के साथ और पूरे मन से सुनते भी हैं आपकी बात, और कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि अगर वो आपसे बात कर लेते हैं तो आधी बीमारी दूर हो जाती
0: है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: तो हम सभी डॉक्टर्स को कहना चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जिस तरह से सबकी सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं, उनके समर्पित हैं, तो आप बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और हम लोगों की तरफ से बहुत शुक्रिया।
0: बहुत ही अच्छी सी बात है सुमोना मैम ने कही, और जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर आकाशवाणी आते हैं, आपसे जुड़े हैं, हम सभी से जुड़े हैं, उनको तो सबसे पहले शुक्रिया पहुँच गया आपकी आवाज़ के ज़रिए, उसके साथ जितने भी देश दुनिया के डॉक्टर हैं उन सब की जो सेवाएं हम लोग को मिलती हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया सुमोना मैम की तरफ से पहुँच गया। और मैम आप इतने दिनों के बाद आई हैं, हमारे श्रोता लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, चूँकि उनके काफ़ी सारे मेल भी आ रहे हैं, हमने कहा कि हमें कुछ भी नहीं कहना, चूँकि उनके मेल ही बोलते हैं और बहुत ज़्यादा वो खुश हैं। तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी जितनी भी बातें हैं या कुछ उनकी जो जिज्ञासाएं हैं वो उनके मेल के ज़रिए हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, और इसमें जैसे हमें मेल आ गया मोहम्मद आसिफ जी का, और ये लिखते हैं तेलंगाना से ये सुन रहे हैं, और इनको पिछला प्रोग्राम सुगंध माटी की बहुत अच्छा लगा, लेकिन लिखते हैं कि जितने भी एफएम रेनबो के कार्यक्रम हैं वो सब हमें एक एक घंटे बाद जो उनका बदलना है, और वो बदलने के साथ साथ अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, वो इनको बहुत पसंद है।
1: तो आसिफ जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मेल किया, और देखिए आप लोगों के मेल से ही हमारा उत्साहवर्धन होता है, और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम आप तक पहुंचाए जाते हैं ताकि आपको उनसे मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी मिले और जागरूकता भी लोगों में हो कि हम जो भी बात लेकर आए, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे वो पर्यावरण के प्रति हो, और रत्ना मुझे इस बात पे याद आ रहा है कि आज से वन सप्ताह भी शुरू हो चुका है और हमें पर्यावरण के बारे में भी सोचना है, तो हम लोग कोशिश करें कि कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाएं, है ना, और घर के आसपास जरूर हरियाली होनी चाहिए। आजकल फ्लैट्स का जमाना आ गया है, लेकिन हम फिर भी अपने आंगन में या अपने बालकनी में थोड़ा बहुत तो हरियाली ला ही सकते हैं, है ना,
0: क्योंकि जब उस पेड़ में हल्का सा एक

0: कली खिलती है और फूल मुस्कुराते हैं तो फिर क्या बस लगता है कि बस नजदीक ही बैठे रहें।
1: बिल्कुल, और ये कार्यक्रम भी ऐसा ही है जिसमें मैसेजेस के जब कलियां खिलती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपकी बात हम तक पहुंचती है और श्रोताओं तक हमारी आवाज पहुंचती है तो हमें अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, तो सभी श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे आप भी हमें जल्दी से मेल कर सकते हैं और हमारी कार्यक्रम प्रमुख हमारे साथ इस वक्त मौका निकाल के आई हैं आकाशवाणी FM स्टूडियो में, तो FM@lucknow@gmail.com पर आप भी हमें मेल कर सकते हैं और आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाते हैं।

0: और अब हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास काफी सारे मेल आ रहे हैं, उसी में एक संदेश आया है, एक बसंत जी का जी। मेल आया है और ये चाहते हैं कि हमारी उनकी रिक्वेस्ट है कि सुमोनो मैम तक उनकी रिक्वेस्ट पहुंचा दी जाए। रात में जो 9 बजे का प्रोग्राम आता है जिसमें एल्बम सॉन्ग्स बनते हैं और भोजपुरी सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं, तो उससे उनको कहते हैं कि अगर उसके जगह कुछ और कार्यक्रम सजा के पेश किया जाए तो उनको और उनके साथियों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी।
1: जी बसंत जी, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है और हम कोशिश करेंगे कि आपके पसंद के अनुरूप भी कुछ कार्यक्रम हो। लेकिन अभी चूंकि ये कार्यक्रम चल रहा है तो एक नियम भी होता है कि हम किसी कार्यक्रम को अचानक कैसे ख़त्म कर दें, तो इसलिए कोशिश करेंगे हम आपके सुझाव पर भी जल्द से जल्द काम कर सकें। और इसी तरह हमें मेल करते रहिए। और रत्ना, आज इतना एक महत्वपूर्ण दिवस है तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हंसते खिलखिलाते रहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा सा संदेश देखिए आप सभी के लिए मैम की तरफ से। और आकाशवाणी प्रमुख है तो सभी का ख्याल रखती हैं, चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो जितने इनके लिसनर्स हो, सभी का ख्याल रखती हैं। और एक मेल मैम आ गया है वकील अहमद जी का और लिखते हैं कि मैम की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, गुड मॉर्निंग आपको कहा है। और उसके साथ साथ लिखा है कि सुमन है मैम, आप जल्दी जल्दी आया करिए और डॉक्टर दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इन्होंने दी और आपने भी हार्दिक शुभकामनाएं दी सभी को, तो उसके लिए इनकी तरफ से शुक्रिया इन्होंने लिखा है वकील अहमद जी ने। मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर और बारिश होने से मौसम अच्छा हो गया, मैम को जल्दी जल्दी इनवाइट किया करिए। तो मैम इस पर आपका क्या कहना है?
1: सभी आप, पहले तो मैं वकील जी को ही हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ। और देखिए बारिश आपके यहाँ हुई है, हमारे हम लोग अभी प्रतीक्षारत हैं, तो जितनी जल्दी बारिश हो जाए यहाँ भी माहौल खुशनुमा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और आपको भी और सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन को बहुत अर्थपूर्ण तरीके से बिताएं। और हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि हमें आगे हमारा लक्ष्य क्या है या हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, हमें आसपास के लोगों का ख्याल रखना है। और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी अपने सभी श्रोताओं से भी कहना चाहेंगे और जितने भी चिकित्सक हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत शुक्रिया है। और आप एक दूसरे का ख्याल रखें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हम लोग के साथ इसी तरह प्रेम बढ़ाते रहें और रिश्ते कायम रखें, क्योंकि जब आपके मेल हमारे पास आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कार्यक्रम में जो भी आपके सुझाव हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप चाहेंगे तो। बिल्कुल। और रत्ना, शायद आप एक और मैसेज पढ़ना चाहती हैं।
0: ए के दुबे जी का भी मेल आ गया और पत्रकार कृष्णा नगर से इन्होंने लिखा है और लिखते हैं सुमोना पांडे मैम को सादर प्रणाम और आपसे हमारा अनुरोध है मैम कि समाज में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए। आज के युवाओं और बच्चों को संस्कारवान बनाकर ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। संस्कारविहीन शिक्षा का परिणाम है कि हमारे बच्चे प्रणाम नमस्ते और चरण स्पर्श को से कोसों दूर हो गए, शिक्षित होकर भी अपने ही माँ बाप परिवार और समाज में आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। तो सभी के लिए ऐसा कुछ परिवार को लेकर के कुछ कार्यक्रम अगर समस्त परिवार के लिए शुरू किया जाए तो इसी शुभकामना के साथ हम आकाशवाणी

0: दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन भावनाओं के साथ मैं आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे मैम ये अनुरोध है।
1: तो दुबे जी आपको भी नमस्कार और हमारा आभार कि आपने इतनी अच्छी और इतनी गहन चिंता वाले विषय को उठाया है और वाकई में ये बहुत ज़रूरी होता है और हम कोशिश करते हैं अपने कई कार्यक्रमों के माध्यम से कि हम इस विषय पर बात करें, लेकिन सही बात है, हमें भी चिंतन करने की आवश्यकता है और जो भी हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको भी इस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों को एक सकारात्मक दिशा हम दे सकें।
0: जैसे हमारे यहाँ दोपहर में 12 बजे प्रोग्राम आता है शद्रूपा
1: जी,
0: उसमें कई सेगमेंट्स लेके आते हैं जो परिवार के ऊपर होते हैं और संस्कार से या कई अच्छी अच्छी बातों से जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, और हम इसीलिए कई विशेषज्ञों को भी लाते हैं और उनसे भी बात कराते हैं और कई बार हमारे जो आरजेज हैं वो इन टॉपिक्स पे बात करते भी हैं। तो ये बात ज़रूर है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको हम युवा बनने के बाद अगर हम कोई बात बताते हैं तो शायद वो समझ में कम आती है, इसलिए हमें बचपन से ही उनके जो पालन पोषण है उस पर ध्यान देना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हम रोल मॉडल बने, हम अच्छे बने तो हम अपने बच्चों को भी अच्छे तरफ प्रेरित कर सकते हैं,
0: सही दिशा में जी।
1: बिल्कुल, तो कई बार ये भी होती है कि भागा दौड़ी में हम बहुत सारा समय नहीं दे पाते हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सभी जो परिवार में कपल्स हैं वो कार्य भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी समय निकाल पाएं तो अपने बच्चों के साथ बैठें और उनके साथ बात करें, क्योंकि ये ही बहुत ज़रूरी है, जड़ को मजबूत करता है और ये भी उनके अंदर एक जो अपनापन है ना वो तभी आएगा जब वो अपने बड़ों को देखेंगे कि हाँ वो भी हमें समय दे रहे हैं
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: समय देना बहुत आवश्यक है। और दुबे जी वाकई में आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, आपके जो मशवरे हैं उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी कोई इस तरह के कार्यक्रम हो, हालांकि हमारा शत्रुपा जैसा कि रत्ना जी ने बताया और हम बीच बीच में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इन तरह के टॉपिक्स को जरूर उठाते हैं। तो पुनः आभार
0: जी, तो मैम का आभार आपको मिल गया दुबे जी। उसके साथ मैम के आगमन पर कई लोगों ने अलग अलग टॉपिक को लेकर के, अलग अलग बातों को लेकर के आपके लिए बहुत ज्यादा मेल करना शुरू कर दिया, तो मैम अगला मेल शामिल करिए, एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़े,
1: जैसा आपका मन हो। मुझे लगता है
0: मैं छोटा सा एक मेल है वो शामिल कर लेती हूँ। ये ताले बंसारी राजा कटरा बाराबंकी से इनका मेल आया है और लिखा है, कार्यक्रम प्रमुख मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और लिखा है कि सब बढ़िया है, ठीक ठाक है। एक फरमाइश स्टूडेंट्स के लिए कि हेलो जीनियस प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए और एफएम कार्यक्रम रिकॉर्डिंग, चाहे भले रिकॉर्डिंग करके उसको पेश किया जाए, अगर ऐसा हो पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तालिब अंसारी जी ने ऐसा लिखा है
1: जी। तालिब जी आपने पुरानी यादें ताज़ा कर दी, क्योंकि हेलो जीनियस एक समय पर बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम था और हम लोग भी इन्हीं लाइन्स पर सोच भी रहे हैं और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस तरह के कार्यक्रम लोगों तक पहुँचाए जाएँ और आपको कार्यक्रम पसंद आएंगे। तो इसी वादे के साथ अब रत्ना जी मैं भी चाहूँगी अपने श्रोताओं से अनुमति लेना, क्योंकि अब कई सारे हमारे भी ऐसे कार्य हैं जिनको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं समय समय पर ज़रूर अपने श्रोताओं से मिलने आऊँगी, इस बात का पक्का वादा है। और आप कार्यक्रम जारी रखें और सभी श्रोताओं को नमस्कार और पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी कि मैम ने थोड़ा सा समय निकाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य समय ये हमारे और आपके लिए रहा। जितने श्रोता हैं बहुत प्रसन्न हो गए, काफ़ी मेल भेज रहे हैं और मैंने उनकी बातों का मैम ने सुना, उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, उस दिशा में काम करेंगे, ऐसा कुछ कोशिश करेंगे। तो सभी लिसनर्स का शुक्रिया उनकी तरफ से, उसके साथ साथ हम तहे दिल से मैम का शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ मिनटों के लिए, लेकिन अपने श्रोताओं की एक मिलने के लिए और श्रोताओं से दोस्ती निभाने के लिए वो चली आई और सभी को शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी प्रमुख सुमोना पांडे जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।

0: देव बहुत हो।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक,
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: सपने बड़े हैं,
7: स्टाइल अलग है,
6: तो ये शो है आपके लिए।
7: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
6: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
7: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
6: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो चला है 11:31, प्रोग्राम संदेश आपके, गीत हमारे। बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आपकी तरफ से हमारे बीच में आते हैं और वो संदेश है सिर्फ हमें नहीं, आप सभी को जितने

श्रोता एफएम रेनबो से जुड़े उन सभी को लाभान्वित करते हैं। तो भाई जिन लोगों ने अभी अभी बिल्कुल अपना रेडियो सेट ऑन करा है उनको बता देते हैं कि आप भी हमें मेल कर सकते हैं। आपके लिए मेल आईडी हम एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं, मेल आईडी fmakashwani@gmail.com और आकाशवाणी में वी रहेगा ना कि डब्ल्यू। और इसके साथ साथ भाई वो मैजिकल नंबर है जिस पर आप डायल करके अपना प्यारा सा संदेश एफएम रेनबो के प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी मधुर सी आवाज़ भी सब लोगों तक सुनाई पड़ेगी और प्यारे से संदेश ज़रूर होना चाहिए। तो आप डायल कर सकते हैं लखनऊ का कोड 0522 यानी कि 0522, उसके अलावा 2238845 या फिर 2238852, ये दोनों नंबर हैं जिन पर आप डायल करके अपना प्यारा सा संदेश अपनी ही आवाज़ में हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और एमके राजी का मेल भी शामिल कर लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है भाई, इन्होंने लिखा है भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से इनका मेल आया है और रत्ना शुक्ला मैम जी कार्यक्रम प्रमुख सुमोना एस पांडे जी को सादर प्रणाम। तो मैम तक आपका प्रणाम ज़रूर पहुंच गया और सबसे पहले बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सुमोना मैम का कि और उसके बाद सभी आरजीएस को भी धन्यवाद इन्होंने कहा है और संदेश के माध्यम से उन सभी गणमान्य लोगों को आज के दिन हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं जो आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और अच्छे अच्छे संदेश देते हैं। और डॉक्टर्स डे की इन्होंने बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया शुभकामनाएं देने के लिए एम के राजी। और डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी और डॉक्टर जो हर हफ्ते आकाशवाणी लखनऊ में आते हैं और समय देते हैं उन सभी को और जो नगर निगम के प्रमुख आती हैं उनको भी, सुषमा खरकवाल जी को और हमारे मौसम वैज्ञानिक दानिश जी जो हर दिन गुड मॉर्निंग लखनऊ में मौसम से लेकर ट्रैफिक तक की जो अपडेट आप लोग विकास जी के द्वारा पहुँचवाते हैं हम तक, उन सब के और जो खुश मिजाज जी के साथ विकास सर जो हम सभी इससे जुड़ते हैं उन सब का ही इन्होंने शुक्रिया कहना चाहा है और कहा है कि भगवान सभी को स्वस्थ और मस्त रखे। इन सभी गणमान्य लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमोना मैम जी आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जुगन माटी के कार्यक्रम में कुछ और तरह की वैरायटी भी हम सुनना चाहते हैं जो कि इन्होंने मेंशन की है। तो और बाकी सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम के राजी, आपने बहुत ही अलग सी बात लिखी जी, क्योंकि हम अपने जितने भी गेस्ट हमारे एफएम रेनबो से जुड़ते हैं आप तक आते हैं आप तक अपने बातों के कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं उनका आपने शुक्रिया अलग से किया है और उसके साथ साथ सभी आरजीएस को इन्होंने थैंक यू कहा है और ख़ासतौर से आकाशवाणी कार्यक्रम प्रमुख जी का तहे दिल से इन्होंने शुक्रिया कहा है। तो जो को आपका सुझाव है सुगम माटी की कार्यक्रम में वो भी जो कि आल्हा जरूर सुनना चाहते हैं, बाकी कार्यक्रमों तो अच्छे लगते हैं लेकिन इस कार्यक्रम में आल्हा सुनना चाहते हैं तो ये भी आपकी बात जरूर सुन ली गई है और इस पे जो भी आगे कोशिश की जाएगी कि आगे जो कुछ भी हो सके प्रयास संभव वो जरूर किया जाएगा। और अब किन का नजीम रेंज का भी मेल आ गया है, नाजिम रेंज का मेल आ गया है और बस इन्होंने केवल हेलो लिखा है। तो नाजिम जी आपको भी बहुत बहुत हम कहेंगे शुक्रिया मेल करने के लिए। नागेश कुमार जी का भी मेल आया है, ये लिखते हैं पेड़ लगाओ धरती को फिर मुस्कान दो, हर सूखी राह को हरियाली की पहचान दो, आज जो पौधा तुम प्यार से लगाओगे कल उसी की छाँव में सुकून पाओगे। प्रेषक हैं नागेश कुमार, ग्राम व पोस्ट पता है ग्राम एवं पोस्ट उमरी जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल किया है और इतनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है क्योंकि आज से वन सप्ताह की शुरुआत हो रही है जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये सप्ताह चलेगा। वन महोत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं और हम क्या मना रहे हैं, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं कैसे कर सकते हैं वो भी आप हमें मेंशन करिए और थोड़ी और बातें करते हैं। इसके बाद फिलहाल ये ट्रैक आप तक पहुँच रहा है।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो।
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: और जैसे कि हमने आप सभी को फ़ोन नंबर बताया था, तो बस हमारे पास किसी का फ़ोन आ गया, हमारी रेगुलर लिस्नर हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताएं कैसी हैं?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस आप लोगों की आवाज़ सुन के कैसे कैसे कैसे कोई अच्छा नहीं हो सकता, ये बताइए।
1: आप मैम आज जो है बात बहुत दिनों के बाद आपसे हो रही है।
0: जी हम भी यही कहना चाहते हैं, बहुत दिनों बाद बात हो रही है, लेकिन अपना नाम और कहाँ से बोल रही ये तो बता दीजिए।
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास कर रहे हैं, सभी सुनने वालेकुम। मेरा मैम आपको मेरा दिल भरा नमस्कार।
0: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, बड़ी सुकून के साथ अब सोच समझ के बहुत अच्छे से बात कर रही हैं शमा जी।
1: मैम आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा,
0: कौन सा
1: से आपको सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं।
0: है तो पता है आपको कि आपकी इस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहना चाहेंगे, लेकिन जितने भी आप
1: स्टूडियो हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी जल्दी चली गई,
0: आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है शमा जी, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए।
1: अब आ रही मैम आवाज़?
0: हाँ जी आ रही है। हाँ
1: अरे सुमोना मैम स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम को।
0: जी जी ये आपने सबसे मेन बात कही।
1: चली गई,
0: मैंने कहा जैसे कि पहले कहा था, बहुत चंद मिनट अपने काम से व्यस्तता से निकाल करके वो आई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में, है ना? तो ये एक
1: बहुत शुक्रिया उनको मैम को।
0: जी जी तो इतनी आप लोगों की इतना वो आप लोगों से प्यार करती है, ख्याल रखती हैं, तो आपका शुक्रिया तक पहुंच गया।
1: जी
0: जी जी आप लोगों का जितनी मोहब्बत है वो सब उन तक पहुंच गई, इसीलिए वो खींची चली आई। और आपकी तरफ से भी उनको शुक्रिया, जितने लोग सुन रहे हैं, और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया सुमोना मैम को। तो चलिए आपका जो संदेश है वो आप जल्दी से दे दीजिए, एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ पीछे से भी आ रही है मुझे। जी संदेश संदेश दीजिए।
1: आज का क्या संदेश दें मैम?
0: तो चलिए बस मुस्कुराते रहिए और यूं ही

0: खिलखिलाती रही है और आपकी जी।
1: हेलो मैम,
0: जी बताइए।
1: अपने भाई बहन के हम नाम देना चाहते
0: हैं। जी वो आप हम आपसे कहने वाले थे, जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: जी
0: जी
1: वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, सरबान सारी गुलाबी कदम।
0: जी आपकी आवाज़ कहीं चली गई, लेकिन आपकी जो संदेश है, आपका जो नाम है, वो लोगों तक पहुंच गया। सभी बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत के साथ आपकी आवाज़ सुन रहे थे, और आपके जितने भी सुनने वाले श्रोता दोस्त हैं, वो सब भी आपका शुक्रिया कह रहे होंगे कि आपने उनका नाम ले लिया। तो चलिए हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और

और जानते हैं दोस्तों, जितने भी लोगों ने हमें मेल किया है, जितने भी लोग फोन लाइन पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन सबका हम शुक्रिया कहेंगे। उसके साथ साथ कई लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी इस संदेश के जरिए भेजी है। हिंदुस्तानी रमेश सोनी जी ने लिखा है, हमको बहुत बहुत इन्होंने नमस्कार कहा है। और मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ। मेरा संदेश है कि जो लोग अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कृपया वो ऐसा ना करें। बरसात का समय है तो गाड़ी ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, और जिससे चोट लगे और गाड़ी पार करने के बाद आप जब आप अपनी गाड़ी को कहीं ले जाने से पहले ये देख लें कि कोई जानवर गाड़ी के नीचे लेटा हो या उसकी जान बच सके तो ज़रूर बचाएं, उसके बाद ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आप कहीं ले जाएं। आपने तो बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश दे दिए हिंदुस्तानी रमेश सोनी जी, आपने एक नहीं दो नहीं तीन संदेश दे दिए बच्चों की को किस तरह से लालन पालन में झगड़ा उनके सामने नहीं होना चाहिए, बरसात के समय में गाड़ी तेज़ ना चलाएं, और इसके साथ साथ आपकी गाड़ी के आसपास अगर कोई जानवर है तो उसको किसी भी तरह की चोट या आहत ना पहुंचाएं। ये तीन संदेश आपने एक साथ दे दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखिए मोनू सेठ जी का भी मेल आ गया है खालिसपुर अमेठी से। रत्ना जी और साथ में परिवार की मुखिया आदरणीय सुमोना मैम जी को बहुत बहुत नमस्कार। और आपके यहाँ सभी प्रोग्राम बहुत सराहनीय होते हैं और जेमेल बहुत ख़ास होता है, जिसमें अग्रिम समय पर विशेष समय आने वाले समय पर चर्चा की गई और जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। हेल्थ एंड फिटनेस सबकी सेहत पर बात होती है और इसके लिए आपका आभार। माटी की सुगंध माटी की में के लिए इन्होंने सुझाव कुछ नाम दे सुझाए हैं, और इस प्रोग्राम को रात में आठ बजे कर दिया जाए और कुछ आजेस की समय सारणी भी बदल दिया जाए, जिससे शाम को ही आते और उन्हें अच्छा समय सारणी उन्होंने बदलने का सुझाव दिया है मोनू सेठ जी ने। तो चलिए आपकी बात भी सुन ली गई है, हो सकता है इस पर कुछ आगे कुछ हो सके तो ज़रूर आपकी जानकारी में आएगा। तो इन सब बातों के साथ अब एक नंबर है आप तक, गाने का एक ट्रैक आप तक पहुँचाना है, उसको हम पहुँचाते हैं, सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

और आइए दोस्तों, यूं तो 1 जुलाई अपने आप में बहुत खास है, लेकिन अगर हम खास बात की करते हैं तो कई खास बातों के बारे में आपको जानकारी सुबह से मिलती आ रही है। और इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं वन सप्ताह यानी कि वन महोत्सव, जो कि 1 से 7 जुलाई के बीच में आज ही से शुरू हुआ। ये वन महोत्सव मनाया जाएगा। इनफैक्ट ये इसकी शुरुआत हो चुकी है आज सुबह से ही, और ये बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है। और मॉनसून के आगमन के साथ दिल भी खिलता है, वादियां भी खिलती हैं, और इसके साथ साथ हमारा पर्यावरण भी सुधरता है। और एकजुट होकर के सभी नागरिकों को, विद्यालय को, संस्थानों को, समुदायों को, और जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी नागरिक ओवरऑल कहा जाए, इन सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और कदम बढ़ाने में आप सबसे छोटा सा सरल सा उपाय ये कर सकते हैं कि अपने आसपास पौधारोपण ज़रूर करिए। और सबसे आपका जो फेवरेट पौधा होना, चाहे उसी में कोई फल उगते हो या फिर वो फूल का पौधा हो या फिर कुछ शो प्लांट हो, कुछ भी हो, वो अपना जो फेवरेट पौधा है, ये मेरा सजेशन आया आपको कि रत्ना का सजेशन है कि आप अपना फेवरेट पौधा या प्लांट आप ज़रूर इस सप्ताह के बीच में लगाइए, और एक नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। क्योंकि आप अगर फेवरेट पौधे को लगाते हैं ना, तो उसकी जो खुशी होगी आपको, उसकी मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उसको अल्फाजों में नहीं बांधा जा सकता उस खुशी को। वो जब आप पौधा देखेंगे बड़ा होता, पालते पोसते उसको, जब वो बड़ा होगा, अगर वो फल देता है या फूल देता है या फिर वो सुंदरता से आपको रिझाता है, तो वो सुकून, वो खुशी और आप कहीं नहीं पा सकते। तो आप अपनी इसको प्राथमिकता में इसको आप शामिल कर सकते हैं। और चूंकि हम यही कहना चाहेंगे कि हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है, जितने भी पौधे आप लगाते हैं या जितने आपके आसपास हैं, उनकी देखभाल करना, उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना, ये सिर्फ आपका हमारा ही काम है। सिर्फ पौधा लगा के छोड़ने से कुछ नहीं होता। और आप पौधे कहाँ से प्राप्त करें भाई, इसके लिए बहुत सारी आपके आसपास, आप थोड़े थोड़े दूर पे बढ़ेंगे तो आपको नर्सरी बहुत मिलेंगी, या फिर आप एक कलम से दूसरा पौधा भी बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप वन महोत्सव सप्ताह जो शुरू हुआ है उसके बीच में करते हैं, तो ये ताउम्र आपको याद भी रहेगा।

और इन बातों के साथ अब हम मेल भी शामिल कर लेते हैं जितने लोगों ने हमें मेल भेजा है। चूंकि 11:51 हो रहे हैं तो वक्त बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं देगा, तो मोनू सेठ जी के बाद अब मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल आ गया है और लिखते हैं कि मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ, प्रोग्राम माटी की सुगंध बहुत अच्छा लगा और संदेश ये रहता मैम कि आसपास सफाई रखे, नाले में कचरा ना डालें, इससे नाले चोक हो जाते हैं, बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है और आज डॉक्टर दिवस है तो एक बात और दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह में ही खाएं, सोशल मीडिया पर देखकर ना खाएं। और साहिबा अंसारी बबीता राव रोशनी दीदी का भी इन्होंने नाम मेंशन किया, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और अपने मन से या स्टोर से खरीद कर नहीं खानी चाहिए। आपका संदेश बहुत प्यारा रहा। और इसके बाद अंशु गुप्ता जी का भी मेल आया है, नमस्ते आपको भी बहुत बहुत नारायण, मैं नारायण गुप्ता बाबा श्री जग जीवन दास साहब कोटवो धाम डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से हूँ और आपका प्रोग्राम हमको बहुत पसंद आ रहा है और हैप्पी डॉक्टर्स डे कहना चाहता हूँ। और इसके साथ गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। वारिस अली खान जी का भी मेल आ गया है, लिखते हैं कि आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त रत्ना जी को खान परिवार का बहुत आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी परिवार को भी सलाम। और अर्ज़ है ज़िंदगी में कुछ हसीन पल यूं ही गुजर जाते हैं, रह जाती यादें और इंसान बिछड़ जाते हैं। और इसके साथ संदेश ये है, ज़िंदगी एक गणित के समीकरण सी है, अधिकतम लाभ पाने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि नकारात्मक को सकारात्मक में कैसे बदलें। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा सा संदेश है कि नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए, उसको सकारात्मकता की दिशा में ले जाने के लिए कुछ ज़रूर स्टेप उठाने चाहिए। वारिस अली जी का ये संदेश है, एडवोकेट वारिस अली जी संजय नगर ऐशबाग से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से संदेश और प्रोग्राम के बारे में लिखने के लिए। उसके बाद धर्मवीर भारती जी का भी मेल आ गया, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग और सुमोना मैम जी को उन्होंने नमस्कार कहा है। और धर्मवीर भारती कंचन नगर शुक्लागंज उन्नाव से, प्रोग्राम शानदार लग रहा है इस वक्त और मैडम जी मैं एक नियमित श्रोता हूँ एफएम रेनबो लखनऊ का और मेरा सुझाव छोटा सा है कि जब आप धड़कन लखनऊ की जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि धड़कन हम सब की होनी चाहिए और जितने भी सुनते हैं उन सब की धड़कन है एफएम रेनबो। थैंक्स मैम जी और फुल टीम को इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया कहा है, तो ये भी बात आपकी बहुत अच्छी लगी, सिर्फ किसी एक की नहीं, सभी जितने श्रोता हैं सभी धड़कन है एफएम रेनबो। और भाई वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है तो वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और धर्मवीर भारती जी का भी मेल आ गया है, वो हमने शामिल कर लिया। उसके बाद सुधांशु एस जी का फिर से मेल आ गया है, राधे राधे सुधांशु जी, भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, सुमोना मैम जी को इन्होंने नमस्कार भेजा और अपनी मसरूफियत की वजह से वो स्टूडियो में इस वक्त ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई हैं। और संदेश उनका यह है कि सुधांशु जी की स्कूली बस तथा गाड़ी सावधानी से चलाएं सभी ड्राइवर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, किसी ने अपने बच्चों को अपने आप के हवाले किया है तो बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में होती है। बिल्कुल सही सुझाव, बहुत ही दुरुस्त सुझाव है, आज से स्कूल भी खुल गए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। और कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूँ कि रविवार को सुबह 10 से 11 तक एफ एम रेनबो दिल्ली से कनेक्ट किया जाए, उसमें ओ पी राठौर जी का कार्यक्रम प्रसारित हो जाए जो कि अच्छा लगता है, तो ये सुझाव भी आपका सुन लिया गया है, नोट कर लिया गया है। और इन बातों के साथ हम आपसे क्या कहना चाहेंगे, आपसे ये कहना चाहेंगे कि एक छोटा सा सॉन्ग आप तक पहुंचाते हैं और आपको ये भी बता दें कि अगले कार्यक्रम से कुछ घंटे शालिनी आपके साथ रहने वाली हैं, तो शालिनी तो आपके साथ रहेंगे लेकिन रत्ना आपसे चलते चलते ये कहेगी कि जो अभी हमने आपसे कुछ देर पहले वन संरक्षण की जो बात की कि आप किस तरह से पौधे लगा सकते हैं और किस तरह से आगे अपने आसपास हरियाली आप बना सकते हैं, उस पर आप ज़रूर गौर करिएगा। और इस बार के 2026 की जो अगर हम बात करते हैं तो वन सप्ताह की जो थीम है वो रखी गई है वन और अर्थव्यवस्था, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप वन को संरक्षित सुरक्षित और खूबसूरत बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम और आप भी लाभान्वित होंगे, है ना। तो इन बातों के साथ शालिनी भी आपके साथ जुड़ने वाली हैं कुछ ही पल में। तो रत्ना कहती है कि एफएम रेनबो से जुड़े रहिए, 100.7 के सभी प्रोग्राम्स को इन्जॉय करते रहिए और बस आज के लिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी फिर जल्दी इसी चैनल पर आपसे। रखिए अपना ख्याल, मौसम को इन्जॉय करते रहिए और अगले कुछ घंटे रहिए शालिनी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर सनदी लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सनदी लेखाकार भारत की आर्थिक यात्रा में विश्वसनीय साझेदार रहे हैं। पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से सनदी लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनने के प्रयासों में सनदी लेखाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी TET 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रही यूपी TET की सुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी TET परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृति करने का भी फैसला लिया है। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज

से वृद्धि लागू हो गई है। यह वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत की गई है। इसके तहत नए बदलाव 36 प्रश्नों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनने की लागत अब ₹2,500 होगी। 60 प्रश्नों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्टों की लागत ₹3,500 निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत यह ₹6,000 होगी। 36 प्रश्नों वाले पासपोर्ट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रतिस्थापन साधारण पासपोर्ट जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह सम्मेलन दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोगों के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम में, चौथा 9 जुलाई को ब्रिस्टल में और पांचवा व अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: कर 5 मिनट और 35 सेकंड का वक्त शालिनी आ चुकी है लेकर छटपटी बातें, जी हाँ, जायके के साथ, क्योंकि आज शत्रुपा में हम बातें करते हैं चटपटी वाली। समझ गए ना कौन सी डिश लेकर आए हैं, क्या खास है, क्या आपको नया बताने वाले हैं और कैसे आप उसे एंजॉय करेंगे, ये सब है सरप्राइज, वो भी एक छोटे से गाने के बाद। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर लेते हैं और हमारे साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगी तो भी बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके घर में हो भी सकती हैं। हाँ, तो बस सोचिए क्या है खास और

12:11 और 5 सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, और सबकी निगाहें आसमान की ओर है। आज से नहीं कल से है, कई जगह तो बारिश हुई भी है और कई जगह ये बता कर गई है कि

हम आ रहे हैं और आई नहीं है, है ना, कुछ इसी तरह का हुआ है। और सच में सभी लोग निगाहें ऊपर लगाकर बैठे हैं कि कब ये आएगी और कब हमें गर्मी से राहत मिलेगी। तो चलिए, मानसून तो आने ही वाला है, कहीं कहीं पर आ चुका है और उसकी तो बात हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। लेकिन इस बारिश से रिलेटेड जो बात हम करने वाले हैं, कटहल की। कटहल बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, इसके कई तरीके हैं, किसी को इसकी पकौड़ियाँ पसंद।

खाते हैं। जब कटहल पक जाता है तो उसके अंदर का जो कोया होता है मीठा लगता है, वो भी खाते हैं। लेकिन अक्सर क्या करते हैं हम सभी, हो सकता आप भी करते हो, जो कटहल की बीज होती है उसे निकाल कर फेंक देते हैं। अरे हम आपकी बात नहीं कर रहे भाई, आप तो कटहल की बीज की भी सब्जी बना लेती हैं, क्या बात है भाई। ऐसा होना चाहिए ना, जो किसी भी सामान का उपयोग अच्छे से कर सके, वेस्ट ना जाने दे कोई भी सारी चीज़ें। लेकिन आज पता है क्या हम बताने वाले हैं आपको, जो लोग बीज की सब्जी बना लेते हैं तो ठीक है, क्या कोई और भी चीज़ सोची है कि कटहल के बीज से और भी कोई चीज़ हम बना सकते हैं? नहीं सोचा ना, तो ज़रा सोचिए क्या कर सकते हैं और क्या खास किया जा सकता है नए अंदाज में। हाँ इतना बता दिया काफ़ी है, बाकी हम बताएंगे इस गाने के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों हम सभी रेडी हैं ना कटहल की बीज की क्या बनाएंगे? आज हम टिक्कियां बनाएंगे। जी हाँ, और कटहल के खाने के बाद हम अक्सर बीज को फेंक देते हैं और कभी कभी उसको छीलना भी नहीं चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है ना, कभी कभी स्लिप भी कर जाता है और बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हम क्या करें, जब कटहल बना रहे हो तो उसके मजबूत बीजों को पहले से ही अलग कर लें। और पता है आपको, इन बीजों में बहुत ताकत होती है, शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं और अगर हम सेहत की बात करें तो हड्डी भी मजबूत करते हैं, पेट भी ठीक रखते हैं और बच्चों और बड़ों सबके लिए फायदेमंद होते हैं। कैसे बनाना है आपको? बीज को ले लेना है, अलग कर लेना है और प्रेशर कुकर में 2 सीटी तक उबाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, आसानी से उसका छिकला उतर जाएगा। जब छिकला उतर जाए, जो उसका गूदा होगा, जो बीज होगी, उसे अच्छे से मसल लेना है और उसमें थोड़ा सा उबला आलू भी मिलाना है, कटा प्याज आप उसमें मिलाइए, हरी मिर्च मिलाइए, हरी धनिया मिलाइए, काला नमक, गरम नमक, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप उसे गोल गोल टिक्की का आकार दे सकते हैं। और जैसा भी आकार आप देना चाहें, बढ़िया सा हार्ट शेप का भी आकार आप अपने हाथों से, उंगलियों से भी आसानी से दे सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जब आपकी ये टिक्कियां तैयार हों, उन टिक्कियों को तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर, जो भी आप खाते हो, देसी घी पसंद करते हो तो वो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा तेल डालिए और टिक्कियों को आराम से तवे पर लाल होने तक सेक लीजिए।

और जब आपको सर्व करना है तो भी आप जस्ट लाइक मटर चाट वाला या आलू वाली टिक्की की तरह भी सर्व कर सकते हैं, और नहीं ज़्यादा कुछ करना है तो ऊपर से नींबू निचोड़ लीजिए और बस चटकारे लगाकर खा लीजिए। क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा होगा ना अभी से। और ये सब करने में पता है मुश्किल से मुश्किल आपको 20 या 25 मिनट्स लगने वाले हैं, और कुछ भी अलग से खर्चा नहीं होना है। जी हाँ, जो सब्जी लाए हैं जो आप हटा देते थे उसी का ही बनाना है, और थोड़ा सा और कुरकुरी उसे कुछ और बनाना है। तो भुना चना होता है ना, उसे पीसकर आप उसमें मिलाएंगे ना, तो जो टिक्कियाँ हैं वो और कुरकुरी और टेस्टी हो जाएंगी।

12:26 का वक्त शालिनी आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में, जो कि आप सभी सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, क्या है धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, तो अभी आपने कटहल

के बीज की टिक्कियां बनाना सीख लिया है। पसंद आई ना? टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा ना? इस स्माइल के साथ जब आप यस बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, जिनको कटहल की टिक्कियां नहीं पसंद आई और जिनको पसंद आई, दोनों के लिए हम अब नेक्स्ट चीज और एक बताने वाले हैं। वो क्या है? वाटर मिलन। अब आप सोचेंगे तरबूज के बारे में क्या ही बताएंगे, उसको तो हम लाते हैं और उसका तो यूज़ हम हर तरह से करते हैं और खाते हैं, मज़ा आता है। हाँ, दुख तो तब होता है जब हमारा तरबूज लाल नहीं निकलता है ना। तो चलिए, अच्छा क्या करते हैं, तरबूज की हम बीज को भी सुखा कर रख लेते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका गूदा तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन अक्सर हम उसका छिकला फेंक देते हैं। अक्सर क्या, हमेशा ही फेंक देते थे। तो अब क्या करना है आपको? अब आप सोच रहे होंगे कि शालिनी के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है, आप क्या चीज़ बताने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि हम उस तरबूज के छिकले की सब्जी आपको बताने वाले हैं जो अक्सर आप फेंक दिया करते थे। जी हाँ, उसके छिकले की सब्जी कैसे बनेगी, क्या होगी, बहुत ही टेस्टी, लेकिन ये सारी चीज़ें इस प्यारे से गाने के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना।

0: है, उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तरबूज की और तरबूज के छिकले की सब्जी की। तो अब क्या करना है आपको, जो अच्छा पहले हम बता दें कि तरबूज के छिकले की सब्जी से आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको पता है ये गर्मी में हमारे शरीर को ठंडा रखता है और इसमें बहुत सारा पानी होता है, लू से भी बचाता है और जो रक्तचाप है उसे भी ठीक रखता है। और कैसे बनाना है अब आपको हम बताने जा रहे हैं। तरबूज का जो छिकला लेते हैं, जो उसके ऊपर का हरा या काले रंग का, जो भी जिस कलर का आपने तरबूज लिया है उसका छिकला हटाना है, यानी कि जो लाल रंग से और ग्रीन या ब्लैक कलर के बीच का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसे निकालना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े सफ़ेद हिस्से के काट के रख लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लिया आपने, कढ़ाई ली और उसमें आपने

या आप खाने में ऑयल इस्तेमाल करते हैं या घी इस्तेमाल करते हैं वो आपको डालना है। गर्म होने पर आपको तड़का लगाना है जीरे का, हींग का और हरी मिर्च का। और उसके बाद जो आपने तरबूज के छिकले के टुकड़े काट के रखे हैं उसे उसमें डाल देना है। हल्दी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल दीजिए और साथ ही साथ नमक डालना है और 10 मिनट तक ढक कर पकाना है। और उसके बाद आमचूर भी आप उसमें डालिए तो देखिए ये चटपटी सब्जी आपकी लौकी की तरह नजर आएगी। जी हाँ, और क्या करना है, समय इसमें आपका पता है मुश्किल से 15 मिनट लगना है। और अगर और टेस्टी बनानी है, सब्जी को थोड़ा सा गाढ़ा लुक देना है तो उसमें आप बेसन को भूनकर मिला सकते हैं। तो बस एक बार ट्राई करके देखिए। और हाँ, सर्व करने से पहले उसमें हरी धनिया ऊपर से डालना बिल्कुल मत भूलिएगा।

दोस्तों आरा, अब हम आपको बताने वाले हैं चटनी के बारे में। आपको कौन कौन सी चटनी पसंद है? इमली की चटनी पसंद है, पुदीने की चटनी पसंद है, कच्चे आम की चटनी पसंद है, टमाटर की, लहसुन की, पुदीने की।

ये सब अलग अलग फरमाइशें होती हैं ना, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं कुछ थोड़ी सी अलग प्रकार की चटनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कद्दू के बीज की चटनी। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से ले आए, ये भी हमने सोचा। अक्सर हम सभी लोग कद्दू जब काटते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन आपको पता है ये जो बीज होते हैं कद्दू के, ये नींद अच्छी लाने में मदद करते हैं। गर्मी में जब रात में आपको नींद नहीं आती है तो कद्दू की चटनी, बीज की चटनी खानी चाहिए। जी हाँ, ऐसा हमारी दादी और नानी भी कहा करती थी। लेकिन ये बात है, आपको पहले इसका इस्तेमाल करना होगा, देखना होगा खा के, उसके बाद आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ ये तनाव भी कम करती है। अब करना क्या है, जब आप कद्दू की सब्जी बना रहे हो उसके बीजों को निकाल लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और धो कर धूप में 2 घंटे सुखा लीजिए। जब ये बीज सूख जाएं अच्छे से तो आपको क्या करना है, आपको कढ़ाई पे या तवे पे इन्हें भून लेना है बिना तेल डाले। जी हाँ, जब ये कुरकुरे भून जाएंगे उसके बाद आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है। क्या करनी है, वो भी आपको सिलबट्टे पर पीसना है। इसे मिक्सी में पीसी हुई ये काम नहीं आएगी, ये स्वाद नहीं आएगा। तो बस सिलबट्टे पर लहसुन ले लेना है आपको, 4-5 कली ले लीजिए उसकी, हरी मिर्च ले लीजिए, हरा धनिया, नमक, नींबू का रस और जो आपने बीज भून के रखे हैं उन्हें सब को एक साथ पीस लीजिए। और उसके बाद ऊपर से 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल भी मिला लीजिए। और अगर और स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें काला नमक भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। फिर देखिए क्या चटपटी चटनी बनी है, वाह क्या बात है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:55 हो चले हैं दोस्तों। तो आज आपने क्या क्या सीखा? कटहल के बीज की टिक्की जो ताकत के लिए बहुत अच्छी है, दूसरा तरबूज के छिकले की सब्जी जो कि गर्मी से बचाने के लिए बहुत अच्छी है, और फिर कद्दू के बीज की चटनी जो कि अच्छी नींद के लिए बहुत अच्छी है। और इन तीनों को हम सभी अक्सर फेंक दिया करते थे, पर अब कभी नहीं फेंकेंगे क्योंकि इसमें स्वाद भी है और सेहत भी। बस इसी के साथ शालिनी इस प्रोग्राम को करती है यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम हो छुपे तेरी बात में फिर आपके हम साथ रहेंगे, और अभी हम पूरा आपके साथ हैं शाम 4 बजे तक।

नमस्कार, दोपहर के एक बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान से सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और सरकारी सेवाओं में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए अपना समर्पण प्रेरणादायक है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीकी से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हो। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में संचारी बीमारियों पर लगाम कसने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। यह अभियान पूरे जुलाई महीने तक चलाया जाएगा। इसके तहत 11 से 31 जुलाई तक घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए दस्तक अभियान की भी आयोजित होगा। इस अभियान का

मुख्य उद्देश्य डेंगू, मलेरिया और दिमाग के बुखार जैसी बीमारियों को खत्म करना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। पूरे जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए हैं, या पिछले वर्ष जून के मुकाबले 30% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, या पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार जून में हर दिन औसतन 75 करोड़ 70 लाख यूपीआई लेन देन हुए हैं। यूपीआई अब दुनिया के 8 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध है। इनमें से संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बार आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: एक बजकर 4 मिनट और 24 सेकंड का वक्त, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ओठों पे तेरी बात, जी हाँ, आपकी ही बात होगी हमारे ओठों पर। और क्या खास बात आज हम सभी करने वाले हैं पता है, जिसका हम सभी को है बेसब्री से इंतज़ार, तो बस करने वाले हैं आज हम उसी की बात। मानसून का स्वागत आप कैसे करने वाले हैं? जी हाँ, जो आ रहा है, चल चुका है, कहीं कहीं पर पहुंच चुका है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी बता कर गया है कि बस हम आने ही वाले हैं ना। टिप टिप करती बूंदें आई थी, कहीं कहीं पर दिखी थी। तो बताइए भाई, हर एक मौसम का हम स्वागत की तैयारी पहले से करके रखते हैं, चाहे उसकी अच्छाइयाँ हों चाहे उसकी बुराइयाँ हों। तो आप इस मानसून का स्वागत कैसे करने वाले हैं, बस इसे ही आपको बताना है। और कहाँ पर? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल कर देना है फटाफट।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दोस्तों 1:09 हो चले हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती हुकूमत ने मुलाजिम असातिज़ा के लिए अलग से टीचर अहलियत टेस्ट TET कराने का फैसला किया है। UP TET 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में अफसरान को वाज़ह हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कल से 4 जुलाई तक मुनक़िद हो रहे UP TET 2026 इम्तिहान की दयानतदारी और शफाफियत व उम्मीदवारों की सहूलियत को यकीनी बनाने पर खसूसी ज़ोर दिया। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने UP TET 2026 के इम्तिहान में शिरकत कर रहे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में मुलाजिम असातिज़ा को खसूसी छुट्टी देने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में बेहतरीन कारगर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को लैपटॉप और ग्रांट के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रामपुर समेत रियासत के रूहानी विरसे के मकामात को ज़िंदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर इलाके में तरक्की को मजीद मजबूत करेगा।
3: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना, हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है उन सब तक योजना

0: योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
1: रामपुर के बाद वज़ीर आला ने बरेली में तरक्याती काबों और अमन व अमान का जायज़ा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही VBG रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्कगीर निफाज की माकबल शब

0: रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही VBG राम जी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्कगीर नफाज की माकबल शब पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी अहल देही मजदूर एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब माली वसायल दस्तियाब करा दिए गए हैं, अमल दरामद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार है और चल रहे काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि 125 दिन की तनख्वाहदार मुलाजमत की बढ़ाई गई गारंटी देही माश को मजबूत करेगी। ये एक्ट हर एक अहल देही कुनबे के लिए कानूनी तनख्वाहदार रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। मुतअद्दी बीमारियों पर काबू पाने की मुहिम आज रियासत के तमाम अज़ला में शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत तकरीबन एक दर्जन सरकारी महकमे पूरे महीने में मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत और मुनज़्ज़म करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों के शहरियों को राहत फराहम करते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब रियासत भर के तमाम गाँव सेक्रेटरीटों में लेखपाल बाकायदगी से दस्तयाब होंगे। इस कदम का बुनियादी मकसद गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप के अहद को पूरा करते हुए रेवेन्यू सर्विसेज को आसान, तेज़तर और ज़्यादा शफाफ बनाना है। इस हुकूमती फैसले से देही इलाकों के शहरियों को अब गैर ज़रूरी तौर पर छोटी और बड़ी रेवेन्यू खिदमात के लिए तहसील हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आज से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर के नाम से रियासत गिर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में दफ्तर सतह से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल गाड़ियों के लिए मैनेजरों और प्रिंसिपलों को नोटिस या फ़ोन के ज़रिए अलर्ट किया जाएगा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक 100% स्कूली गाड़ियों का फिटनेस कराएँ और दुरुस्त परमिट हासिल करें। मानसून रियासत के तकरीबन तमाम अज़ला में पहुंच चुका है। मानसून की बारिशों के आगाज़ से गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई अज़ला में कल से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 1:20 और 57 सेकंड हो चले हैं। मेल आ चुका है नाजिम उस्मानी जी का है और महमूदाबाद सीतापुर से लिख रहे हैं ये कि हम मानसून का वेलकम मानसूनी बारिश में नहा कर करेंगे। वाह क्या बात है। और किसका सुल्तान रजा जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से इन्होंने किया है मेल हमें रजा जिशान और कई सारे लोगों का नाम इन्होंने लिया है और मानसून की सारी तैयारियां पूरी हैं, पेड़ लगा दिए हैं, ज़मीन में गड्ढे खोद दिए हैं पानी इकट्ठा करने के लिए, अपने घर पर छत पर ऊपर पन्नी भी डाल दी है और छाता मंगा लिया है पापा से और इन्जॉय करेंगे हम पूरा मानसून। और पूरा मानसून क्या वक्त बरेली में भी बारिश हो रही है। अच्छा आपने इस वक्त बरेली में भी बारिश हो रही है लिखना चाहिए था और बहुत अच्छे से आप स्वागत कर रहे हैं मानसून का। और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भी मेल आया है मोहम्मद फरमान का, लेकिन जो आपने मेल किया है वो हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है। और ये अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी का मेल आया, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, लेकिन जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो आपने लिखकर ही नहीं भेजा कि आपने मानसून का स्वागत आप कैसे कर रहे हैं या करने वाले हैं।

अच्छा, ये प्रवीण जी का मेल आ गया है कि प्री मानसून तो आ गया है और बरसात में भीग भी लिए हैं, बस ये मच्छर बहुत आ रहे हैं। चलिए, उनके लिए आपको एहतियात बरतनी है, लोगों और लोगों को भी बताना है कि मच्छर आसपास आपके घर के आसपास ना पनपे, उसके लिए क्या क्या करना है। सतीश अनेजा जी का विमला के साथ चंडीगढ़ सिटी से मेल आ चुका है। इन्होंने लिखा है कि मानसून ने कई राज्यों में दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बौछारें आज चंडीगढ़ को भिगो रही हैं। हम पहली बारिश को घर बने मंदिर में ही मानसून के लिए पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और दुआ करते हैं कि ये बारिशें रहमतों से भरी हों और किसी का कोई नुकसान ना हो। पिछले साल हिमाचल और पंजाब में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था, इस बार ना हो, पर चेहरे पर मानसून आने से मुस्कान हो, मायूसी नहीं। बिल्कुल सही बात है और इसी तरह की दुआ विशेज हमारी भी है आपके साथ। और अब सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक और आप सभी के ईमेल का है हमें इंतजार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

कनिका जी का मेल आया है उत्तराखंड से और ये लिख रही हैं कि मानसून का स्वागत हम गर्मा गर्म चाय पकौड़ों और चारों तरफ छाई हरियाली का आनंद लेकर कर रहते हैं और कीड़े मकोड़ों की थोड़ी परेशानी है और रिमझिम बारिश के बीच दिल बस एक ही बात कहता है, पता है बहुत खास प्यार।

सी लाइनें लिखी हैं कनिका जी ने, और जिसके लिए लिखी हैं शायद उन तक पहुंच जाए, वो भी इस वक्त हमारा रेनबो सुन रहे हो। ये लिखती हैं कि दिल बस एक ही बात कहता है, मौसम की पहली बारिश में आपकी कमी बेहद खलती है, देश की हिफाजत में दूर खड़े पिया, ये दूरी ही हमारे प्यार को और गहरा करती है। देखिए, हमने आपकी बात आपके पिया जी तक पहुंचा दी है। वकील अहमद का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें कहाँ से, ज़िला सीतापुर से मेल किया है, और ये लिखते हैं कि मानसून का स्वागत ये खेत में धान लगाने की तैयारी के साथ करने वाले हैं, बस बारिश का इंतज़ार है। और लिखना था कि खुश हैं तेरे, अच्छा बहुत सारी बातें आप लोग लिख डालते हैं, समझ में नहीं आता है कौन सी बात हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड है। और मेल आ चुका है रामराज राजू भानु जी का है, और इन्होंने हमें रायबरेली से मेल किया हुआ है, और ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ मानसून अभी आया नहीं है, मानसून आता है तो बारिश होती है, और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बादल छाए हैं, मौसम ठंडा है। तो भाई यही तो मानसून है, बस आने वाला है, आप उसका स्वागत कैसे करने वाले, कैसे इंजॉय करेंगे इस मानसून को, यही तो बताना है। और अब सुनिए प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद और भी करते हैं मेल को शामिल।

1:38 और 48 सेकंड का वक्त प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में बात चल रही है आज कि हम सभी मानसून का स्वागत कैसे कर रहे हैं या करने वाले हैं जहां पर अभी नहीं पहुंचा है और सभी बड़ी ही खुशी के साथ मुस्कान के साथ अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। और पता है जब आप कोई बात अपने दिल के लिख कर भेजते हैं ना तो उसे हमें एहसास होता है आपकी खुशी का। श्वेता ने हमें मेल किया है मोहित अर्णव हरिद्वार से और लिख रही हैं कि कुछ इस तरह से कल मानसून ने हमारे यहाँ दस्तक दी है और झमाझम बारिश सुबह तक बारिश होती रही है और हमने मुस्कुराकर हंसकर मानसून का स्वागत किया है और आज सुबह चाय के साथ बना लिए हैं प्याज आलू और हरी मिर्च के गर्मा गर्म पकौड़े और हरी चटनी के साथ खाया है और जोरदार धमाल हुआ है सुबह का। और इस मौसम में घूमना फिरना तो बेहद ही अच्छा लगता है। हम घूम भी रहे हैं, आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और सुहाने मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं और आने वाले रेनी सीजन के सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग हैप्पीनेस और बहुत सारी शुभकामनाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपना खास ख्याल रखें। औरों का भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और जिस तरह से आप बता रही ना मुस्कुराते हुए आपकी जो मुस्कुराहट है ना वो यहाँ पर हमें दिख रही है। और किसका मेल आया है, ये मुनेश राज जी का है, भानपुर हरौरा लखीमपुर खीरी से है और इन्होंने दो लाइनें भी लिखी हैं। घमंड न कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। बहुत अच्छी बात है। और जी हाँ, कोई बात नहीं, आपने आज के मुद्दे पर जो बात कहना चाहते हैं बिल्कुल कहिए, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आज ये कहना चाहते हैं कि बारिश का तो हम सभी लोगों को हर वर्ष इंतज़ार रहता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि बारिश के पानी का संरक्षण या जल निकासी किस ढंग से करें? तो हम यहाँ तक भी बात चाहते थे कि लोग हमें बताएं, कहें, केवल यही नहीं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से स्वागत किया है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस बारिश का जो पानी है उसका संरक्षण और जो पानी भर जाता है आपके यहाँ उसकी निकासी का क्या तरीका अपनाने वाले हैं, ये बात मुनेश राज जी ने हमें तक पहुंचा दी है। और इन्होंने लिखा है कि अगर हम जल को संरक्षित नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, तो कल को बादल भी नहीं बरसेंगे। इसीलिए हम सभी को जागरूक होना है, बारिश का पानी अपने रहन सहन के आसपास इकट्ठा ना होने दें, इसे खेतों या तालाबों की तरफ मोड़ दें। इसके दो फायदे हैं, मच्छर और बीमारियां नहीं पनपेंगी और फसल और तालाबों के जीव जंतुओं को भी फायदा मिलेगा। और ये बारिश का स्वागत दिल से करने रहे हैं और हमारे किसान भाई की नज़रें आसमान की ओर ही लगाए बैठे हैं, कब झमाझम बरसे और खेतों की प्यास बुझे। बहुत अच्छी बातें आपने हम तक लेकर पहुंचाई हैं। और किसका मेल है, ये रामेश्वर कठेरिया जी का मेल है, उमा कांति और कमलेश के साथ में इन्होंने हमें मेल किया है और ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई ये कानपुर देहात से, इसका मतलब वहाँ तक भी मानसून पहुँच गया है। एम एन नवाब, अगर आप हमें सुन रही हैं तो हमारी बात आपको समझ में आ

गई होगी और आप भी अपनी बात हम तक लिखकर भेज दें। और कोई बात नहीं श्वेता, आपने मेल बहुत अच्छा लिखा था। गुलफ्सा सिद्दीकी का भी मेल संटीला से आ गया है और ये कह रही है, रही बात मानसून के स्वागत की, तो अपने घर में छत पर सफाई की है, हर चीज़ साफ़ किया है ताकि पानी ना भरे और फिर खूब नहाना बारिश के पानी में। बहुत अच्छी बात है, छत की सफाई बहुत ज़रूरी है तो जिससे आपको कई सारी चीज़ें पता चलती है। एक तो कहीं से पानी नीचे बह तो नहीं रहा है, जो छत से पानी की निकासी की जगह है वो ऐसा तो नहीं, क्लोज तो नहीं है, और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें छत पर तो नहीं पड़ी हैं जिसमें पानी भरा रहे और कल को उसमें मच्छर पनपें। तो बहुत सारी बातें हैं और मुद्दा लेना यही तो होता है कि कौन सा टॉपिक हम चूज़ कर रहे हैं और जिससे आपकी बातें हमें पता चलती हैं और आपकी ही बातों से लोगों को भी बहुत कुछ पता चलता है। दोस्तों 1:43 और 33 सेकंड हो चले, आप सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: करियर पर है ध्यान,
2: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
1: पॉजिटिव है फैशन,
2: क्रिएटिव है पैशन,
1: टेक्नोलॉजी में रुचि,
2: बने पर्सनालिटी ऊंची,
1: फॉलो करें ट्रेंड्स,
2: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
1: ओनली ऑन यूथ वेव,
2: यूथ की बात यूथ के साथ,
1: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
2: धड़कन लखनऊ की।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

7:53 हो चले हैं, लेकिन घबराइए नहीं, जिनके मेल अब तक पहुंचे नहीं है जरूर पहुंचेंगे। एमएन नवाब का भी मेल संडीला से आ चुका है, इन्होंने कल मानसून का स्वागत कर लिया है, छत की सफाई की है और साथ ही साथ बारिश में नहाया भी है। अच्छा, दादू जी की भी बात नहीं मानी गई है, चलिए कोई नहीं, बारिश है तो स्वागत तो बनता ही है। तालिब अंसारी का भी मेल आ चुका है बाराबंकी से, इन्होंने लिखा है कि हम सोच रहे थे कि सब तरफ बारिश होने लगी और हमारी तरफ नहीं हुई, लेकिन अभी मतलब जब इन्होंने मेल किया है हमें भी 5 मिनट पहले अंधेरा हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई है और ये बारिश का स्वागत की तैयारियां इन्होंने पहले से कर ली थी, छत की साफ सफाई कर ली थी और सबसे खास बात ये कि जल की निकासी कहां पर कैसे की जाए ये इन्होंने सोच लिया था और काम करके रखा था। नीरज नहीं, अच्छा ये पिंकी रिंकी का भी जगदीशपुर शिवगढ़ से मेल आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि हम लोग एकदम चकाचक हैं। अच्छा, क्या बात है, शब्द कहाँ से आते हैं, और हमारे गांव में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है। अच्छा, कैसे स्वागत कर रही हैं इन्होंने ये बात नहीं बताई है। ये मेल आ चुका है उर्फी खान का बुलंदशहर से, हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से बारिश हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे तो बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता है फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है, ये तो खास बात है ही है इसकी। और जगदीश जी का जस्ट अभी मेल आया है हमारे पास, और ये कहाँ से, हिंगड़ी से ये हमें मेल कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की बात की जा रही है वो कोई भी चीज़ इन्होंने लिखी नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ सारे मेल पहुँचा दिए गए आप सब तक, और अब बारी इस प्यारे से ट्रैक की, नेक्स्ट प्रोग्राम हॉट मेल, जिसमें आपकी ही पसंद के गाने आप तक पहुँचाती है शालिनी। और भाई एक बार मेल करिएगा और बढ़िया बढ़िया से गाने पसंद करिएगा जो कि एकदम मानसून से रिलेटेड हों।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश वन विभाग आज से वन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। यह महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विभाग की तरफ से आम बहार आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पौधरोपण के महत्व, पर्यावरण संरक्षण, जल वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त परिवेश व जन जागरूकता पर भी विशेष जोर रहेगा। मुख्य वन संरक्षक प्रचार प्रसार अदिति शर्मा ने बताया कि 1 से 7 जुलाई तक पौधरोपण संबंधित जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फलदार वृक्षों की देसी प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। जनपद उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में आज तड़के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 17 लोग घायल हो गए। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बताया कि आज सुबह 4:30 पर आसपास एक बस फरीदाबाद से बिहार जा रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देवखरी गांव के पास बस के ड्राइवर को झपकी आ गई। उसी के चलते बस डिवाइडर तोड़कर दूसरी साइड में चली गई और एक कार से टकरा गई। कार में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्षों से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की थी, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया। पिछले 1 दशक में इस योजना ने जल संचयन और जल का कुशल उपयोग के अंतर्गत खेतों में जल के कुशल वितरण से सिंचाई को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश ने भुवनेश्वर में हाल में ही संपन्न हुई 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की टीम ने ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। राज्य के शानदार प्रदर्शन की बदौलत चैंपियनशिप में भाग लेने वाले उत्तर प्रदेश के 22 एथलीटों में से 12 का चयन अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए किया गया है। आकाशवाणी से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य में एथलेटिक्स के लिए

दोस्तों 2:37 का वक्त बिना किसी की देरी के हम शुरू करते हैं प्रोग्राम हॉटमेल और सतीश अनेजा जी के ईमेल को करते हैं शामिल, जिन्होंने विमला के साथ चंडीगढ़ से मेल किया है, प्यारे से ट्रैक की फरमाइश की है। और विजय मोहबिया जी का भी मेल कविता के साथ रामगंज खंडवा से आ गया है और बढ़िया से प्यारे से गाने की आपने भी फरमाइश की है। वारिस अली खान जी का भी मेल ऐशबाग से लखनऊ से आ गया है और इन्होंने भी बहुत अच्छे गाने की फरमाइश की है। अच्छा ये बताइए, इतने सारे ईमेल्स आते हैं, गाने किसके किसके प्ले किए जाएं? और एक आज ज़रूर वादा करिए आप सभी लोग कि कोई आज नाराज़ नहीं होगा कि गाना मेरा प्ले नहीं हुआ, क्योंकि आज जितने भी गाने प्ले होने वाले हैं आप ही के पसंद के और सभी आप उसको पसंद करेंगे। और मज़हर अली अंसारी का मऊ से भी मेल आ गया है राजिया के साथ में, और गाजीपुर से भी आजाद अली अनवर ने इनके साथ मेल किया है। और बिट्टू गगनेजा जी का भी मेल सुरेश पूनम के साथ में जलालाबाद से आ गया है, किसी भी गीत में इनका नाम शामिल किया जाए। और जगदीश जी आपका मेल आया है लेकिन आपने क्या लिखा है ये नहीं दिख रहा है, आपने 18 जून का ही मेल फॉरवर्ड किया है या आप उसी में सब कुछ लिख देते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता है, ज़रा एक बार देख लीजिए, अच्छे से मेल किया करिए। और जय किसका मेल आया है, हाँ ये जयराम खोरवाल का होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से सचिन अमन दीपांशु के साथ में मेल आ चुका है और बढ़िया से गाने की फरमाइश इन्होंने भी की है। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, और ये जो प्यारा सा ट्रैक आप तक हम पहुंचा रहे हैं कई लोगों की है पसंद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा।
2: जानो फिर मानो।
3: Tune to 100.7 FM Rainbow, Dharkan, Lucknow.

2:14 का वक्त, तुलसी मस्कीन जी का मेल आ चुका है गोवर्धन विहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना आशीष के साथ में, और गाने की फरमाइश की है इन्होंने, और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल का कमला और भानु के साथ में मेल किया है इन्होंने, गाने की फरमाइश भी इन्होंने की है, और ये मेल आ चुका है किसका है, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ अर्चना का मेल आया हुआ है, और बहुत ही अच्छे गाने की इन्होंने भी फरमाइश की है भाई। और दिनेश वर्मा जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने छत्तीसगढ़ से करुणा के साथ में मेल किया है, और जिस फिल्म के बात आप कर रहे हो उसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, और नजीम उस्मानी जी का भी मेल आ चुका है, और सीतापुर से इन्होंने मेल हमें किया है। भागवत वर्मा का मेल है शांति लीलावती के साथ दंतरेंगी से, इन्होंने किसी भी गीत में इनका मेल शामिल कर लिया जाए ऐसा इन्होंने कहा है, और ये किसका मेल है, और बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय संजय के साथ में मेल कर रहे हैं, और गाने की फरमाइश आई है भाई ये बिल्कुल, और ये उर्फी खान बुलंदशहर से मेल आया हुआ है, और बिल्कुल कोशिश तो रहती है कि सबके ही गीत प्ले किए जाएं, लेकिन आप ही बताइए मेल इतने होते हैं और गीत बहुत कम। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल कर लीजिए, जैसे कि ये रामेश्वर कठेरिया जी उमा कांति कमलेश के साथ कानपुर देहात से मेल कर रहे हैं। दिदर्शन कौर जी का भी मेल आ चुका है, और ये कविता के साथ मेरठ कैंट से मेल कर रहे हैं, और इतनी सारी फिल्मों के नाम इन्होंने लिख के दे, और कहना है कि किसी उसमें से किसी एक फिल्म का गाना प्ले कर दे। और ये उमरी सीतापुर से मेल आया हुआ है, और नागेश कुमार ने मेल किया है। सरफुद्दीन अंसारी का भी फातिमा के साथ मेल आया हुआ है, ढेर सारे नाम हैं इन्होंने लिखकर भेजे हैं, किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लिया जाए। और रामराज जी का भी मेल रायबरेली पहाड़ीपुर से आ चुका है, शंकर और रामचरण बहुत सारे लोगों के नाम आपने लिखे हैं, और जिस फिल्म की बात की है आपने, कोशिश है कि आपका गाना आप तक पहुँचे, लेकिन फिलहाल अभी सुनिए प्यारा सा ट्रैक।

बहुत ही प्यारे से ट्रैक पसंद किए गए हैं और कमलेश मुकुल सचिन का मेल आ चुका है न्यू दिल्ली से और इन्होंने भी बढ़िया से गाने की फरमाइश की है। सुनील पाठक जी का कमला दीविका के साथ में मेल आया हुआ है और इन्होंने भी अच्छे से गाने की फरमाइश की है। अच्छा, कोई अगर नोट कर रहा हो तो ये देखता जाए कि कितने सारे लोगों के मेल अब तक आ चुके हैं और महेंद्र प्रसाद मोदी जी का भी मेल आया है और इन्होंने हमें कहाँ से मेल किया है। अच्छा, खाली इन्होंने किसी ग्रुप का नाम बताया है और इनका एड्रेस नहीं लिखा है, गाने की फरमाइश की है। और ये कमलकांत गुप्ता दीपा के साथ में मेल कर रहे हैं पिपिरिया से इन्होंने। भाई, हमने आपको याद कर लिया है। समझी लवा पारा से मुकेश श्रद्धा का भी मेल आया है और सभी के मेल शामिल किए जाते हैं, बस ये बात है कि स्टेप अलग अलग हो जाते हैं कि किसका कौन सा शामिल किया गया। शंभू दयाल जी का भी मेल आ चुका है बिमला योगेश के साथ में और आपका भी मेल शामिल कर लिया गया है और गाने की फरमाइश आपने नहीं की है, किसी भी गाने में आपका मेल शामिल कर लिया जाए। और डीके जी यानी कि कमलेश मुकुल सचिन जी, आपका मेल शामिल कर लिया गया है, बार बार मेल ना करें। नरेश मल्होत्रा नीटू पानीपत से लक्ष्य लाजो कोयल के साथ में इन्होंने मेल किया है और बढ़िया से गाने की फरमाइश की है और आप सुनिए प्यारा सा ट्रैक।

2:30 बाबू अंसारी का मेल देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से आ चुका है और कुलदीप फैज अंसारी महेंद्र दीपेन इनका सबका नाम इन्होंने लिखा है और कुलदीप कुमार जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने ऊंचा हार से हमें मेल किया है। अफसार जी का भी मेल आ गया है और खरेला सीतापुर से इन्होंने लिखा है और अभी हमें ये मुंबई से सुन रहे हैं और ये सिलाई का काम करते हैं। थैंक यू हमारा साथ देने के लिए, आप वहाँ से भी हमारे साथ हैं। संदीप पक्कर जी का भी मेल आ चुका है और किसके साथ में है ये, मन्नत और भरत साथ में है, जालंधर से इन्होंने हमें मेल किया है। शाहरुनूर अंसारी फरियाद के साथ में ज़िला बरेली मचकली से हमें मेल कर रहे हैं और ये मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन्निशा सविस्ता के साथ में इन्होंने मेल किया है और अब्दुल गफ्फार जी का भी मेल अब्दुल हक टावर के साथ में खंडवा से आया है। बोधराज कुरवाल जी का मेल कमला रानी और गीतिका के साथ आया है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज जी आपका मेल शामिल किया जा चुका है और हमें लगता है आपने अपनी पसंद का गाना भी सुन लिया लेकिन उसके बाद भी आपने कई सारे ईमेल हमें कर डाले हैं। ये जोन ड्रिक्रोस्टो रोजी पर विलेस का भी मेल जनकपुरी सहारनपुर से आया है। रामेश्वर कचहरिया उमा कांति कमलेश के साथ में मुंगिसापुर कानपुर देहात से हमें मेल कर रहे हैं। जावेद अख्तर जी का भी मेल कहाँ से आया है, हमेशा की तरह मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं। शमशुल कमर राही और बेगम रुखसार भी हैं, किसी भी गीत में इनका मेल शामिल कर लिया जाए। कितनी प्यारी सी रिक्वेस्ट, ये वाली जब रिक्वेस्ट होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तलहा जहानाज और फरह जहानाज का मेल आ चुका है और इन्होंने हमें महसूस सीतामढ़ी बिहार से मेल किया है। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साविर राही के साथ में आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें मेल कर रहे हैं और हरजिंदर चिंदा जसवीर जस्सी के ने हमें नथाना पंजाब से मेल किया है। संजय डिंगिया और नमन अपार के साथ में बागपत उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं। मोहम्मद आजान का भी मेल आ चुका है, मोहम्मद नौशाद है साथ में और ये कहाँ से आपने हमें मेल किया है, ऐसा कुछ आपने नहीं लिखा है, गाने की फरमाइश ज़रूर की है। और सुरेश नारंग जी

2:38 राजेश कुमार जी का मेल आ गया है। कैसे हैं हम? एकदम बढ़िया हैं। और राजेश, सपना मान्या के साथ में अम्बेडकर नगर ताल कटोरा नियर बालाजी मंदिर लखनऊ से ही मेल कर रहे हैं। और अच्छा, बढ़िया है। और गाने की फरमाइश की है आपने, कोशिश है राजेश जी अब आपका गाना हम सुना पाए। सरावत से शेख मूसा मोहसिन का भी मेल आ चुका है। खैरियत है सब आपकी भी, आप भी खैरियत से होंगे। मोहम्मद आमिर का मेल शमीम और माहेनूर अंसारी के साथ में करेली बरेली से मेल आया है। किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल करें। नबी हसन अब्बासी, शहनाज और नावेद हसन दरवाजा ईठा से मेल किया है। और ढेर सारे मेल नाम इन्होंने लिखे। ओम बगारिया जी का भी मेल आ चुका है। आप लाइव सुन रहे हैं, बिल्कुल आपकी हाजिरी लगा दी है। मेल जैसे जैसे आते रहते हैं वैसे हम शामिल करते रहते हैं। एम के राज का भी मेल भानपुर हरौरा लखीमपुर से आ चुका है। दीपेश वर्मा ने भी ज्योति शिवांश के साथ छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है। स्वर्ण सिंह दलजीत और राजदीप ने ठाकुरवाला से हमें मेल किया है। हीरामणि वर्मा, आपने भी मेल किया, उसके लिए धन्यवाद। पारस मणि पुष्पेंद्र के साथ भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हमें मेल कर रहे हैं। और ये तेज बहादुर यादव ममता और अपने बच्चों के साथ मेल कर रहे हैं, गुरुग्राम हरियाणा से मेल कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इंतज़ार करना अच्छा रहता है। और किसका मेल है? राधे कुमार विद्यार्थी जी ने भी हमें गोकुल चौक गंगजला सरहसा बिहार से मेल सविता और संजय के साथ में किया है। सुनील पाठक जी, आपने भी हमें मेल किया है। और इनके मल्होत्रा परिवार पूरा साथ में है। और मैं शालिनी हूँ, आपने किसी और का नाम लिखा है। और किसका मेल आ गया है पढ़ लेते हैं भाई। एक तो आप ही लोगों में से इतने सारे जब मेल कर दिए जाते हैं ना, तो किसने कौन सा मेल किया है वो खोज पाना बड़ा मुश्किल होता है। सुनील सूर्या ने सर मेल कर दिया है। और टीजी मल्होत्रा जी का भी मोहली चंडीगढ़ से मेल आ गया है। दारा सिंह का भी मेल हरियाणा से हमें मेल किया है इन्होंने। और शंकरलाल जायसवाल जी ने नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से मेल कर दिया है। मनोज बंसल जी का भी हांसी हरियाणा से मेल आया हुआ है। अरविंद कुमार दुबे ने भी मेल हमें कहाँ से किया है, मिर्ज़ापुर से हमें मेल कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

10 सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, और ढेर सारे ईमेल्स बराबर आते जा रहे हैं, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आर्यन वर्मा का अशोक वर्मा अर्चना अनुज के साथ में सनावद मध्य प्रदेश से मेल आ चुका है, और ये नूर आयशा अहमद बागवान इकबाल छोटी बलिया से मेल कर रहे हैं। रियाज फैजान का भी मेल आ चुका है, और ये इनके अपने दोस्त टिक्का के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं। सुधाकर जाधव जी का प्रशांत संचित के साथ में जाफराबाद से मेल आ चुका है। विनीत कुमार जी का भी मेल रामगढ़ चीनी मेल सीतापुर से आ गया है, और किसका मेल है, राजकुमार जूझी प्रमोद पुष्पेंद्र का हिसार से मेल आया है। जितेंद्र नामदेव का मेल भी आ चुका है, शहडोल मध्य प्रदेश से हमें आरोही के साथ में मेल कर रहे हैं। और इरफान गौरी जी का भी मेल आया है, और लहरपुर सीतापुर उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं। विजय महोबिया जी ने भी मेल कर दिया है। संतोष जी का भी मेल आया है, और इन्होंने विनोद खड़से के साथ महाराष्ट्र से हमें मेल किया है। और किसका मेल रह गया भाई, रहना किसी का मेल नहीं चाहिए बस। तो चलिए तब तक खोजते हैं कौन सा मेल रह गया, ये गाना आप सबके लिए।

और अब ये गाना सुनने के बाद जहाँ जहाँ मेघा नहीं बरसे हैं वो ज़रूर बरस जाएंगे। और मेल आ चुका है अहमद भाई फूल वाले का मुंबई से इमरान और जूही इकबाल के साथ में, और ये बिट्टू भाटिया रीता रजत के साथ में हरियाणा से हमें मेल कर रहे हैं, और बाकी वही मेल ढेर सारे दोबारा दोबारा आते जा रहे हैं दोस्तों। और 2:55 और 20 सेकंड हो चल रहे हैं, और अब बारी है उस प्यारे से ट्रैक की जो आपकी पसंद है, इस गाने इस प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा, सतरंगी दुनिया में रहेगी शालिनी आपके साथ। लेकिन हाँ, 3:30 पर जो सोमवार से शुक्रवार के तक जाता है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, वो सुनना बिल्कुल नहीं भूलना है। 3:30 से 4 बजे तक होगा प्रसारित आज भी।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों को सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जनोन्मुखी हुई है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी शिक्षा हमें एक सुसभ्य नागरिक बनाती है, हम सबको सही मार्ग दिखाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया। स्कूल चलो अभियान से परिणाम बेहतर हुए हैं, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार ने आज से लागू हुए विकसित भारत ग्रामीण विकास अधिनियम 2025 विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत बढ़ी हुई श्रम दरें अधिसूचित की हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम दर में वृद्धि की गई है। पहली बार प्रतिदिन 300 रुपये की अंतरिम आधार मजदूरी दर लागू की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी श्रम दर 300 रुपये से कम नहीं होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह केवल एक अधिनियम नहीं बल्कि स्वाभिमान और आजीविका का नया अध्याय है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जून 1987 में वायुसेना के लड़ाकू शाखा में शामिल हुए थे। उन्हें 4,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

0: कहिए ना।
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूँ गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

दोस्तों 3:11 और 18 सेकंड हो चले हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया, जिसमें शालिनी है आपके साथ लेकर प्यारे प्यारे से गीत।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: लेकिन दिल तो हमसे ही लगा रहता था। किचन में खाना बना रहे हो या ऑफिस जाने की तैयारी हो, बस में सफर हो या ट्रेन, हर गाड़ी में मेरा ही साथ रहता था। वो चुप चुप के ऑफिस और कॉलेज में हमसे बातें किया करते थे। शाम को घर वापसी में भी मेरा साथ कहाँ छोड़ते थे। जब रातों में नींद नहीं आती थी तो मुझे साथ लेकर सो जाते थे। जिंदगी के हर मोड़ पर हम साथ रहते थे। कैसे प्यार की बातें और अपने जज्बात एक दूसरे से कहते थे। वो दिन और आज का दिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि समय के रफ्तार के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और सुनते रहिए हर रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक FM रेनबो।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
2: धड़कन लखनऊ की।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: सपने बड़े हैं,
2: स्टाइल अलग है,
1: तो ये शो है आपके लिए।
2: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
1: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
2: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
3: कभी हमसे ही तुम्हारी सुबह होती थी, कभी चाय की चुस्की के साथ, तो कभी घर की बालकनी में। अजी अखबार तो हाथों में यूं ही लिए रहते थे।

दोस्तों 3:25 और 42 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब प्रोग्राम सतरंगी दुनिया को यहीं पर करना होगा वाइंड अप, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम 3:30 पर हमारा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी शुरू होगा। तो सुनना बिल्कुल नहीं भूलना है, बने रहना है हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, और होगी आपसे मुलाकात किसी और दिन।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है। तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन

0: सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी।
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी।
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज

0: ने रेडियो शो में बुलाया है, तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: आह, क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: जी मैम।
4: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है।

0: यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान, दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल

और इसीलिए मैं कहता हूं कि बारिश और यादें दोनों एक जैसी हैं। रुकना चाहो तो रुकते नहीं, बस ये तो बहती रहती है। जमशेद हूं आपके साथ टॉप 10 में 100.7 FM रेनबो पर, जहां पर आज बारिश के यानी खूबसूरत मौसम के खूबसूरत से गीत हैं आपके लिए।

बारिश में यूं हाथ थाम कर चलना, ये सपना हर बार सच नहीं होता, पर जब होता है तो जिंदगी मुकम्मल सी लगती है। ऐसा ही होता है। जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर, प्रोग्राम

और बस यही बातें जो होती हैं जिंदगी में कहीं ना कहीं खूबसूरत से रंग बिखेर जाते हैं। बूंदें तो बहुत गिरती हैं आसमान से, पर तुम्हारी याद की बूंद दिल में सबसे गहरी जाती है। यादें जो कभी नहीं मिटती, यादें जो दिल को खुशगवार कर जाते हैं।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की.
4: मौसम कोई भी हो, हर मौसम में कोई ना कोई खासियत जरूर सिमटी होती है. बस उसकी ज़रूरत होती है पहचानने की. जैसे गर्मी का मौसम लगता तो गई, लगता है मैं भाई बहुत गर्मी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वो गर्मी का मौसम भी कहीं ना कहीं कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है. उसी तरह से बारिश का मौसम, उसी तरह से ठंड का मौसम, तो कोई भी मौसम हो वो अपने साथ कई खासियतों को समेटे होता है. तो हर मौसम का मजा लीजिए. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. 5:55 हो चुके हैं, साथ में कुछ सेकंड भी है शामिल. प्रोग्राम टॉप 10 से लूंगा इजाजत इस वादे के साथ कि होती है मुलाकात प्रोग्राम शाम-ए-अवध में. तो आपसे यही कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ, यानी 100.7 FM रेनबो के साथ. और चलते चलते ये गीत खास आपके लिए.

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ की विकास को और गति देगा। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार 13 विभागों के समन्वय से व्यापक स्तर पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाती है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में 1 जुलाई 2026 से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी योजना को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस योजना के तहत अब प्रदेश के पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। साथ ही नई व्यवस्था के तहत अब राज्य में मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। इससे राज्य के लाखों ग्रामीण मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 327.40 रुपये प्रतिदिन हो गई है। प्रदेश सरकार ने बढ़ी हुई मजदूरी देने के लिए सारे प्रबंध पहले से ही कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।
5: पुरानी जींस और गिटार।
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल।
6: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो, 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
8: धड़कन लखनऊ की।
9: और हमेशा की तरह एक बात कि जब भी किसी से कोई वादा करो तो उस वादे को पूरा जरूर करो। यकीन जानिए जब वादे टूटते हैं ना तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछे जिससे वादा किया गया हो। कुछ देर पहले मैंने वादा किया था, होती है मुलाकात कुछ देर के बाद। और उस वादे को पूरा करते हुए एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ प्रोग्राम शाम आवाज में। और यकीन जानिए ये जो मौसम की लुका छिपी है, आपाधापी है, सुबह अचानक मौसम खुशगवार हुआ, फिर धूप निकली, फिर खुशगवार हुआ, और उसके बाद फिर फाइनली टिप टिप टिप टिप जो बारिश की बूंदें हैं वो लगातार चल रही हैं। और इन मौसम की जो बूंदें हैं, इन इस मौसम की जो आपाधापी है, इनमें आपने पूरे दिन को बड़ी ही खूबसूरती के साथ गुजारा होगा। और उम्मीद यही कि आने वाला वक्त भी बखूबी खुशियों के साथ गुजारेंगे। तो चलिए कुछ बातें आज के दिन से जुड़ी हुई, क्या हुआ है खास, कौन से दिन रहे हैं आज खास, क्या क्या खासियतों को समेटे हुए, और साथ साथ क्या होने वाला है, क्या है गोल्ड का प्राइस, क्या कह रहा है सेंसेक्स, इन सारी बातों के साथ करते हैं शुरुआत प्रोग्राम शामे अवध की इस खूबसूरत सी गीत के साथ।

पुराना आज का दिन भी कई खासियतें समेटे हुए है। आज है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। वो चिकित्सक यानी हम इस धरती पर कहें तो धरती पर मानवों का भगवान अगर किसी को कहा गया है वो चिकित्सकों को कहा गया है। कई जगहों पर उनकी ज़रूरत पड़ती है और ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, अलग अलग डेट्स पर मनाया जाता है। और भारत में चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ख़ास बात ये कि इस ख़ास दिन विधान चंद राय जो थे एक प्रमुख चिकित्सक भी थे और साथ साथ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और आज़ादी के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की चिकित्सा सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया था और इसी के लिए उनकी याद में उनकी स्मृति में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है आज के दिन यानी 1 जुलाई को। तो चलिए एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS लगे रहो मुन्ना भाई, इस तरह की फिल्म आई थी याद है आपको। एक अलग सा किरदार था, अलग सा ट्रीटमेंट था मुन्ना भाई का उस फिल्म में और उस फिल्म से गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश ये रहा आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
0: 6:19 साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम शाम अवध में। आज मैं यानी जमशेद हूँ आपके साथ, और एक और खासियतों से भरा हुआ डे आज मनाया जाता है, वो है वन महोत्सव। और भारत में हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में, पहले हफ्ते में आयोजित किया जाने वाला महोत्सव है। और ये महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जाता है। सन 1960 के दशक में ये पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन बना था। यानी वनों को विनाश से बचाने और वृक्षारोपण योजना को वन महोत्सव का नाम देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे प्रोत्साहित किया जाए। और भाई कहा जाता है कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाया जाए। जब बारिश का मौसम आता है, भाई छोटा सा एक पौधा

दीजिए बस, और उसके बाद देखिए बारिश कैसे उस पौधे को तेजी से बढ़ाती है, तेजी से बड़ा करती है, और धीरे धीरे कुछ दिनों में एक पेड़ और आने वाले दिनों में एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, है ना। तो बस कोशिश यही रहनी चाहिए, अगर हम पर्यावरण में थोड़ा सा भी अपना योगदान देंगे तो ये जो गर्मी आप झेल रहे हैं ना लगातार, इससे थोड़ी सी तो निजात पाई जा सकती है। खासकर अगर ऑक्सीजन के लेवल की बात करें तो ऑक्सीजन का लेवल लगातार बढ़ेगा अगर ढेर सारे पेड़ हैं हमारे साथ। तो एक छोटी सी कोशिश कीजिए और कोशिश के साथ साथ गीत जरूर सुनते रहिए। ये गीत आपके लिए है।

मैंने कहा ना कि आज का दिन अपने अंदर कई तरह की खासियत समेटे हुए है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम लूंगा आज के दिन। 1 जुलाई साल 1938 को इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई। भारत के बेहतरीन बांसुरी वादक और कला के क्षेत्र

0: क्षेत्र में साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। एक जोड़ी बनी थी, याद है ना, शिवहरी। भारतीय बांसुरी वादन कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने। और मैं शिवहरी की जोड़ी की बात कर रहा था, तो जो शिवहरी की जोड़ी है उसमें है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ढेर सारी फिल्में थीं, चांदनी की बात करें या डर की बात करें, लम्हे की बात करें, सिलसिला, फासली, विजय, ये ढेर सारी फिल्में हैं। और यही कारण था कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण और साथ साथ संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे जी। और जोड़ी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, दूसरे पंडित शिवशंकर शर्मा, और उन्हीं के संगीत से रचा हुआ ये गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।
1: मैं तेरे सामने तुझको देखूं कि प्यार करूं,

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.

और चलिए बात कर लेते हैं सोने और चांदी के रेट क्या हैं आज के। पहले चांदी की बात करें कि पहले सोना कितना सोना है। चलिए सोने की बात कर लेते हैं, तो आज 24 कैरेट की अगर हम बात करेंगे तो 1,40,930 रुपए प्रति 10 ग्राम, ये 24 कैरेट का है। और वहीं हम अगर 22 कैरेट की बात कर रहे हैं तो 1,29,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और वहीं अगर हम चांदी की बात करने की कोशिश करेंगे तो चांदी 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम। अब अगर आपके पास कैपेसिटी है चांदी को खरीदना चाहते हैं तो चांदी ले लो भैया, और सोना लेना चाहते हैं तो सोना ले लो भैया। अब ये डिमांड जरूर पूछ लेना घर में कि क्या चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में चाहिए चांदी तो आप सोना ले जाएं, और सोना चाहिए तो आप चांदी ले जाएं, तो बड़ी दिक्कत होती है, खासकर खाने पीने में, है ना।

अजीब बात यह है, मैंने अपने छोटे भाई को कभी देखा ही नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, शांत, सुशील, शरीफ, डिसिप्लिन। पर मेरा दिल कहता है मैं उसे देखते ही पहचान लूं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण।

चले जैसे हवाएं सनन सनन, वैसे ही कुछ रफ्तार होती है सेंसेक्स की, यानी कभी अप कभी डाउन। और अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो बीएससी का सूचकांक जो है वो 76,922.64 अंक, यानी 443.97 अंकों की ऊंचाई के साथ ये आगे बढ़ा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 24,005.85 यानी 140.10 अंक की ऊंचाई इसने प्राप्त की है। तो ये तो बीएससी और निफ्टी की रही बात, लेकिन हम भी जो रफ्तार है, हवाओं की रफ्तार है, जो बारिश की अगर हौले हौले रहेगी तो ठीक है, लेकिन अगर तेज होती है तो फिर दिक्कतें होती हैं, है ना।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: छह बजकर 55 मिनट साथ में है कुछ सेकंड्स, मैं हूं जमशेद आपके साथ इन प्रोग्राम शाम अवध। और चलते चलते ट्रैफिक की मैं बात करूं, बड़ी कोशिश की मैंने कि ट्रैफिक का हाल आप तक पहुंचाऊं, लेकिन कई बार संपर्क किया, संपर्क हो नहीं पाया, दिक्कतें रही होंगी कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, ट्रैफिक का हाल जो है इस वक्त का तो आप समझ सकते हैं, जब ऑफिस छूटते हैं लोगों को घर जाने की जल्दी होती है, तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम होते हैं। अगर हम बात कर लें ये आपका अपना विधानसभा वाला चौराहा जो है, उसके बाद आगे हजरतगंज चौराहा जो है, फिर आगे

कि आप डालीगंज पुल के पास आ जाइए, आने की जाने की जल्दी, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, और ये आने जाने की जो जल्दी होती है वो जाम का कारण बनती है। तो कोशिश करें कि जो आपकी लेन है अपनी लेन में ही चलें, जिगजैग करके गाड़ी ना चलाएं, जल्दबाजी किस काम के हिसाब, अभी यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो आगे कोई और सामने आ जाएगा, फिर आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी। और ब्रेक मारने से दो तरह के नुकसान होते हैं, ब्रेक को तो दिक्कत होती है लेकिन हाँ जो फ्यूल कंजप्शन है आपका उस पर भी फर्क पड़ता है। तो कोशिश करिए आराम से गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए, और अगर हम बाइक पर हैं, आप जा रहे हैं आसपास, तो हम बाइक पर हेलमेट लगाना ना भूलें। तो ये सारी कोशिशों से हम ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बना सकते हैं। इस बात के साथ मैं लूंगा इजाजत, प्रोग्राम शाम अवध से टॉप 10 न्यूज, और उसके बाद फिर होती है मेरी मुलाकात हेलो एफएम में, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम।

नमस्कार, सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज जिन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। केंद्र सरकार ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले

एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर करबाई खंड के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस परियोजना की अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले में विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी जवाबदेह हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल चलो अभियान से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी योजना को आज से आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस नई योजना के तहत अब प्रदेश के पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में आज से वन महोत्सव की शुरुआत की गई। वन विभाग की ओर से आयोजित वन महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विभाग की तरफ से आम बाहर आपके द्वार का आयोजन किया जाएगा। जनपद उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में बस और कार की टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 17 लोग घायल हो गए। इसी के साथ टॉप 10 समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला समाचार बुलेटिन शाम 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।
6: कोई नो

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।

0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगह,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सात बजकर छह मिनट साथ में कुछ सेकंड्स में हूं जमशेद आपके साथ, अपने पसंदीदा प्रोग्राम जो आपका अपना है जी हेलो एफएम, उसको लेकर एक बार फिर मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ। नंबर आपको याद होंगे 2238845 और 2238852, ये हमारे फोन नंबर, यानी 2238845 2238852, और साथ में होगा लखनऊ का कोड यानी 0522। तो बस जल्दी से हमें मिलाइए कॉल और जुड़िए हमारे साथ, और जब तक आप कॉल मिलाते हैं तब तक ये ट्रैक आप तक पहुंचाने की कोशिश

0: बस मेरा भी एक सपना है कि आपकी ढेर सारी कॉल्स आए, मैं उन पर आपसे प्रतिक्रियाएं लूं किस बारे में आप करते हैं बात. फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ कोई है. हेलो.
1: हेलो.
0: हाँ जी, नाम बताएं अपना.
1: सर, नागेश्वर ग्राम उमरी पोस्ट उमरी से बोल रहा हूँ, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट.
0: अच्छा, नाम एक बार और बता दीजिए.
1: सर, नागेश्वर मेरा नाम है.
0: नागेश जी, कैसे हैं आप?
1: सर ठीक है.
0: तो आपका क्या सपना है? कोई सपना आपने देखा अभी तक कि उस सपने को देखूंगा और सपने को पूरा करूंगा? और जो सपना देखा क्या पूरा हुआ आपका?
1: सर अभी नहीं, सपने को कर रहे हैं पूरा, एसटीएजी कर रहे हैं.
0: अच्छा अच्छा, तो सपना क्या है आगे?
1: सर कृषि विभाग बनना है.
0: चलिए, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपका सपना जो आपने देखा है वो सपना जरूर पूरा हो. और ये जो गाना आपने सुनना चाहे किसको सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे बड़े भाई को, भाभी जी को, उनकी दोनों सिस्टर जी को, चांदनी और प्रिया को.
0: चलिए, आपने कहा और ये गाना आप तक पहुंच गया.

0: बोल रहे हैं?
1: हम संतू बोल रहे हैं सर,
0: संतू कहाँ से फोन किया आपने?
1: कानपुर से।
0: कानपुर से। गाना आपने सुनना चाहे, बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे।
1: हाँ जी, आपके सारे मेरे हम बोल।
0: आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
1: आप सही आ रही सर।
0: कहाँ बैठे हैं
1: सर? बाहर बैठे सर।
0: बाहर बैठे तो बारिश हो रही कानपुर में?
1: सर बारिश तो नहीं हो रही सर।
0: तो कैसा मौसम है कानपुर का?
1: सर मौसम तो ठंडा है सर।
0: मौसम ठंडा है, यानी लखनऊ में थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं,

0: बाहर बैठे हैं तो बारिश हो रही कानपुर में?
1: सर बारिश तो नहीं हो रही सर।
0: तो कैसा मौसम है कानपुर का?
1: सर मौसम तो ठंडा है सर।
0: मौसम ठंडा है यानी लखनऊ में थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं, तो क्या कानपुर में
1: मौसम कैसा है सर?
0: लखनऊ में बहुत सुहाना मौसम, बहुत बढ़िया मौसम है और यहाँ बादल छाए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो ये गाना किसको सुनवाना चाहेंगे आप? जी संतू जी, ये गाना किसको सुनवाना चाहेंगे? बंजारन रास्ता देखे
1: गाना सर सभी को सुनवाना चाहेंगे।
0: अच्छा सभी को, सभी में कौन कौन शामिल है?
1: एक तो सबसे पहले आप हैं।
0: थैंक यू।
1: और हमारे घर में सभी सभी लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग। और आपके जो आरजे हैं मोना मैम है एक,
0: जी जी जी
1: वो बहुत दिन से नहीं आ रही हैं।
0: चलिए इस बारे में अगर आपको बातचीत करनी है तो हमारा जो फ़ोन इन प्रोग्राम होता है, ख़तों वाला प्रोग्राम होता है, मेल वाला प्रोग्राम जो होता है उसमें बात कीजिएगा। फिलहाल आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: अब बंजारा कब आएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जरूर आ चुका है। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, नाम बताइए अपना।
1: सर मैं ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा भक्ति का तालाब जिला लखनऊ से सुधांशु बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: सर हम अच्छे हैं, आप बताइए सर।
0: बस बढ़िया सुधांशु, जहाँ पर आप हैं वहाँ का मौसम कैसा है?
1: सर आज अभी दोपहर में 3 बजे बारिश हुई सर, खूब तेज।
0: बहुत तेज बारिश हुई?
1: Yes,
0: तो उस बारिश से क्या फायदा हुआ? मौसम ठंडा हुआ, कुछ सुहाना हुआ?
1: यस सर, सुहाना हुआ सर।
0: और ये जो गाना आपने सुनना चाहे, किसे सुनाना चाहेंगे?
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी, 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BVGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में

0: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BVGRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
4: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,000

0: 282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, DBT, UPI, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
2: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: सात बजकर 31 मिनट 7 सेकंड्स और प्रादेशिक समाचारों से पहले हमारी बात हुई सुधांशु जी से और उन्होंने जो गाना सुनना चाहा था वो उन तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो सुधांशु जी, आपकी पसंद का गीत ये आया आपके रेडियो सेट पर। और हाँ, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बस हमारे फोन नंबर हैं उनको मिलाइए, 2238852 2238845, ये हमारे नंबर। और हाँ, इससे पहले आप लखनऊ का कोड यानी 0522 जरूर लगा लीजिएगा। तो बस सुधांशु जी, ये आया आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: और हमारे साथ कोई और फोन लाइन पर जुड़ चुका है, बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा 12
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ठीक है सर जी।
0: तो तालिब भाई, आपने गाना सुनना चाहा है क्या? 12 में बारिश हो रही है क्या? 12 में बारिश हो रही क्या? आवाज आपकी फिर कटने लगी।
1: हेलो,
0: हाँ बताएं।
1: बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये सावन का महीना आपने जो गाना सुनना चाहा है, किसे सुनाना चाहेंगे? कुछ खास वजह इसको सुनने की?
1: मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस वक्त, मतलब बादल नुमा बने हुए हैं।
0: अच्छा, तो बारिश के अंदेशा है कि बारिश होगी?
1: अंदेशा है।
0: चलिए, तो ये गीत आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये आया।

0: और हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं? ठीक है
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं सर। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, आपसे बात हो गई और अच्छे हैं
0: जी। बहुत शुक्रिया। और ये गाना जो आपने सुनना चाहा है, खुदा गवाह मूवी का, किसे सुनाना चाहेंगे आप?
1: जी मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद तालिब अंसारी राजा कटरा से
0: जी,
1: और बबीता राव दीदी हैं, रोशनी रावत दीदी हैं, समा अंसारी हैं और साहिबा अंसारी, साजी अंसारी।
0: चलिए, सभी के लिए ये गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: सात बजकर 44 मिनट सात में कुछ सेकंड्स मैं हूं जमशेद आपके साथ इन प्रोग्राम हेलो एफएम और अभी ढेर सारा वक्त बाकी है आप भी हमें मिला सकते हैं 2238852 या 2238845 और हाँ उसके साथ लखनऊ का कोड जरूर लगाइएगा हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है बात करते हैं हेलो
1: वालेकुम
0: सलाम कौन बोल रहा है जी
1: हम
0: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और बताइए आप अपने बारे में
1: हम भी बहुत अच्छे हो गए आपसे बात करके अच्छे हो गए
0: तो लखीमपुर का मौसम कैसा है
1: बात हो रही है हमारी
0: जी बहुत शुक्रिया लखीमपुर का मौसम कैसा है
1: बहुत बारिश हो रही है अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी बहुत तेज बारिश हुई थी हम तो भीग भी गए थे
0: तो बारिश में क्या खाने का दिल करता है
1: बस चाय और पकौड़े
0: चाय और पकौड़े और पकौड़े कौन से प्याज के या कोई भी मिल जाए चलिए तो अभी प्याज के पकोड़े बनाए फिर आपने
1: खाएंगे?
0: हाँ बिल्कुल मौका मिला तो ज़रूर खाएंगे कभी मौका मिला तो है ना तो ये गाना किसे सुनाना चाहेंगे जो आपने सुनना चाहा है सावन की झुलमुल जी शुक्रिया
1: मोहम्मद आसिफ भाई
0: जी
1: मोहम्मद फैज भाई वकील अहमद भाई समा परवीन अपी रिंकी दीदी पिंकी दीदी रोशनी दीदी प्रीति दीदी बबीता राव दीदी नितिन कुमार भाई राशिद अंसारी साहिबा अंसारी अपी
0: चलिए चलिए सभी के लिए गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा
2: सावन के झूले

0: हेलो
1: हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं
0: सर? प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी? कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
1: जी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। उज्जैन से आपने हमें फ़ोन किया, और
0: जी हाँ,
1: बताइए
0: मोबाइल
1: क्या हाल
0: आपसे
1: चाल है
0: सुनता हूँ
1: आपके?
0: कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: जी
1: और बताइए कुछ
0: मैं
1: अपने
0: अच्छा
1: बारे
0: हूँ,
1: में।
0: और बरसात नहीं हो रही है अभी हमारे यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं।
1: चलिए, ज़रूर बरसात होगी। और ये जो गीत आप सुनाना चाहते हैं, किसको सुनाएंगे आप? हाँ तू है, हाँ तू है, जन्नत मूवी का।
0: हाँ जी, जन्नत मूवी का सॉन्ग है।
1: जी
0: मिंटू तिवारी जी अभी सुन रहे हैं,
1: जी जी
0: और रामपुर से ओमकार जी हैं,
1: जी जी
0: और रामपुर में जितने भी श्रोता है ना,
1: जी
0: उन
1: जी
0: सभी के लिए डेडिकेट रहेगा, और जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है उनके लिए भी रहेगा डेडिकेट, और आपके लिए भी।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये रहा आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

0: और मेरी यादों में तो बस ये है कि आप हमारे साथ जुड़े और हम आपसे करें बात, जिस तरह से फोन लाइन पर किसी ने कर दिया है हमें कॉल। हेलो।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: हरिकेश बोल रहे हैं सर।
0: जी हरिकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं सर?
0: बस बढ़िया। कहाँ से फोन किया आपने?
1: मैं फोन किया बस कुरौनी बंथ है लखनऊ से।
0: जी और बताइए।
1: बहुत फेमस है मैं।
0: अच्छा अच्छा, और बताइए क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है सर, अच्छे हैं।
0: काफी देर से फोन लगा रहे थे।
1: हाँ अरे, मैं तो सर 2 महीने से फोन लगा रहा हूँ।
0: अभी आपने जिस तरह से गाना आपने बताया ना कि आपने एक मूवी का गाना बताया, तो मैंने कहा कि अभी मैंने कुछ देर पहले प्ले किया, तो मुझे लगा कि आप लगातार प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको ये ध्यान में है कि गाना भी बज चुका है। चलिए, गाना किसे सुनवाना चाहेंगे आप?
1: सर सबसे पहले तो आप ही को सुना देंगे।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: और मैं अपने घर वालों को सुना देंगे, और जो है कि एक बाबू अंसारी जी हैं अहमदपुर चौकी, अहमदपुर गए थे पर फिर दोबारा गए थे, नहीं मिल पाए।
0: जी जी,
1: तो कोई बात नहीं है
0: जी।
1: ओमकार भाई साहब को सुना देंगे, और नवनीत हैं
0: जी जी,
1: और जो है कि तिवारी हैं, तिवारी जी हैं उन्नाव सर।
0: जी जी जी जी, चलिए सभी के लिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: हाँ
0: नाम
1: सर,
0: बताइए
1: नमस्कार
0: अपना।
1: सर, मैं जिम केन वर्मा बोल रहा हूँ, त्रिवेदीगंज डिस्ट्रिक्ट बारा बंकी से।
0: कैसे हैं आप?
1: जी सर।
0: बढ़िया हैं।

0: प्रोग्राम पूरा आपने सुन लिया?
1: जी सर, प्रोग्राम को तो आपको 7 बजे से सुन लिया।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। गाना किसे सुनाना चाहेंगे जल्दी से बता दीजिए, वक्त बहुत कम है।
1: गाना सुनवाने वाले हमारे 2-3 दोस्त हैं, जैसे सागर भाई हैं, त्रिवेदीगंज से हमारे हमारे घर में राहुल भैया, रामू है, रामू है, बस यही चार पाँच।
0: चलिए बहुत शुक्रिया। तो बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज़ किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तब तक खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, और हाँ अपना ख्याल जरूर रखिएगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में प्रदेशव्यापी डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान आज से शुरू होकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डिजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है। केंद्र सरकार ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4-6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना

की अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। मंत्री ने कहा कि ये परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 के परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला किया गया है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 2 से 4 जुलाई तक गोरखपुर लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सेवारत शिक्षकों के लिए पृथक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें अधिक अवसर मिल सके। और प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नवनिर्मित 10 उप निबंधक कार्यालयों और अभिलेखागारों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार रजिस्ट्री कार्यालयों में आने वाले आमजन को हर अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा।

इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। नमस्कार, आदाब, खैर मकदम, आप सभी का आबशार में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त समरीन, और इस प्रोग्राम में आपको लेके चलेंगे एहसास और जज्बात की महक के साथ उन गजलों की दुनिया में, जहां महबूब की सूरत, उसकी खुशबू, उसकी अदा एक एहसास बनकर दिल में उतरती है। आज यहाँ गजलों में जिक्र होगा आपके महबूब की खूबसूरती का, बात होगी उनकी जुल्फों की छाओं की, जिक्र होगा उस तड़प का जो फिराक के बाद आप महसूस करते हैं, तो वहीं नर्म लहजे की मिठास आपको आज जज्बात से शराबोर कर देगी। तो चलिए इस सिलसिले की पहली कड़ी में आपको सुनाते हैं एक ऐसी खूबसूरत गजल जो हम सब ने अपनी जिंदगी में जब बहुत जज्बाती होंगे ना तो जरूर सुनी होगी। तो पहली गजल आपके रेडियो सेट पर गुलाम अली साहब की आवाज में ये रही।

जी हाँ, जिंदगी का वो दौर जब आपने इश्क किया होता है या आप इश्क में मुब्तला होते हैं और चाहते हैं कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये जो मैं सातवें आसमान पे हूँ, मैं ऐसा हमेशा महसूस करती रहूँ या करता रहूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ आपको जिंदगी में सुख और दुख दोनों के मजे देती है। कभी कभी हम मोहब्बत का इजहार अल्फाज से नहीं करते, बस नजरें खामोशी से अपने महबूब से मिलती हैं और आंखों ही आंखों में दिल की दास्तान बयान हो जाती है। चाहे अल्फाज ना दें, लेकिन फिर भी सामने वाला समझ जाता है। शर्माना, नजरें झुका लेना या फिर चुपके से उस चेहरे को तलाशना, इश्क की ये सभी मासूम अदाएं सदियों से गजलों की रूह रही हैं। जब किसी की एक झलक से धड़कनों की रफ्तार बदल जाती है, तो शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं। वैसे तो लोगों ने इश्क और मोहब्बत को ना जाने किस किस तरह से बयां किया है, लेकिन अगर मेरी जबान में आसान अल्फाज में इश्क को समझा जाए तो धड़कनों की रफ्तार बदल जाने को इश्क कहते हैं जनाब। और आइए इस खूबसूरत एहसास को अल्फाज और सुरों में महसूस करते हैं। पेशी खिदमत है एक ऐसी बेहतरीन दिलनशी गजल जिसे सुन सुनकर मैं तो बड़ी हुई हूँ, और अगर आपने भी सुनी होगी अपने वक्त में यह गजल तो आप जरूर रिलेट करेंगे। उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल आपके रेडियो सेट पर ये रही।

अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें तो उनके लिए हम जिंदगानी लुटा दें, लेकिन ऐसा होता कहाँ है दोस्त। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है और हमारे इमोशंस अपनी रफ्तार से। और सबसे ज्यादा तकलीफ पता है कब होती है? जब आप इंतजार में होते हैं, मोहब्बत की वो शाम, वो लम्हे जो आपने इंतजार में गुजारे हैं, वो कभी कभी दिल में तकलीफ पैदा करते हैं तो कभी दिल को रोशन भी कर देते हैं। ये चराग रोशनी से ज्यादा एहसास इस बात का देता है कि मेरा महबूब, उसकी खुशबू, उसके आने की आहट, मानो हमें एक आस दे जाती है। और जब वो आता है और दिल में मोहब्बत का दिया जल उठता है, इश्क अपनी रोशनी बिखेर देता है, तो दिल की वीरान गलियां भी ना जगमगा उठती हैं। फिर रात सिर्फ रात नहीं रहती, बल्कि इंतजार, चाहत और खूबसूरत ख्वाबों की महफिल बन जाती है। इन्हीं नर्म रोमानी जज्बात के साथ सुनिए एक और बेहद खूबसूरत सी गजल अपनी दोस्त सबरीन के साथ। आप सुन रहे हैं इस वक्त आबशार।

जिंदगी में यूं तो बहुत सारे एहसास, जज्बात और रिश्ते ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही एहसास आप करते हैं जब आप इश्क में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं। जो इससे गुजरता है वही जानता है कि बेखुदी क्या चीज होती है, वो कैफियत जहां दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाने लगती हैं और सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है। कहते हैं कि अगर आप होश में रहते हैं, अपने हवासों में रहते हैं, तो ये एक नेमत से कम नहीं, लेकिन मोहब्बत का अपना ही दस्तूर है। यहां हिसाब नहीं चलता, तर्क नहीं चलते, बस एहसास से काम लिया जाता है। शायद इसीलिए इश्क की दुनिया में बेखुदी को सबसे खूबसूरत मकाम पर रखा गया है। इन्हीं गहरे जज्बातों और दिल को छू लेने वाली कैफियत के साथ पेशे खिदमत है एक और बेहतरीन गजल जो आपको ले जाएगी एक अलग दुनिया में। एक बार फिर से जगजीत साहब की आवाज में ये गजल आपके रेडियो सेट पर।

दोस्तों इंतज़ार की भी अपनी एक खुशबू होती है जो हवाओं में घुलकर पूरे माहौल को महका देती है। वाकई कुछ रिश्तों की पहचान उनकी मौजूदगी से नहीं होती बल्कि उस एहसास से होती है जो उनके साथ रहकर आप महसूस करते हैं। अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ही गज़ल जो फिजाओं में महकती है और जब कानों तक जाती है तो दिल में यकीन मानिए कि जो दिल की मिट्टी है उसको नरम कर जाती है। और इसी के साथ इन महकते एहसासात के साथ हमें दीजिए अब इजाज़त। 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से

0: बंक्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का

0: आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76

0: 17,903 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

हेलो फ्रेंड्स, 9:01 और 3 सेकंड, वेलकम टू द रेनबो कैफे, जिसे अब हमने पॉप टाइम में तब्दील कर दिया है, जहां आपको मिलेंगे हाई एनर्जी वाइब के म्यूजिक, और जहां का म्यूजिक है फास्ट, वाइब है मस्त और एनर्जी है नॉन स्टॉप। तो दिन भर का स्ट्रेस हटाइए और वॉल्यूम को जरा थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि शुरू होने वाली है मस्ती से भरी म्यूजिकल राइड।

तरह की बहुत सारी फरमाइशें आपको मिलने वाली हैं, बिकॉज मौसम आ रहा है, झूले, मेहंदी, चूड़ी, इन सब की फरमाइशें आपकी लगातार जो है वो बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल जो फरमाइश हमारे पास आ रही है वो इस बार बार आ रही है कि मैम प्रोग्राम शुरू हो चुका है, मेल्स को शामिल करिए। तो जिन लोगों ने अभी तक हमें मेल नहीं किया है और हमारे प्रोग्राम से अभी जुड़े हैं या उन्होंने अभी पॉप टाइम सुनना शुरू किया है, तो मैं उन्हें बता दूं कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। fmakashwani@gmail.com पर उन्हें हमें मेल करना है। जो पहला मेल हमारे पास प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आ गया था वो है रोशनी का। रोशनी लिखती है कि हम दुआ मांग रहे थे कि आज आप ही आए। लीजिए रोशनी, आपकी दुआ कबूल हो गई, कुछ और अच्छा सा मांग लिया होता है यार। नीरज कुमार लिखते हैं, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी श्रोताओं को, कैसी हैं आप? हम लोग एकदम चकाचक हैं, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इन्होंने खुद ही सवाल पूछा और खुद ही जवाब भी दे दिया। लिखते हैं, गजल वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है कार्यक्रम में, दोस्तों का नाम जरूर शामिल कर लीजिएगा। पूनम दीदी कानपुर से, अनु पांडे, गुंजन तिवारी, साहिबान सारी, शाजिया अंसारी, समा परवीन, सुरभि सिंह, ममता दीदी, मोहम्मद फैज, वकील अहमद, तिवारी अंकल, अमीन अंसारी, हिमांशु यादव, लीजिए आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी है। और विजयपाल यादव लिखते हैं कि आदरणीय बहन समरीन जी को प्यार भरा सलाम, आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से दुआएं। सबसे पहले आपसे एक शिकायत है। शिकायतें भी शुरू, पहले ही मेल में शिकायतें शुरू। लिखते हैं, आप इतने दिन कहाँ रहीं, हम सबको बहुत इंतजार था। आबशार की गजलें बहुत अच्छी लगी, पॉप टाइम का अच्छा होना तय है क्योंकि आपकी प्रस्तुति है। आज का कार्यक्रम सुन रहा हूँ, सभी श्रोता भाई बहन बहुत खुश हैं क्योंकि आपका ईमेल पढ़ने का अंदाज और आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी है। मैं हर रोज 12 बजे तक FM रेनबो के साथ रहता हूँ। प्रेषक विजयपाल यादव, बबलू यादव, राजेश कुमार, ग्राम पोस्ट ललहौआ, जिला खीरी से इन्होंने हमें ये मेल भेजा था। अंसारी शाहरून नूर, जिनका नाम लेने में मेरी जबान टेढ़ी हो जाती है, टंग ट्विस्टर जैसा फील होता है, ये लिखते हैं, रेनबो कैफे पेश करने वाले को हमारा आदाब, आपका ये कार्यक्रम मैं रोज सुनता हूँ, मुझे इस कार्यक्रम के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। और ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली, जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और DJ प्रधान, शुक्रिया हमें मेल करने के लिए आप सभी का। और जाते जाते एक जल्दी से मेल पढ़ देते हैं, राम राज जी का, श्री गणेशाओ नमा, पॉप टाइम, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से राम राज, राजू, भानु, राम चरण, शंकर भैया, पप्पू जी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आप

आपको प्यारी प्यारी, अच्छा सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यारी प्यारी बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। आपका कार्यक्रम सुपर हिट है, गाने बहुत ही लोकप्रिय लगते हैं। फरमाइश है रात सपना दिखाए पिया हमका। अच्छा जरूर, उसके बाद एक मेल और लेंगे और फिर मैं सुनाऊंगी आपको एक अच्छा सा तड़कता भड़कता था ट्रैक। गुलफशा सिद्दीकी लिखती है, अस्सलाम वालेकुम सरमनप्री, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीले से। पहले ये बताइए कि आप कहाँ गायब हो जाती हैं, हमने आपको बहुत मिस किया, ऐसे सताया ना करो आप। पता है आज दोपहर में भी हम और रोशनी रावत आपके बारे में बात कर रहे थे, हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई है, अपने घर की छत पर हूँ। साहिबा अंसारी, शाजी अंसारी, शमा परवीन, नीलू शर्मा, बबीता राव, मेरे हस्बैंड जीशान खान। अच्छा यूजुअली गुलफशा जो है वो दो लाइन लिखती थी और उसके बाद गायब आती थी, आज भी इन्होंने दो लाइन लिखी है लेकिन थोड़ी तफसील से लिखी है और कई नाम भी दिए हैं। उसके अलावा आपने पूछा, जब और मेल्स भी आए जिन्होंने ये पूछा कि मैं कहाँ गायब थी, तो कुछ मसरूफियत थी और जैसे ही वो काम ख़त्म हुआ हम दौड़ते भागते देखे स्टूडियो में आपके सामने हाजिर हैं और आपको सुना रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं बेहतरीन गानों के साथ, और आप हमें मेल भेजकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने अफेक्शन का इजहार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बॉम्बे वाइकिंग्स का ये ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, ये रहा। What you want, man?

9:14 और 49 सेकंड आप सुन रहे हैं पॉप टाइम अपने दोस्त समरीन के साथ। और आपको पता है एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है, और वो ये है कि रिसर्च कहती है कि जब हम कोई तेज बीट वाला एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हमारा मूड कुछ ही मिनटों में बेहतर महसूस करने लगता है। और यही वजह है कि पार्टी प्लेलिस्ट में हमेशा ऐसे हाई एनर्जी ट्रैक्स सबसे पहले अपनी जगह बनाते हैं। तो दोस्तों, जब भी लगे ना कि थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, तो कहीं जाके कुछ अपशब्द या लड़ाई झगड़े के बजाय कोई अच्छे गाने लगा लो यार, सुन लो और मूड को अपलिफ्ट कर लो। और यही सिलसिला हमने भी जारी रखा है पॉप टाइम में। आप लगातार सुनेंगे ऐसे ट्रैक्स जो आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

9:26 और 23 सेकंड आप सुन रहे हैं पॉप टाइम अपने दोस्त समरीन के साथ और लगातार बेहतरीन म्यूजिक को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपने या नोटिस किया है कभी कि जब किसी प्रोग्राम में म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा होता है, मेहंदी या फिर कुछ गाना बजाने जैसा, तो हर एक झिझक रहा होता है, नहीं नहीं हम शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे माहौल बजता है, बनना शुरू होता है, अच्छे अच्छे गाने बज रहे होते हैं, पर धीरे धीरे करके सब खड़े होते हैं और सभी इसको इंजॉय करते हैं। इसका रीज़न ये है कि म्यूज़िक हमें कनेक्ट करता है। और एक और चीज़ है कि आप जब भी कोई फेमस गाना या पॉपुलर या हिट ट्रैक चल रहा होता है तो उसके आगे के जो गाने हैं वो आपका जहन अपने आप गुनगुनाने लगता है, आगे की म्यूज़िक पहचानने लगता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको आज ये चीज़ मैं एज अ फैक्ट बता रही हूँ। चलिए जल्दी से शामिल करते हैं इस फैक्ट के अलावा जो ढेर सारे मेल्स इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी। वकील अहमद जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं। अब मुद्दे पे आते हैं, इन सबके नाम ले लीजिए।

वकील अहमद मंसूरी, कटका हतूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और एमन नवाब, आप सबको इन्होंने डेडिकेट किए हैं जो अगला गाना बजाएंगे हम वो। तालिब अंसारी लिखते हैं, मौसम लाजवाब और प्रोग्राम लाजवाब, सब एवरग्रीन है इस वक्त। सुधांशु लिखते हैं, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना इटौंजा बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आज बारिश हुई है भगवतीपुर में, मैंने खूब नहाया अपनी छत पर जाकर, खूब मज़ा आया। हिमांशु, पापा मम्मी सभी लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं। सिंहपुर सिंधौली से पवन जी भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, अरे वाह ग्रेट। तो ये आप कहाँ से सुन रहे हैं वो आपको पता है, और कौन कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं उसका भी पता है, क्या बात है। मोहम्मद साबिर अंसारी लिखते हैं, प्रोग्राम मस्त लग रहा है आज ही, समरीन जी कानपुर से लाइव सुन रहा हूँ, मेरे दोनों भाइयों के नाम जरूर ले लीजिएगा, आसिफ अंसारी हैदराबाद से और तालिब अंसारी राजा कटरा से। तो ये राजा कटरा कहाँ पर है। विनीत कुमार लिखते हैं, विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल, जिला सीतापुर, पॉप टाइम प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली बहन जी को गुड इवनिंग, शुभ रात्रि का सादर प्रणाम आपका छोटा भाई की तरफ से और मेरी रूमी गौतम वाइफ की तरफ से, प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। और मैंने बहुत दिल से आपका नमस्कार और आपकी जो वाइफ हैं रूमी गौतम उनका भी नमस्कार दिल से स्वीकार किया है। लिखते हैं, बहन जी आपकी बोली, आपका अंदाज सुपरहिट लगता है, प्रोग्राम अच्छा कर रही हैं, कृपया भोजपुरी गाने जरूर बजा दीजिए। आगे लिखते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके नाम ले लीजिए, ओमकार अतरौली सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत और उनके हस्बैंड राम सेवक लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, संजय अतरौली से, ममता हरदोई से, वीरपाल पट्टी अतरौली से, रिंकी पिंकी रायबरेली से और मोहिनी हरदोई से। मोहम्मद माज लिखते हैं, मोहम्मद माज अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जरीना मैम प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप थोड़ा जल्दी आया करो, मेरा दोस्त आसिफ भी प्रोग्राम सुन रहा है। तो जरीना नहीं, मेरा नाम समरीन है, आप शायद कंफ्यूज हुए हैं। और हमारी बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी लिसनर एमन लिखती हैं, हेलो डियर समरीन अपी, कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद आपको हमारी याद आई, हम तो रोज़ आपको याद करते हैं पर आप नहीं याद करती हैं, वैसे तो मुझे कोई भी नहीं याद करता। अच्छा, कि इतने इमोशनल ब्लैकमेल क्यों शुरू हो जाते हैं अमन, आप मुझे याद किया करो प्लीज़, मैं ज़रूर आपको याद करती हूँ और अक्सर मैं आपको मैसेज भी रिप्लाई देती हूँ। और आगे लिखती हैं, आप मुझे याद करिए करा करिए प्लीज़, मुझे हिचकी आएंगी, मैं समझ जाऊँगी कि आपने मुझे याद किया। गाने आपके बहुत अच्छे लगते हैं, आपके उर्दू के अल्फाज बहुत अच्छे लगते हैं, रजनीगंधा में भी आपके साथ बने रहेंगे, लॉट्स ऑफ लव। और यकीन मानिए ये चार घंटे आपके इस मोहब्बत के साथ, अटैचमेंट के साथ कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। आगे मोहम्मद आसिफ लिखते हैं कि अच्छा, इन्होंने फिर जरीना का जिक्र किया है। समरीन हूँ मैं इस वक्त आसिफ जी, और लिखते हैं, जरीना मैम आप हेलो एफएम में क्यों नहीं आती हो बताओ, सब में सब मैम उम्मीद से अच्छी होंगी आप, आपका आबशार बहुत ही लाजवाब लगा, कहता हूँ जिसका दिल टूटा हो वो आबशार ज़रूर सुने और रजनीगंधा भी सुने। जी अगर आप इश्क और मोहब्बत में मुब्तला हैं तो भी सुने, आप इंजॉय करेंगे। आगे यासिर हमीद अंसारी फॉर मियांगंज उन्नाव से लिखते हैं, हेलो डियर समरीन नपी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यासिर, आप कैसे हैं। समरीन अपी, आपका नाम का जो तलफ़ुज़ है वो बहुत ही उम्दा है, दिल से सलाम। एक शायरी मैं सोच रही थी आज कोई शायर नहीं दाखिल हुआ मेल बॉक्स में हमारे, तो लिखते हैं यासिर जी कि होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए कल वो गुजरे ज़माने नहीं आते, दोस्त होते हैं दोस्त के ही हम दर्द, यहाँ फरिश्ते किसी का साथ निभाने नहीं आते। वाह, एक दोस्त का नाम लेना चाहूँगा, आयुषी मौर्य जी औरस उन्नाव से हैं और ये यासिर अहमद अंसारी मियांगंज ज़िला उन्नाव से, इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। बबीता जी ने बहुत प्यारा सा मेल भेजा है, कलरफुल है, फ्लावर्स है इसमें, चाय भी है और स्माइली भी है जिसमें तीन दिल बने हुए हैं। तो लिखती हैं, मेरी क्यूटी समरीन मैम जी को प्यार भरा सलाम अर्ज़ है,

एड्रेस बेलीकला गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ से। मैम जी, हमें आपका गज़लों का आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर डुपर, और पॉप टाइम भी मस्त लग रहा है। आपके आने की जब खबर महके, आपकी खुशबू से सारा स्टूडियो महके और हम लिसनर्स का दिल चहके, वाह वाह बबीता। आपने मेरा मूड बहुत अपलिफ्ट कर दिया। वैसे म्यूजिक से तो अपलिफ्ट हो ही रहा है, बट इतने प्यार भरे मेल्स मिलेंगे तो किसका मूड नहीं अच्छा होगा। आगे लिखती हैं, मैम जी हमें आपके प्रोग्राम करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है और आपकी वॉइस तो आए हाय। आपका प्रोग्राम रोशनी रावत जी, महेंद्र भाई, आसिफ भाई, ब्रजेंद्र सिंह, दीपू भाई, गुलफशा दी, एमन दी, एमन नवाब, नीलू दी, शाजिया जी, साहिबा जी, हम सब लोग बड़ी ही शिद्दत से सुन रहे हैं और आपकी उम्दा प्रस्तुति को इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच समरीन जी फॉर रीडिंग माई मेल। शुक्रिया बबीता। और इसके साथ अब हमें चाहिए एक छोटा सा, और छोटा सा नहीं, लंबा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद शामिल करेंगे ये बचे हुए जो मेल्स हमारे पास हैं या जो लगातार मेल्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक बार मैं फिर से बता दूँ, fmakashwani@gmail.com पर आप मेल करके हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।

दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADशा नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

और देखते ही देखते 9:42 हो चुके हैं। थोड़ा ही वक्त और हमारे पास बचा है पॉप टाइम में, लेकिन एक और म्यूजिकल फैक्ट आपको बताती हूँ, और वो ये है कि जब भी हम कोई अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, वैसे तो हम दिन भर कुछ ना कुछ सुना करते हैं, लेकिन जब अपना फेवरेट अचानक से कोई गाना प्ले हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है, तो हमारे जहन में एक

केमिकल का सिक्रीशन होता है और वो होता है डोपामिन। जी हाँ, जिससे आपको फील गुड फैक्टर जो है ना, और इसे डोपामिन को एक फील गुड वाला केमिकल भी कहा जाता है। ये आपको जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी जो है महसूस कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आपके जहन में डोपामिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, या आपको ना सिर्फ म्यूज़िक से बल्कि स्क्रीन से भी रिलीज़ होता है। लेकिन आप जब अच्छे म्यूज़िक से आपका डोपामिन रिलीज़ होता है तो वो एक्सेसिव नहीं होता है, और आपका ये जो अच्छा फील करने वाला चीज़ है ना, वो आपके लिए उतनी नुकसानदेह नहीं होगी। बट अगर स्क्रीन से आपको ये रिलीज़ हो रहा है, तो आप सोचें कि आपकी आंखों पर और जहन पर स्ट्रेस भी रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो आप रिलैक्स और बेहतर फील करते हैं, लेकिन जब आप कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरीज़ देखते हैं तो आपके जहन पर एक भारीपन रहता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट आपकी आँखें स्ट्रेस में होती हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अपने लिसनर्स की तरफ, जो लगातार मेल्स जो है वो हमें भेजते जा रहे हैं। जल्दी से शामिल कर लेते हैं मेल्स, क्योंकि वक्त कम बचा है। रोशनी रावत लिखती हैं, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड समरीन दी, कैसी हैं आप? जब दीदी दुआ में आपको मांगा है तो किसी और का ख्याल ही क्यों करना, और मुझे चाहिए ही नहीं, आपकी दुआ से सब कुछ है। हाउ स्वीट, और आप ऐसी भरी पूरी और संपन्न रहें, ये मेरी दिल से आपके लिए दुआ है। और आगे लिखती हैं कि बहुत दिन लगा दिए आने में, मत पूछिए कितना इंतज़ार किया, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कहाँ से लाएं वो शब्द आपकी तारीफ में, पूरी कायनात में वो शब्द ही नहीं मिले जिससे बयां कर सकूं अल्फाज से आपकी तारीफ। प्रोग्राम बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एक शब्द ने लाजवाब, पॉप टाइम का ही नहीं ये जलवा आपका है दीदी, तहलका मचा दिया। अच्छा, हाउ स्वीट, मतलब मुझे शायद ही बाहर इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हो जितने आप लोग देते हो। और इन्होंने एक शेर भी अर्ज़ किया है, लिखती हैं, अर्ज़ किया है कि आपकी आंखों में कभी कोई उदासी ना आए, जिस दुआ में आपकी खुशी ना हो वो लफ्ज़ होठों पे ना आए। और आगे बहुत प्यार से रोशनी लिखा है कि रजनीगंधा में भी साथ रहेंगे, और मैं तो दुआ करती हूँ कि हम हमेशा हमेशा साथ रहें, रेडियो के उस तरफ आप और रेडियो के इस तरफ हम। ज़ीशान खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सरवनपी, मैं ज़ीशान खान संडीला से, मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इस वक्त टाइम मिलता है तो सुन लेता हूँ। मेरी वाइफ गुलफशा सिद्दीकी, मेरी बेटी नूर अक्सा और मेरे बेटे हसन खान और ज़िया खान। कोमल तिवारी लिखती हैं, गुड इवनिंग समरिंदी, कैसी हैं आप? आज प्रोग्राम में बहुत दिनों बाद आई हैं आप, गाने आप बहुत प्यारे बजा रही हैं, प्रोग्राम में जान डाल देती हैं आप, ये सभी गाने आप दिल को छू लेने वाले प्ले कर रही हैं। कोमल तिवारी, कैसरगंज बहराइच, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि आपको गाने पसंद आ रहे हैं। आगे रविकांत जायसवाल जी लिखते हैं, दिल्ली परिवहन विभाग DTC से एकदम गर्दा उड़ा रखा है। शुक्रिया रवि। प्रिंसी लिखते हैं, विजयलक्ष्मी कुशवाहा संडी जनपद हरदोई, आज मेरी भाभी प्रिंसी जी की शादी की वर्षगांठ है और 3 जुलाई को मेरी सगाई है, बहुत दिनों बाद मेल कर रही हूँ। हेलो मैम, कैसी हैं आप? समरीन जी, अभी आपको याद किया था और आप आ गई। प्रिंसी, बहुत बहुत मुबारक हो, आप ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने जा रही हैं, इस सफ़र आपके लिए बहुत हसीन, बहुत प्यारा और बहुत आसान हो, मेरे तो दिल से दुआ है आपके लिए प्रिंसी। और गुलफशा जी लिखती हैं, समरीन अप्पी, मैं क्या बताऊं आपको कि मैं कितनी खुश हूं आपको सुनकर, आप मेल पढ़ रही हैं और मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही हूं आपकी आवाज़, जब आपकी याद आएगी तो सुनूंगी। और गुलफशा, मैं इतनी इमोशनल भी हो जाती हूँ कभी कभी आप लोगों के मेल से, कैसा मतलब ये कौन सा प्यार है जहाँ हम मिले नहीं हैं, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन जब मेल्स के ज़रिए आप लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा और स्पेशल फील होता है कि हाँ, हमारा ये जो कम्युनिटी क्रिएट हुई है रेडियो की, ये जो हमारे लिसनर्स हैं, इनकी जो मोहब्बत है वो हमारे साथ ऐसी है जैसे शायद बाहर हमारे जो दोस्त हैं somehow ऐसा फील करते हैं हम उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना मैं इमोशनल जाऊंगी। अभय सिंह लिखते हैं, हेलो समरीन मैडम, मैं अभय हरिकंश गढ़ी मोहनलालगंज लखनऊ से पॉप सॉन्ग कार्यक्रम सुन रहा हूं, और मैं ही नहीं सुन रहा बल्कि मेरे साथ मेरी माँ सुशीला देवी, पत्नी रिंकू देवी और बेटा राज सिंह भी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। माता जी का घुटने का ऑपरेशन हुआ है, उनकी देखभाल करते हुए FM सुनते रहते हैं। अभय जी, माता जी जल्दी से सेहतयाब हो जाएं और आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश सिंह लिखते हैं, गुड इवनिंग समरीन जी, हमारे सभी श्रोता मित्र एक साथ मिलकर कार्यक्रम का आनंद

रहे हैं। विकास सफीपुर उन्नाव से, रोशनी चंडीगढ़ से, महेंद्र दीपन गुजरात से, बबीता जी लखनऊ से। वारिस अली खान लिखते हैं, आपकी क्या लिखा है उन्होंने कि आवाज की दुनिया के प्यारे दोस्त समरीन को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। अर्ज है, दीदार ना सही याद तो कर लिया करो, मैंने कब कहा कि हिचकियों से परहेज है। आप शो बहुत अच्छा कर रही हैं, पॉप टाइम हमारा फेवरेट शो में से एक है। शुक्रिया वारिस अली खान जी। और एमन ने कुछ जवाब दिया है, जब तुम पास होते हो तब दिल चाहता है कि वक्त रुक जाए। हाउ स्वीट। तो फिर आप ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि वक्त रुक जाए, पर ऐसी ख्वाहिश करना जो है वो मुमकिन है, वो कर सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वैभव लिखते हैं, झक्कास बारिश में रेनबो का साथ, मजा आ गया। थैंक्स रिगार्ड वैभव प्रकाश सिंह। राजेश कुमार लिखते हैं, कॉपी खाली क्यों है स्टूडेंट, खामोशियां ही बेहतर हैं, शब्द से लोग रूठ जाते हैं। अरे अच्छी वाणी बोलिए क्यों रूठाना किसी को। आनंद तिवारी लिखते हैं, चुप जाती है बातें तो कभी लहजे मार जाते हैं, ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हम अपनों से हार जाते हैं। आनंद तिवारी दारू कोहिया मल्लावा हरदोई यूपी, जबरदस्त प्रोग्राम, शुक्रिया आनंद। और ये इतनी हैवी हैवी सी बात क्यों की आपने। कुलदीप मौर्य लिखते हैं, धनीपुर मितौली लखीमपुर खीरी से राधे राधे। इन सभी लोगों के नाम ले लीजिए, कुलदीप मौर्य, पूनम मौर्य, मनोज मौर्य, प्रतीक मौर्य, कुणाल मौर्य, पूर्वी मौर्य, आरुषि मौर्य। छोटा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, छोटी प्रोग्राम, अच्छा मौर्य छोटी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैं अभी भी नहीं समझ पाई इन्होंने छोटी किसी को एड्रेस किया है। अरविंद कुमार दुबे लिखते हैं, नमस्ते एफएम रेनबो लखनऊ, गर्मी की छुट्टी भाई बहन और मम्मी के साथ बिताकर अब गढ़वा झारखंड से कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। दीपा तन्वी तिवारी, प्रतिमा प्रतिष्ठा, श्याम कुमारी गोविंद, अरविंद दुबे धर्मदेवा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया था। और अब हम लेंगे एक छोटा सा और प्यारा सा, थोड़ा सा लंबा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद जो बचे हुए मेल्स हैं उनको हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके रेडियो सेट पर आया ये गाना।

और देखते ही देखते अब हमें इस प्रोग्राम से लेना होगा आपसे इजाजत विदा, लेकिन रोशनी रावत ने हमें एक मेल भेजा है और लिखती हैं, दीदी हमारे भाई का नाम जरूर ले लीजिएगा, बबीता राव जी, नीलू दीदी, गुलफशा दीदी, शमा परवीन, साहिब अंसारी, शाजी अंसारी, यासिर भैया, महेंद्र भैया, आसिफ भैया, तालिब भैया, ब्रजेश भैया, प्रमुख भैया, और हम सब एक साथ मिलकर सुन रहे हैं, सबको दूर से, सबने दूर से सलाम भेजा है। और एक लास्ट, ट्रैवल कर रहा हूँ, समरीन मैम जी आपका प्रोग्राम सुनना बहुत बिंदास लग रहा है। ओके शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं जैसे ही वाइंड अप करती हूँ एक और मेल आ जाता है, मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर, हरोवा जिला, लखीमपुर खीरी से, आज लेट हो गए हैं, आरजे जी को शुभ रात्रि। और आरजे जी आपकी आवाज़ में ऊर्जा और मिठास है, वो सुनते ही रात की सारी जो दिन भर की थकान थी वो दूर हो गई है। पॉप टाइम के गानों के बीच आपके अंदाज में जो आप बात करते हो वो सच में दिल छू लेती हैं। कहना बस दो लाइन में ये चाहता हूँ, ना घमंड करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आपकी बातों और गानों से रात और भी ज्यादा हसीन हो गई है, और ऐसे ही श्रोताओं का मन बहलाते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब लेती हूँ मैं इजाजत। वारिस साहब लिखते हैं, मैं इस गीत के बारे में सोच रहा था, कल हॉटमेल में इस गाने की फरमाइश करूंगा, लेकिन आपने मेरी फरमाइश पहले ही पूरी कर दी, सो थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इस प्रोग्राम में जितने भी लोग मेल्स के जरिए कनेक्ट हुए, मेल्स नहीं भेज पाए, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। अब हम लेते हैं इस प्रोग्राम से आपसे इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि 10 से 12 रजनीगंधा में आप और हम रहने वाले हैं साथ।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। आगामी 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर आज लखनऊ में जिलाधिकारी विशाक जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार द्वारा समस्त केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों, सेक्टर एवं स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेटों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुछ 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 और 3 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जबकि 4 जुलाई को परीक्षा केवल प्रथम पाली में आयोजित होगी। स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने आज वाराणसी स्थित NIC केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न 10 जनपदों में लगभग 23.98 करोड़ रूपये की लागत से निबंधन कार्यालय भवनों के विस्तारीकरण एवं नवीन भवन निर्माण कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान श्री जायसवाल ने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं के को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। अमेठी में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ आज जिला संयुक्त चिकित्सालय गौरीगंज परिसर से किया गया। अभियान के तहत 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान संचालित किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का दायरा और बढ़ गया है। आज से इंडिगो एयरलाइंस ने 11 नए शहरों के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इनमें नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, भोपाल, देहरादून, पंतनगर, धर्मशाला, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ और बरेली भी शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, आदाब। रजनीगंधा सुनने वाले सभी लिसनर्स का मैं समरीन तहे दिल से एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे मोहब्बत के एक ऐसे सफर में जहाँ मंजिल से ज्यादा हसीन आपका सफर होगा, जहाँ वादे सिर्फ अल्फाज तक लिमिटेड या सीमित नहीं रह जाएंगे बल्कि दिल की पनाह बन जाएंगे, जहाँ यकीन एक चाहत में तब्दील हो जाएगा जो वक्त और दूरियों से भी कम नहीं होगा। इन सभी एहसास और जज्बात को आप महसूस करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम रजनी गंधा में।

ऐसा क्यों हमारे साथ गुजरा था। और यही एहसास आप महसूस करेंगे हमारे अगले गीत में, जहां दर्द भी है, अपनापन भी है और जिंदगी को समझने की एक खामोश सी कोशिश है। आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाला ये सदाबहार गीत।

जिंदगी हर किसी को अपनी तरह से परखती है, कभी खुशियों की छांव देती है तो कभी इम्तिहानों की धूप। और ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि जो तकलीफें मिली हैं, जो शिकायतें हैं, वो किसी इंसान से नहीं होती, बस जिंदगी से कुछ अनकहे सवाल होते हैं जिनका जवाब शायद वक्त के पास होता है। गुजरते वक्त के साथ हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ था।

कभी गुजरी जिंदगी की यादें इतनी तल्ख होती हैं कि वो ता उम्र आपका पीछा करती हैं। ये गम आप में इस तरह से रच बस जाता है कि हर सांस और हर धड़कन में आप इसे महसूस करते हैं। इस पर एक गजल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, बल्कि गजल का एक अशार है जिसमें है कि ये मेरी गजलें, ये मेरी नज़में तमाम तेरी हिकायतें हैं, ये तस्करे तेरे लुत्फ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मतलब एक इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट, ख़ास हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द रहती है, और उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में होना या ना होना, दोनों सिचुएशन आपका मुस्तकबिल तय करती हैं कि आप किस रुख पे जाएंगे, आपके जज्बात, आपके एहसासात। और ऐसा ही कुछ आपको सुनने को मिलेगा हमारे अगले गीत में। मेरा साया फिल्म से आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

माजी की यादों को हम कितना भी भुलाना चाहें, लेकिन उनका खामोश एहसास साथ साथ चलता है। कभी कोई अधूरी दुआ बनकर, कभी कोई खुशबू में बसा खत बनकर, तो कभी कोई भूला बिसरा नगमा बनकर।

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनिए समाचार। आगामी 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर आज लखनऊ में जिलाधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार द्वारा समस्त केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों, सेक्टर एवं स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेटों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 और 3 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जबकि 4 जुलाई को परीक्षा केवल प्रथम पाली में आयोजित होगी। स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने आज वाराणसी स्थित एनआईसी केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न 10 जनपदों में लगभग 23.98 करोड़ रुपए की लागत से निबंधन कार्यालय भवनों के विस्तारीकरण एवं नवीन भवन निर्माण कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान श्री जायसवाल ने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। अमेठी में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ आज जिला संयुक्त चिकित्सालय गौरीगंज परिसर से किया गया। अभियान के तहत 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान संचालित किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का दायरा और बढ़ गया है। आज से इंडिगो एयरलाइंस ने 11 नए शहरों के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं, जिनमें नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, भोपाल, देहरादून, पंतनगर, धर्मशाला, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ और बरेली भी शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

कौन ही इतना खुशनसीब होता होगा जिसे जैसा चाहिए वैसा मिल जाता होगा। हालांकि ऊपर वाला मेहरबान हो जाए तो ऐसा मुमकिन है। खैर, आपसे जो बात मुझे कहनी थी वो ये थी कि ज़िंदगी में कभी कभी कुछ रिश्ते जब आप हासिल करते हैं ना, और ऐसा लगता है कि ये मेरा हो गया है, लेकिन तब कुदरत या कोई वजह या आपकी किस्मत कह लो, वो आपसे दूर हो जाता है। लेकिन जब वो मिला था ना, और जब वो भरोसा हुआ था कि ये मेरा है, ये अपना है, ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास था। और कहते नहीं है कि जब कोई मुझे अपना कहता है, जिसे आप चाहते हैं, जब वो आपकी मोहब्बत को, इश्क को एक्सेप्ट करता है, तो आपको अपने पे गुरूर आता है, अपने पर फख्र आता है। इसी खूबसूरत जज्बे को सुरों में पिरोया है सदाबहार गीत ने। आइए सुनते हैं फिल्म विक का बेहद प्यारा और खूबसूरत नगमा। आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

दिल तक एकदम पहुंचता है। उस गाने का सार यह है कि जब हमें जिंदगी में कोई हमसफर मिलता है जिसके आने से जिंदगी मुकम्मल होने लगती है, कंप्लीट फील होती है, खुशी आपको हर वक्त महसूस होती है। अगर वही इंसान अनजाने में आपका दिल दुखा दे, आपकी जिंदगी उजाड़ दे, तो शिकायत भी तो उसी से होगी ना। और मोहब्बत भी कहीं ना कहीं रहती है, और यही तो प्यार का की खासियत है कि किसी के एक्शन से प्यार मरता नहीं है। हाँ, आप अलग हो सकते हैं, आप एक दूसरे की ज़िंदगी से जा सकते हैं, लेकिन वो पल जो आपने साथ गुजारे, वो यादें सब दिल में तह लगा लगा कर रखी होती हैं। इन्हीं जज्बात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला खूबसूरत सा नगमा फिल्म अभिमान से। आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

11:23 आप सुन रहे हैं रजनीगंधा अपने दोस्त समरीन के साथ, और हमने तमाम तरह के जज्बात, एहसास, इश्क, मोहब्बत, शायद ही कोई ऐसा जज्बा छोड़ा हो, सभी चीज़ों को डिस्कस भी किया है, उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड हमने सॉन्ग्स भी प्ले किए हैं। लेकिन एक गाना जो बहुत प्यारा है और

0: तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। जी हाँ, सावन की रिमझिम फुहारें जब धरती को छूती हैं तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, दिल का मिजाज भी बदल जाता है। भीगी हवाएं, महकती फिजाएं और किसी अपने का साथ, इन सब के साथ जिंदगी कैसी खूबसूरत और हसीन लगने लगती है। पुराने फिल्मी गीतों ने बरसात को सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि मोहब्बत के सबसे खूबसूरत एहसास की तरह सजाया है। इसी रुमानी मौसम की खुशबू के लिए पेश है फिल्म अनजाना का ये बेहतरीन गीत।
1: It's my document.

मोहब्बत जब अपने इंतहा पर पहुंचती है तो पूरी दुनिया एक ही शख्स में सिमट जाती है। फिर ना दौलत की ख्वाहिश रहती है, ना शोहरत की तलाश, बस एक चेहरा, एक मुस्कुराहट, और वो दो प्यारी प्यारी आंखें जीने की वजह बन जाती हैं। पुराने फिल्मी गीतों में इश्क की इसी पाकीज़गी और गहराई को बड़ी खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। आइए इसी बेपनाह मोहब्बत के एहसास को शुरू में महसूस करते हैं। फिल्म चिराग का ये सदाबहार नगमा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है, आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती, कई मोड़ आते हैं, कहीं फासले होते हैं तो कहीं ऐसे इम्तिहान जो रिश्तों की मजबूती को परखते हैं। ऐसे में दिल से बस यही दुआ निकलती है कि सफर चाहे जैसा भी हो, साथ चलने वाला हम सफर हमेशा साथ रहे, उससे आपका हाथ कभी ना छूटे। इस खूबसूरत एहसास को अपनी मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले अल्फाज में समेटते हुए फिल्म हम सफर का ये सदाबहार नगमा आपको सुनवाते हैं।

जाना तो पड़ेगा क्योंकि 11:56 और 23 सेकंड हो रहे हैं, और इसी के साथ इस खूबसूरत एहसास के साथ आज की महफिल से हमें दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी पुराने फिल्मी नगमों की नई खुशबू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर वाराणसी में प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु ने प्रदेश के सभी चिकित्सकों, आयुष चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आयुष और आधुनिक एलोपैथी के समन्वय से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। उन्होंने योग, प्राणायाम और संतुलित आहार अपनाने की अपील करते हुए युवा चिकित्सकों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:17 पर और सूर्यास्त 7:04 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वादशमलो 7 MHz पर आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा में सुबह 5:55 पर हम पुनः